नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये है विविध भारती। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे।

0: आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्रोध में 1000 शब्द बोलने से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती। झरोका में लीजिए सुनिए आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 284, 6:35 से 6:45 से सुबह व शाम, संगीत सरिता। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रभा तबला वादक, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। आज के फनकार आज केंद्रित होगा फिल्मकार गुलजार पर, समय सुबह 9:30 से। दस बजे पिटारा में सुनिएगा सेहतनामा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का, 2:30 से सुनिएगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 से सखी सहेली। चार बजे से पिटारा में सेल्युलॉइड के सितारे में अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। शाम 5 लेकर आएंगे छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने। छह 6:35 से संध्या रंजन का वक्त होगा, 7 फौजी साथियों के लिए जयमाला।

7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे हवा महल में झलकी एक पत्र अंग्रेजी में, लेखक चंद्रशेखर पांडे, निर्देशक अनूप सेठी।

रात 9 बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार आज केंद्रित होगा अभिनेत्री मनीषा कोइराला पर। दस बजे से लेकर आएंगे छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हनुमान से श्री राम की मुद्रिका पाकर सीता को पवन पुत्र के श्री राम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता।

0: अभी आपने सुनी श्री रामचरितमानस का भाग 284।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: श्री कालीनाथ मिश्रा जी, आज की इस दूसरी कड़ी में मैं रामकृष्ण दास आपका स्वागत करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार दास बाबू।
1: मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय फिल्म संगीत में बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी तबले संगति प्रदान की है
2: जी।
1: तो उस सिलसिले में आप हमें ये बताएं और प्रस्तुत भी करें कि आज आप क्या हमारे संगीत सरिता के श्रोताओं को सुनाने वाले हैं।
2: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया दास बाबू। एक जमाना हुआ करता था कि फिल्मों में प्योर क्लासिकल, क्योंकि सारा क्लासिकल हमारा इतना बड़ा धरोहर है फारूक भाई की, सारा बेस इसी पर है हमारा। और हमारे बड़े बड़े गुरुओं ने बड़ा योगदान दिया है। हमारे चाचा पंडित शामता प्रसाद जी, गुदई महाराज जी जिनको कहते हैं, रविशंकर जी, अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, रईस खान साहब। तो अभी मैं तबले की चर्चा करता हूं कि मैंने सोचा कि दूसरी कड़ी में क्यों न हम रूपक ताल पे, क्योंकि बहुत से पिक्चर हैं जिसमें गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है। निजामुद्दीन खान साहब का एक अंदाज था और गुदई महाराज जी ने तो झनक झनक, पायल बाजे, शोले, ऐसे बहुत से पिक्चरों में। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि श्रोताओं से सात मात्रा के बारे में बात करें, और यही एक ताल ऐसा है जिसमें खाली नहीं होता है,
1: सम की जगह पे खाली बस।
2: जी हाँ जी हाँ, है ना, क्योंकि जो सम का अंदाज है उसकी चलन ऐसी है, उसका एक चाल ऐसा है जो हम उसको कहते तिन तिन नाथक धिन धिन नाथक धिन धिन नाथक तिन तिन, तो खाली दिखाते पर अंदाज हमारा खाली का, पर वो सम है। यही एक ऐसा ताल है। और तिवरा ताल, धा दिन ता ते टे कत गदी दिन धा,
1: ये पखावज का,
2: ये पखावज है। तो मैं आज अपने तबला वादन से रूपक और तिवरा ताल दोनों का अंदाज प्रस्तुत करता हूं। और बनारस का नाधिन धिन्ना बड़ा प्रसिद्ध रहा, आप खुद एक बहुत लाजवाब कलाकार हैं दास बाबू, तो नाधिन धिन्ना का क्या चलन है, तो प्रस्तुत करता हूं रूपक ताल। तो श्रोताओं, रूपक ताल सात मात्रे का होता है जिसमें एक, चार और छह पे ताली होती है। तीन विभाग होते हैं,

इसे कहते हैं छूट। छूट क्या चीज है? अपनी मन की बातें, वो वही बनता है। कभी हो सकता है वो हम सम पे आने पे, हो सकता है कि हम चूक जाएं, लेकिन छूट का अंदाज है कि एक बोलो के साथ नोक झोंक। तकतिन कटिन तिन ना तक थी दे ना ना तकतिन कटिन तिन तेवरा ताल। हाथी कैसे चलती है, ये उसी का एक अंदाज है कि धा दिन ता।

0: क्या खूब बजाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये तबला बजाते वक्त बहुत बार आप लोग बायां और दायां हाथ दोनों तबले पे बजाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कब बजाते हैं?
1: ये जब मूड बन जाए।
0: नहीं कोई स्पेसिफिक बोल
1: नहीं,
0: है
1: नहीं,
0: जिसके लिए बजाते
1: हैं? एक एक एक जब हमको लय दिखाई देता है तो हम चांटी पे खेल सकते हैं, एक अंदाज है उसका कि चलो चांटी पे ले लें, क्योंकि इतना अच्छा लहरा लहरा। देखिए एक बात बता दें, लोग कहते हैं कि हम लहरा नहीं बजाएंगे तबला वाले के साथ।
0: अच्छा,
1: लहरा बजाना बड़ा मुश्किल है दास बाबू।
0: वो तो है,
1: जो बहुत ताल से मारा हुआ होगा ना,
0: लहरा पक्का भी होगा।
1: हाँ वही वही, जो बहुत ताल से भरपूर होगा वही ये बोझा संभाल पाएगा।
0: और एक बात
1: जी,
0: आपने खत्म करते वक्त कई तिहाइयां ली, तो तिहाई के बारे में थोड़ा बताइए ना, तिहाई होती क्या चीज है?
1: हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्या बात है। तिहाई एक वो शब्द है कि हम जब खाना खाने बैठते हैं
0: जी,
1: तो जरूरी नहीं कि हम खाली चावल दाल ही खाएं, कभी अचार खा लिया, कभी थोड़ा सा आम चख लिया, कभी थोड़ा सा पानी पी लिया। तबले का ये एक प्रचलित नाम है तिहाई, वो छोटी छोटी सिंपल से बोल होते हैं जिसके साथ हम नोक झोंक कर सकते हैं, जो पर हमको लय को देखते जाना है, लय हमारा प्रधान है। तो जो तिहाई है, तिहाई हम एक छोटी छोटी चीजों को बजा के हर ताल में, जरूरी की रूपक ताल में बजाएं हम, उस तिहाई से बोलों को हम खत्म करते हैं तो आनंद आता है, और जब तिहाई का धा गिरता है तो हमें भी आनंद आता है, सुनने वाले श्रोताओं का भी आनंद आता है। इसका नाम है जैसे
0: क्या बात, यानी एक ही चीज तीन बार आती है।
1: जी हाँ, जी हाँ, नहीं तीन बार टुकड़ा भी होता है, तीन बार परण भी होता है, पर उसके बोल बड़े हो जाते हैं। हाँ जैसे एक झलक दिखा देता हूँ।

0: मिश्रा जी, फिल्म में मेरे ख्याल से बहुत सारे गीत होंगे जो रूपक पर आधारित
1: हैं। बहुत बहुत।
0: तो कोई एक गीत आप बताइए ना हमारे श्रोताओं के लिए।
1: आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, एक बड़ा सुंदर गाना है, रूपक ताल में ही है वो। फिल्म है मेरे हम सफर।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म भाभी से। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

ही सही ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही न...

सुन रहे थे एहसान रिजवी ने इसे लिखा, और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वो था न्यू दिल्ली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत और शंकर जयकिशन की तर्ज। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का,

0: तलत महमूद, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे बारिश फिल्म से।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से।
1: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए के।
0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से।

चंपा कली ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हेमंत कुमार का संगीत और राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा।

जालसाज ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एन दत्ता का संगीत था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

0: फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: लता मंगेशकर और भूपिंदर को आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से। गुलजार ने इस गीत को लिखा, मदन मोहन का संगीत। आज गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार गुलजार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। खट्टा मीठा फिल्म का नाम था। गुलजार ने इसे लिखा राजेश रोशन की तर्ज। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में ये गीत परिचय फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में

0: जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित

0: समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री VD सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि M. पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप

0: के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी युकी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं।

नहीं होगा। बाहर और भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहें। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए। ज्यो आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये था फिल्म का नाम। शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। अनविता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: रुपए पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष।

0: अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

फिल्म टू स्टेट से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लाई का म्यूजिक।

मोहित चौहान की आवाज में ये गीत जब वी मेट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। प्रोग्राम चित्रलोक में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में टशन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

सलाम नमस्ते यह था फिल्म का नाम। शान और गायत्री अय्यर की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जयदीप सानी ने इसे लिखा और विशाल शेखर का संगीत।

नमस्ते लंदन, ये था फिल्म का नाम। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने सुलेखा और हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। नाम सोचा ही ना था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार

लूक कहते हैं, जब भी यूं जिस किसी के जी आया उसने वैसे ही बस पुकार लिया, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे, आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे नाम से बुलाओ तो सही।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम नाम लेकर पुकार रहे हैं गुलजार को, जो विविध रंगी प्रतिभा के धनी हैं। एक संवाद लेखक, एक गीतकार, एक फिल्मकार, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार, एक अनुवादक, एक लेखक। कितने पहलू हैं गुलजार साहब की इस पूरी यात्रा में उनकी शख्सियत के। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में गागर में सागर भरना भी मुमकिन नहीं, गुलजार के सारे पहलुओं पर चर्चा करना भी मुमकिन नहीं। तो फिर कहां से शुरू की जाए।

क्या 1963 से शुरू की जाए, जहां बंदिनी फिल्म के एक गाने के लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने लिखा मेरा गोरा अंग ले ले।

या फिर ये कहानी शुरू करें वहां से जहां दीना में गुलजार का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ और जिंदगी में उथल पुथल आई और जिंदगी उन्हें ले आई मुंबई के बेलसिस रोड जहां एक गैराज में वो काम करते रहे। या फिर वहां से शुरू करें कि बिमल रॉय का साथ मिला और फिल्मों की राहों पर गुलजार हौले हौले कदम बढ़ाने लगे। या फिर वहां से शुरू करें जहां सन 1971 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, मेरे अपने।

0: इस गाने में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेकली, एक अजीब सी तकलीफ छिपी है और इस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने बंटवारे का दर्द झेला हो। इस पीड़ा को वो समझ सकता है जिसे अपनी जड़ों को छोड़कर बहुत दूर आ जाना पड़ा हो और जिसके लिए जिंदगी में पीछे लौटना मुमकिन नहीं रहा हो।
1: हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं।

संपूर्ण सिंह गुलजार के दिल में अपनी जड़ों से दूर चले जाने की पीड़ा बहुत गहरी रही है और ये बार बार उभर कर आती भी है। अपनी एक रचना में वो लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। गुलजार साहब की रचनाओं में कहीं एक उदासी भी है तो कहीं एक उम्मीद भी है। कहीं वो लिखते हैं, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों पे रुक रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। क्यों ना आज के फनकार कार्यक्रम में हम गुलजार के उन गानों की चर्चा खास तौर पर करें जो आपको ज्यादा सुनाई नहीं देते। तो फिर 1969 की तरफ अपनी इस गाड़ी को घुमा लेते हैं। एक फिल्म आई तरुण मजूमदार के निर्देशन में जिसका नाम था राहगीर।

राहगीर में गुलजार साहब ने कुछ बेमिसाल गाने लिखे और उनमें से एक गाना हेमंत कुमार ने गाया जो कहता है, तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए हैं। सुनिए।

जब बात गुलजार साहब के थोड़े से कम चर्चित गानों की होती है तो हमें याद आती है एक और फिल्म जिसका नाम है बीवी और मकान। सन 1966 में आई इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। भले इस फिल्म का बहुत ज्यादा जिक्र ना हुआ हो, लेकिन जब आप इस फिल्म के गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा इतने प्यारे गाने, पर ये कहां छिपे रह गए थे।

पर ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ वही गाने सुनाएंगे जो कम चर्चित हैं। चलिए हवाओं पर सवार होकर 1968 की तरफ चलते हैं। देबू सेन की एक फिल्म आई दो दूनी चार। ये फिल्म क्या थी? ये एक बड़ा गड़बड़ झाला थी, इसलिए क्योंकि ये फिल्म ईश्वर चंद विद्यासागर के नाटक भ्रांति बिलास पर आधारित थी, जो शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित था। लेकिन इस फिल्म के गाने लिखने के बाद गुलजार साहब को लगा इस फिल्म को दोबारा बनाया जाए। उन्होंने फिर क्या चमत्कार किया वो बाद में, पहले हवाओं पे कुछ नाम लिख दिए जाएं। हवा

फिल्म दो दुनी चार के गीतकार ही नहीं थे गुलजार, बल्कि ये फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। फिर आगे एक चमत्कार हुआ जिसे हम अंगूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दो दुनी चार को आगे चलकर गुलजार ने बनाया अंगूर। और अंगूर याद आती है तो क्या याद आता है?

चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुलजार साहब के निर्देशन की दुनिया का थोड़ा सा और कराते हैं परिचय। सन 1972, आप समझ गए कि बात जितेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार के परिचय की हो रही है। आप समझ गए कि बात इस गाने की

भाई ये जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा सा और बताना जरूरी है। सन 1972 की ये वो फिल्म थी जहां से हाथ पकड़कर आगे बढ़े गुलजार और राहुल देव बर्मन। गुलजार और आरडी बर्मन का साथ इसके बाद रहा बहुत लंबा और आए एक से बढ़कर एक नगी ने लंबी छलांग लगाकर फिल्म मासूम पर पहुंचते हैं और लकड़ी की काठी पर सवार होकर दौड़ते हैं।

कहीं से भी यकीन नहीं होता कि ये फिल्मी गाना है, बल्कि ये एक नर्सरी राइम का रूप ले चुका है। न जाने कितनी पीढ़ियां दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा गाते हुए बड़ी हो गईं, और फिर पिताओं ने अपने बच्चों को भी यही गीत सिखाया और फिर ये बच्चे भी इसे गाते हुए बड़े हो गए। इस बीच में कुछ और पीढ़ियां आईं जो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जैसे गाने गाते हुए बड़े हुए। गुलजार साहब को बच्चों से बड़ा लगाव रहा और उन्होंने बच्चों के लिए न केवल फिल्में बनाई बल्कि बच्चों के मुद्दों पर फिल्में बनाने से इतर कुछ किताबें भी लिखी, जैसे बोस्की का पंचतंत्र और दूसरी कुछ किताबें। तो ये तो हुई गुलजार और बच्चों की बातें। अब जरा गुलजार साहब के फिल्म निर्देशन की खुशबू को दूर तक फैलाया जाए। जी हाँ, सन 1975 में आई फिल्म खुशबू, राहुल देव बर्मन का संगीत,

गुलजार और आशा भोसले की तिकड़ी का कमाल था, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। लेकिन बीच में आए मदन मोहन, जब गुलजार ने फिल्म मौसम के संगीत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यहाँ एक और मजेदार बात बताते चलें कि फिल्म मौसम का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने तैयार किया था, जबकि फिल्म मौसम के गाने मदन मोहन ने तैयार किए थे। और इस गाने के बिना कहाँ बीतते हैं हमारे फुर्सत के रात दिन।

गुलजार की इस गीत यात्रा में कुछ ऐसे गाने जो कम सुने गए हैं और एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसी पीढ़ी है जो इन गानों से परिचित नहीं है। आइए फिल्म शक का गाना सुनते हैं कुमारी फैयाज की आवाज में। आपको बता दें सन 1976 में ये फिल्म आई थी।

0: हमारे जहन में कौंध रहा है मुंबई शहर, समंदर का किनारा, ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच दो दीवाने जो आशियाना खोज रहे हैं। न जाने कितने लोगों के लिए बड़े शहरों में आशियाना खोजने की तलाश और उससे जुड़ी हुई मुहिम और जद्दोजहद का ये नगमा है जो हर दिल में धड़कता है। आवाज भूपिंदर सिंह और रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, साल 1977।
1: दो दीवाने शहर में

जिक्र गुलजार के कुछ सुने और कुछ अनसुने गानों का हो रहा है तो क्यों ना यहाँ एक एल्बम का जिक्र कर लिया जाए। गुलजार, आशा भोसले और आर डी बर्मन ने एक दिन अचानक ये योजना बनाई कि रिश्तों पर आधारित एक नॉन फिल्म एल्बम किया जाए। आखिरकार 1987 में ये नायाब एल्बम आया जिसका नाम रखा गया था दिल पड़ोसी है। इससे ये रचना सुनिए।

जब भी बारिश का मौसम घिरता है, जब आसमान से झमाझम बरसता है पानी, तो कितने कितने गुलजार साहब के गाने हैं जो हमारे जहन में कौंधते हैं। कितनी पीढ़ियों तक गुलजार का सफर रहा है, इसकी एक मिसाल पहले सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस बारिश के गाने की एक झलक।

जरा सोचिए कि सन 1980 में गुलजार साहब कहते हैं बरसे फुहार, और फिर 21वीं सदी में फिल्म गुरु के एक गाने में वो क्या लिखते हैं, सुनिए।

हमने सोचा था कि इस कार्यक्रम में गुलजार साहब के इतने सारे गाने सुनवाएंगे कि आपको लगेगा एक पूरा इंद्रधनुष खिल गया है, और कोशिश भी तो यही है। तो अब आशा भोसले की आवाज में फिल्म सितारा का एक गाना आ रहा है जो जिंदगी की संगीन हकीकत को आपके सामने रखता है।

गुलजार साहब की इस स्नेह यात्रा का जिक्र करते हुए, उनके गानों की यात्रा का जिक्र करते हुए अब हम सन 1985 की तरफ आ गए हैं। कमाल की बात यह है कि अमीर खुसरो की एक रचना के साथ गुलजार साहब ने प्रयोग किया और फिर बना फिल्म गुलामी का ये गीत।

सन 1988 में गुलजार साहब ने एक नायाब फिल्म बनाई लिबास। भले ये फिल्म ना आ सकी हो, लेकिन इस फिल्म का संगीत रिलीज हुआ और ये लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

सबसे बड़ी बात ये कि गुलजार साहब खुद को हर थोड़े दिन में रीइन्वेंट कर लेते हैं, एक नए रूप में सामने आ जाते हैं। फिल्म पटाखा का

ये गाना सुनिए, आपको यूं लगेगा जैसे बिल्कुल किसी युवा गीतकार की देन है ये। ये गाना कहता है, आजा नेटवर्क के भीतर कहकर हेलो हेलो हेलो, मेरे व्हाट्सएप के तीतर कहके हेलो हेलो हेलो।

जाहिर है कि इस रचनाकार के भीतर इतनी रचनात्मक गहराई है कि हम चाहे जितनी बार गहरा गोता लगा लें, हर बार कुछ नया मिलता है, हैरानी में डाल देता है। ये धूम धड़ाक गाना फिल्म सत्या से।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गुलजार साहब पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कामले।
1: आज के फनकार।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी,
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती है।
1: जी।
2: अभी ये जो लोग हैं उनको

0: एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है. तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं. अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये. तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल.
1: बिल्कुल.
0: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था. और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है. तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है.
1: बिल्कुल. और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है.
0: हाँ,
1: इस बारे में बताइए.
0: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है, और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है. स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट. इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट. फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट. तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है, जो दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है. तो इस कंडीशन में इंजरीज आर गोइंग टू हैपन. तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन. मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है. बट जो प्रिवेंटेबल है, वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं. अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है. सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है, या कुछ भी अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months to 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक.
1: तो वो पूरा साल,
0: हाँ, साल जाता है. ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है. कॉल इट लाइक,
1: मतलब क्या होता है,
0: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती
1: है. में हम पढ़ते हैं,
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, तो ये होती है इंजरी. 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है. तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड. तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं, वैसे बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है. और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है. बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट. बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है.
1: बताइए ये कितनी महत्वपूर्ण.
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है, क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं. या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है.
1: बिल्कुल, आपने सही कहा. आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं. आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, जरूर है. पर हम ऐसे हैं सब, इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है.
1: यानी जब आग लगती है तभी हम,
0: तभी, हाँ, जब भी थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है. मतलब फर्स्ट साइन इज पेन.
1: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है.

0: कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है। पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको।
1: जी
0: एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया। तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया। तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते। देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे। पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब, यहां ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे तो यहां इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं फिर आगे की बातें करते हैं।

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी।
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम ज्वाइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
0: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
1: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब

0: करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है।
1: जी,
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
1: बिल्कुल
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है ये कितना इंपॉर्टेंट है?
0: हिप्पोक्रेटिस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटिस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट वुड बी द सेफेस्ट वे टू एंश्योर हेल्थ।
1: कितनी बड़ी बात,
0: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी
1: बोला।
0: संस्कृति में यही बात है
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज,
0: सही मात्रा
1: है ना, और
0: वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच।
1: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए।
1: जी,
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए।
1: जी, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा,
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी,
1: हाँ दोनों चीजें
0: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी। अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का डेफिशिएंसी होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है,
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप। पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है, मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है। अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हॉर्मोन रिप्लेसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में। अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है।
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर लिविंग
1: लंबा
0: लंबा जी।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं,
0: जी
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: जिस
1: वो
0: पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही
1: वो
0: हैं।
1: ही है जो सब चलाता है,
0: जी
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है, और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती हैं धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल की जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है।

0: हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया. फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको. वो बॉडी की इनबिल्ट ही है, वो मैकेनिज्म भी,
1: के बाद
0: रिलैक्सेशन की जरूरत है, तभी सब चलता है.
1: जी,
0: एक ये करना है, एक वो करना है. उसके लिए हॉर्मोन्स की जरूरत होती है. थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं, और थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का. तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप. एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे. मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे. अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
1: तो वो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी.
0: हाँ, अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर. एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग.
1: हाँ,
0: उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए. एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की.
1: ये तो
0: अगर
1: बड़ा
0: हम
1: मुश्किल
0: नियम
1: लगता
0: से
1: है.
0: चलें कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
1: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की
0: मुश्किल
1: जरूरत
0: ही है.
1: ना पड़े.
0: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है. और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है,
1: जी
0: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है.
1: क्या बात,
0: क्योंकि
1: क्या बात है.
0: अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ.
1: जी जी बिल्कुल.
0: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं. स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला,
1: हाँ.
0: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है.
1: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं.
0: एक्चुअली
1: जरूरत
0: इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की. या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
1: जो दोनों एक्सट्रीम है.
0: एक्सट्रीम है.
1: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है, उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में. मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989, और तभी तो. लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है. इट इज अबाउट 75-76 years. सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी. और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे. मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है. मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे. रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी. अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था. जो अभी बढ़ गया है ये
1: जी.
0: सब इसके लिए ये सब आए हैं. तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं. तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है. पहले पेन मैनेजमेंट होता है. अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से. मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी.
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से. अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे. क्योंकि एक्सरसाइज, वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी.
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो या

0: आप कोई मेडिकल रेप या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
1: जी, तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास।
0: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो और एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: जी,
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ, पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए, एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज, उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इम्पोर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट, सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे। और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
1: जी जी,
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए एक महीना या दो महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें
0: और करते रहे उसके बाद।
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ, डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा मत बोलो कि मैं दो महीने डाइट पे हूँ, मैं दो महीने एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था, MBBS, और उसके बाद MD और MS नहीं मिला, एक दो मार्क से छूट गया।
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये।
1: हाँ हाँ।
0: जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, इट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया एक दो साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ, लक के वजह से, मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी, थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है,

0: रोल के लिए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है। मेरे क्लिनिक में आते थे। एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है। और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट। तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे।
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 इयर्स। जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी,
0: मैं कभी उसमें नहीं थी। बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है, और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है। तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स। आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर, या सो या ही इज बीन अ प्लेजर। और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप। तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूँ, आई एम वेरी सॉरी, और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज।
1: वाह,
0: बहुत ही हम्बल आदमी है, एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोस 10 इयर्स दैट वाज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल।
1: क्या बात है।
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है। ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं।
1: क्या बात है। तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा, वो क्या फीलिंग
0: मुझे
1: होती
0: कुछ
1: है?
0: अलग नहीं लगता है। नहीं, सच नहीं लगता है। इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन, आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड। कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है। कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है। कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है,
0: तो अच्छा लगता है। दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स,
1: ऑफकोर्स,
0: बट नो, इन रियालिटी नथिंग इज डिफरेंट
1: जी। बातें चुकी इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह ली।
0: पर मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है, बिकॉज वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो, लाइक दीज पीपल आई नो मैंने नहीं किया तो कोई और करता था। मुझे, आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वही प्लेजर देता है।
1: क्या बात है। क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए।
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल,
1: तो दंगल का,
0: का
1: गाना सुनवाते हैं, नैना।

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है
0: एक्सपेंसिव हॉबी
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी,
1: उनको
0: उनको
1: अगर
0: उनको
1: हाँ महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं। बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को।
0: जी
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है,
1: मैं
0: वो
1: उनको
0: उसको
1: सलाह
0: नजरअंदाज कर
1: दे
0: देते
1: के
0: हैं?
1: अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें कर दी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया, जो
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत
1: सर्जरी
0: ध्यान
1: के,
0: रखने की जरूरत
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: जो कि
1: बहुत
0: सीरियस मैटर है।
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इम्पोर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है, मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट फंक्शन वो ही नहीं आता है,
0: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं।
1: यस इट इज रिहैबिलिटेशन।

0: एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा।
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस।
1: जी,
0: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी। अप टू 30 इयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग, 20 टू 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है। ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है। पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है, तो वीकनेस बढ़ जाता है। उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के। तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी,
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स।
1: वो तो बहुत
0: फ्रैक्चर की डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल। सो वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है।
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय
0: बहुत
1: हैं,
0: वो ही बहुत जरूरी है, और वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week used to come to clinic, and 95 he passed away. One day before that also he had requested home visit for exercise.
1: क्या बात है, इतना
0: so some people are really, और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास,
1: वाह वाह,
0: हाँ, और हमारे क्लिनिक में गाना गाते थे,
1: क्या बात है,
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते,
1: क्या क्या बात है, क्या बात है, जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ, हाँ, भी हम,
0: वो भी 10 साल आए हमारे पास जस्ट एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज।
1: गजब, क्या बात है। चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा।
0: यस।

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो,
0: जी
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज
0: प्रॉब्लम्स।
1: एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना। हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर
0: जी
1: आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो। जिस
0: जी
1: दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि

0: उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा.
1: बिल्कुल,
0: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो.
1: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है.
0: यस
1: डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई. आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से
0: थैंक यू
1: मुखातिब
0: वेरी
1: होके
0: मच.
1: जरूरी बातें बताइएगा.
0: आई एंजॉयड. थैंक यू.
1: शुक्रिया.
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: बल्ले मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है।
1: आप सुन रहे हैं रंग तरंग गुलजार स्पेशल।

0: भूपिंदर की आवाज थी, गुलजार के बोल थे, खुद भूपिंदर की मौसिकी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पे लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दीं कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे।

ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरंडों पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया।

दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी, बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं।

0: आमद की आहट और न जाने की टोह मिलती है।
1: कब आते हो, कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो। धीरे धीरे आंगन में फिर धूप से सिसकती रहती है। कब आते हो, कब जाते हो।

तक इंतजार करती है। कोहरे में खड़ा हुआ पुल तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम बुझ रही थी और आने वाले की कोई आहट नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के इस शरीर से बहुत खेल चुके, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

उस रात बहुत सन्नाटा था, उस रात बहुत खामोशी थी। साया था कोई न सरगोशी, आहट थी न जुम्बिश थी कोई। हां देर तलक उस रात, मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर एक दूजे को टिकटिकी बांधे तकते रहे।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की ब्याह हो तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

सितारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों सबका। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है, घाट छोड़ के माझी तमाम जा भी चुके। चलो न चांद की कश्ती में झील पार करें।

भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाए। मुझको की तरकीब सिखा कोई यार जुलाए।

0: विविध भारती पर रंगतरंग गुलजार स्पेशल।
1: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंबा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं, आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?
0: विशाल भारद्वाज की आवाज़।

आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा, आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी, आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे भाए, कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है, ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।

रंग तिरंग कार्यक्रम आज गुलजार स्पेशल है। आज है गुलजार साहब का जन्मदिन और अब देखिए ना वक्त कैसे खत्म हो गया और आखिरी पेशकश की बारी आ गई। जेके बनर्जी की आवाज।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओ, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना

0: अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चापो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओं, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
1: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया
0: जी।
1: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है
0: जी।
1: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
0: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र
1: जी। श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए
0: जी।
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है
0: जी।
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दे।
0: इसका संबंध खानपान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है
1: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: अश्रोता, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
1: पंडित बिरजू महाराज।

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था।
2: वाह, क्या बात,
3: क्या बात, पांवों में बिजली है।
2: वाह,
3: आओ भंगिमा, तो
2: पांवों में ऐसी प्रतिभा,
3: अद्भुत, प्रभावशाली,
2: अति सुंदर, अति सुंदर,
4: अति सुंदर, ये कभी नहीं देखा।
0: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म

0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम ब्रिजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 वर्ष की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
2: प्रणाम पिताजी।
3: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
2: लेकिन क्या पिताजी?
3: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
2: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
3: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
2: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
3: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
2: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
3: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
2: जी पिताजी।
1: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और खासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें, अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये जरूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूंगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूंगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, चमचम, सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज खत्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा, अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन ही में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था।

0: अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कह अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांग जा कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूंगा घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, करें अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
0: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथे ही ताते ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथे ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाती हो? हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं। तो सब्जी पूड़ी,
2: वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
2: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
1: भगत सिंह
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
6: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
7: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
6: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
7: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
6: ये इस शीशी में क्या है?
7: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
6: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
7: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
6: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
7: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग

0: पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
1: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
1: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
0: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: के कब पढ़ना वो चिट्ठियाँ, आँखों के पानी में रखना वो चिट्ठियाँ, तैर के नजर आएगी जरा वो देखाती, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है।
1: छपा के छे पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की, छे छप छे छपा के छे पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की देखी है हमने।
2: फिल्म का नाम था हू तू तू। गुलजार भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर फिल्म रूदाली।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और आज की इबारत भी पोस्ट हुई और आप सभी जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। उस शख्स को सलाम जो रात में घोलता है चांद की मिस्री, जिसका चांद पर कॉपीराइट है। उस शख्स को सलाम जिसे फूलों की बेलें अरबी में लिखी आयतें नजर आती हैं। उस शख्स को सलाम जिसने उम्र की लंबी सड़कों पर 92 बरस पार कर लिए हैं, जिसे बचपन के अच्छे सच्चे बाबूजी अभी भी याद आते हैं, जिसे वो कलियां याद आती हैं जिन्हें वो छोड़ आया। उस शख्स को सलाम जिसने हर एक गम को गले से लगाया है, जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया है, फिर भी जिसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और जो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। उस शख्स को सलाम जिसे बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं, जिसके लिए पंछी सुरीला सलाम भेजते हैं। सलाम उस शख्स को जिसने हमारे लिए 7 रंग के सपने चुने हैं, जो हाथ पकड़ता है हमारा तो पांव जमीन पर नहीं होते। उस शख्स को सलाम जो हर काम दिल से करता है, सपने में मिलता है और रात का सुरमा ले आता है। सलाम उस शख्स को जो जानता है कि कागजों की कश्तियों का कहीं कोई किनारा नहीं होता, जो जानता है कि बिरहा की रात में जलना क्या होता है। देखी ना, छोटी सी कहानी से सारी वादी भर गई, जिंदगी गुलजार है। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार साहब को सलाम, और गुलजार साहब से जुड़ी कुछ पहेलियां आज के इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। आप कितना जानते हैं गुलजार साहब को और गुलजार साहब से कितना प्यार करते हैं, आज इसकी आजमाइश भी होगी इन पहेलियों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और जैसा कि आज की इबारत कहती है कि रात में घोले चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, तो उसी गाने से करते हैं आगाज। महिला स्वर किसका है इस गाने में, ये बताइए।

सुरीली बोलियां बोलने का संदेशा देते हैं गुलजार और विविध भारती। हमेशा सुरीली बोलियां ही बोलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गुलजार साहब का जन्म कहां हुआ था? और दूसरा सवाल यह है कि साहित्य से जुड़े दो बहुत बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए, तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सुलक्षणा पंडित की खनकती आवाज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने कहा, कुछ श्रोताओं ने से लता मंगेशकर की आवाज समझ लिया, ये गलत जवाब था। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं, बचपन के बाबूजी के साथ जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलजार हर फन में माहिर हैं। वो अस्पताल के मायूस माहौल में लिखते हैं, इस अस्पताल में सब कुछ है और माहिर डॉक्टर भी सांसें मशीनें के जरिए चलती हैं और बोतलों में भरकर खून मिलता है, लीवर भी ठीक दाम पर मुहैया रहता है। उन्होंने एक गुलजार साहब की कोई रचना शेयर की है हमारे एक श्रोता ने। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता हैं जिन्होंने आज की इबारत के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, बारिश कम कम लगती हैं, नदियां मध्यम लगती हैं वगैरह चुनकर लिखती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, गुलजार साहब की कलम ने हमें सिखाया है कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है और खामोशी भी बोलती है, शब्दों का ऐसा जादू कम लोगों को आता है। एक और श्रोता हैं जिन्हें आज का सुबह जो आज के फनकार कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया। एक और श्रोता हैं जिन्हें गुलजार और विशाल भारद्वाज का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता हैं जो जर्मनी से हमारे तमाम विविध भारतीय परिवार को सलाम कर रही हैं और आज का ये कार्यक्रम सुन रही हैं। इसके अलावा तमाम श्रोता हैं जो बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, गुलजार साहब कहाँ पैदा हुए थे? साहित्य के दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? आज के इस कार्यक्रम में कुछ बहुत कठिन पहेलियां भी पूछी जाने वाली हैं। चलिए अब ये गाना जो बहुत ही शानदार गाना है ये आप तक आ रहा है और आपको ये भी बताना है कि अगर तीन गुलजार सॉन्ग्स, टॉप थ्री गुलजार सॉन्ग्स, योर मोस्ट फेवरेट्स मैं लिखने को कहूं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपने तीन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने कौन से लिखेंगे आप? विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब।

1978 में आई फिल्म घर का ये गाना। एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि वो नीदरलैंड्स में ये कार्यक्रम सुन रही हैं। और देखिए ना कि न्यूज ऑन एयर एक ऐसा एप्लीकेशन है और एलेक्सा डिवाइस जिसके जरिए पूरी दुनिया में विविध भारतीय हमारे श्रोता सुनते चले जा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में लोगों को विविध भारती सुनाई दे रहा है। गुलजार साहब का जन्म दीना में हुआ था और साहित्य के जो दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं वह है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी उन्हें अपनी किताब धुआं के लिए मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था साल 2023-24 में। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है, उनकी नज्मों में पीला चांद कैसे शाख में अटक जाता है, आकाश जमी हो जाता है, गीला चांद कैसे खिल जाता है। गुलजार साहब कहते हैं चांद पर उनका कॉपीराइट है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार ने रोजमर्रा के बिंब जैसे चाय की प्याली, धूप, खिड़की, कोहरा, अलमारी जैसी आम चीजों को कविता का हिस्सा बना दिया है। यही होता है एक बड़ा लेखक। झेलम जिले के दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इसके अलावा सुलक्षणा पंडित वाली बात भी बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि गुलजार साहब का काम कितना ज्यादा सराहा जाता है। गुलजार साहब को कुल कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं ये बताइएगा। कठिन सवाल है लेकिन खोज कर बताएं, सोच कर बताएं, पर बताएं जरूर। और दूसरी चीज, जब गुलजार साहब कहते हैं बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, तो क्या याद आता है आपको?

आशीर्वाद फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं की, सभी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखती हैं, एक था बचपन बहुत अच्छा लगता था, पर अब बाबूजी नहीं हैं तो ये गाना भाव विफल कर देता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मुझे मेरे पिताजी सुनाते थे बचपन में ये गीत, एक था बचपन। उनके पिता मेरे दादाजी उन्हें छोड़कर चले गए थे, बाद में पता चला कि वो साधु बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हृदय को झंझोड़ कर रख देता है ये गाना। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बाबूजी के रूप में अशोक कुमार नजर आते हैं। इसके अलावा कई श्रोता हैं। एक और श्रोता लिख रही हैं, गुलजार की आंखों में उदास उदास चमक उनकी आंखों पर अक्स डालती रहती है, यही उदास चमक उनकी शायरी का लहजा भी है। कई श्रोताओं ने जवाब दिया है कि गुलजार साहब को कुल 22 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। 22 फिल्म फेयर पुरस्कार, जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा कीर्तिमान। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पिताजी याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि सुरीला सफर कार्यक्रम में आपने जो गुलजार साहब के गाने सुनवाए वो बहुत अच्छे लगे। कमेंट्स की इतनी लंबी लकीर आज है कि सभी कमेंट्स सुनना, सभी कमेंट्स पढ़ना भी मेरे लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप में से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल किए जा सकें। एटलीस्ट मैं आपके कमेंट्स पढ़ तो सकूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 116 चांद की रातें एक तुम्हारे कांधे का तिल जैसी गहराई है, गुलजार साहब के अल्फाज में। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि आज कुछ कहने का मन नहीं, वो बस आंखें बंद करके सुरीले गाने सुनती रहना चाहती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता, उनका कहना है कि सावन की बरसती बूंदों ने आज मुझे कान में आकर कहा कि आज का ये कार्यक्रम यूनुस खान पेश करने वाले हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि गुलजार साहब कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने आगाज किया आंखें नम हो गईं। और इसके अलावा गुलजार साहब को जो अवार्ड्स मिले हैं उन सब की लिस्ट हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यहां पर पेश की है। तो ये सवाल वापस के गुलजार साहब के टॉप 3 सॉन्ग्स आपकी नजर में कौन से हैं, आपके सबसे पसंदीदा दिल के करीब 3 गुलजार गाने हमें बताइए। और अब आ रहा है वो गाना जो हम सब के लिए बहुत करीब, बहुत अनमोल। अगर कभी गुलजार साहब से आपकी मुलाकात हो जाए तो पहला वाक्य आप क्या कहेंगे?

0: जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और वो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही हैं सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है, जिंदगी हर चीज का जवाब नहीं देती, सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है, जवाब का खोज, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं तो उसे नाराज नहीं, दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है उनके तीन पसंदीदा गाने हैं जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन और तुम आ गए हो, नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं, क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूँ यारों तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं, कसैली रात के हाथों पर रखती चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ कब से, तेरे आंचल से चेहरा पूछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अब आ रहा है अगला गाना जो जिसमें बेलें और आयतें वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: क्यों कर रहे हो, कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है, वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है।

अंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है, अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है और हम उसे अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर जमीं पर ही टिके हैं, इसलिए वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा, ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं, और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है, उन्होंने कभी अपनी नज्मों से, कभी अपने गीतों से, कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं, गुलजार संजीव कुमार और आरडी बर्मन बेमिसाल जोड़ी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं एक किस्सा कि गुलजार आरडी बर्मन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंचम दुर्गा पूजा के लिए कुछ धुनें बना रहे हैं। गुलजार वहीं बैठ गए और धुनों को सुनने के बीच उन्हें एक धुन बहुत ज्यादा पसंद आई, और उसके अलावा उस धुन को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत पंचम से कहा कि इस धुन का इस्तेमाल वो अपनी एक फिल्म के गाने के लिए करना चाहते हैं, और वो जो गाना है वही है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक और कठिन सवाल पूछते हैं कि ये जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये जो किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो बांग्ला गाना कौन सा था जिस पर ये गाना आधारित था? कठिन और आसान दोनों ही, क्योंकि जवाब पता हो तो आसान, नहीं पता हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन ने इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था ये बताइए, और इसके अलावा ये भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था ये भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ आए हम, किन गलियों को छोड़ आए हम,

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक शब्द का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले देरी। ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये गाना बना था। जेते जेते पोथो होले देरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बम्बई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपाकली, ये हैं सुचित्रा सेन की हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है। मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बम्बई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था, जेते जेते पोथो होले देरी। क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं। कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने और कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता, ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां। एक और श्रोता, राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार किस गाने के लिए मिला ये भी बताइएगा, और ये आवाज किस बेमिसाल गायक की है। सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती

0: बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हो, निराश हो या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं, वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां, एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम श्रोताओं के कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये है कमाल।
1: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले
0: है। एक श्रोता लिखते हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की गलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है। राजेश रोशन का संगीत था, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता है जो कहते हैं कि गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया। बताइए क्या कहें हम, किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना। एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा, वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल। उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़ा या थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है। कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

0: या मध्यम लगती है।
1: ये फिल्म आपने किस शहर में देखी थी जरा बताएं तो।
0: छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले।
1: और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे?

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना, शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल, सुरीला सफर।

0: दो दुनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए, छाओ छम से नीचे कूदी, क्या पंक्ति है, ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है गाना। और गुलजार साहब स्पेशल को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना,
1: छोटी बातें।

बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है और जब मौका आता है तो वो यूं भी लिख देते हैं। किस फिल्म का है ये गाना फटाफट बताना।

0: धन्नों का गुस्सा और धन्नों की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया और आज थी गुलजार साहब के गानों की बारिश।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं है। भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करती हैं, तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहें। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए। ज्यों आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
4: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया

0: रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी दो दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ, राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

सदाबहार नगमे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कशिश फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, संगीत कल्याण जानन जी का।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए सवाल से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका लेते
1: लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना बताइए।
2: वो तो मुझे पता है। ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई वाहन चलाया दो पहिया चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताए नहीं बताएंगे
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं।
2: वो तो नहीं है बिल्कुल।
1: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं, लेकिन वो जो डर है ना
2: डर बैठ गया
1: वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें।
2: बिल्कुल सही।
1: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी। सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है।
2: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
1: तो बस जी तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में।
2: जी और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे।
1: और मुहावरों की जो दुनिया है ना रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और
2: जो कि ममता जी जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे क्या कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में।
1: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें। और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं। और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। संस्कार सिखाएं जरूर लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं, आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरें पैदा करें।
2: सही बात है क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात। कई बार होता है ममता जी अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती मन की बात कहना। ये
1: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए, अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
2: साइकिल ही थी हमारी तो। और हम साइकिल जो थे हम और मेरी जो बहन थी हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे फिर साइकिल पर बैठते थे चलाते थे
1: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंची तो साइकिल, क्योंकि बच्चों के नाम से साइकिल खरीदी नहीं जाती थी, वो बड़े भाई बहनों की साइकिल होती थी इसलिए।
2: बिल्कुल वही हाल था। लेकिन उसमें क्या होता था हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहाँ कोई पत्थर ढूंढते थे उस पर चढ़ते थे।
1: क्या बात
2: फिर
1: है।
2: वापस
1: और साइकिल एक कोई चलाता था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उस पर बैठता था और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उस पर बैठता था।
2: लेकिन कैंची जो लड़के कैंची चलाते ना वो मुझे कभी नहीं, कोशिश भी करी तो कई बार गिर ही गया चोट भी लगी। लेकिन
1: खैर ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था और अपने अनुभव साझा करें। क्या हुआ जब पहली बार आप ने साइकिल चलाई या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना बहुत छोटे, जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते, मतलब 5-6 साल की उम्र में तीन पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया जाता था
2: बच्चों को जो साइकिल होती थी।
1: हाँ तो वो भी अगर आपको याद हो आपके जहन में हो वो याद ताजा हो तो जरूर साझा करें। फिलहाल

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई हैं, लेकिन टिप्पणियां तो पढ़ेंगे लेकिन जरा कुछ चर्चा भी तो कर ली जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बेटियां जब घर में आती हैं, मतलब एक बेटी पैदा होती है तो जश्न नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज जमाना बदल गया है, अब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहां पर ये चलन नहीं है वहां पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार की मुस्कान ही नहीं होती बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग समझाने लगते हैं, समझाइश की पोटली लेकर खड़े हो जाते हैं।
1: और कहा भी जाता है कि जब, हमें याद है ममता जी जब छोटे थे तो यही कहते थे कि नहीं ये सारे काम कर लो, चाहे टोकरी से प्याज ही ले आओ, लहसुन ले आओ, छील दो, तो ये छोटे छोटे कटोरी ले आओ, ग्लास,
0: घरेलू काम,
1: घरेलू काम से शुरुआत ही कर देते थे कि ये करना है, अच्छा अंधेरा होने से पहले घर के अंदर ही आ जाना है, बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ अक्सर सिखाया करती है अपने बच्चों को। और हम अक्सर बेटियों को संस्कार, मर्यादा और जिम्मेदारियां सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन आज के समय में इतना ही काफी नहीं है। उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या सही है, तो ये संस्कार देना जरूरी है। लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है, कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती हैं, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए, उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावे से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी, इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी। हमें नहीं लगता हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है लेकिन बेटियों से नहीं।
1: पहले देखिए ये ऐसा होता भी था कि जैसे कि कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे बाद में दिलाएंगे, या सिखाने की बात होती, जैसे साइकिल की बात है, वाहन ही सिखाने की बात है, तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसे आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं अच्छा, तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
0: ना करने का एक फायदा भी होता है कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते हैं। बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण कर जाते हैं, जैसे बैड टच, गुड टच का उन्हें ध्यान नहीं दिलाया जाता है, और घर के ही लोग, मामा चाचा, रिश्ते में भाई लगने वाले लोग उनके, मतलब स्पर्श के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका असर उनके मन पर बड़े होने पर रहता है, बड़े होने
1: रह जाता है, उनके मन पर रह जाती है बात।
0: और हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक विराम यहाँ पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनके गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक, तो इस चीज को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो, अभी
0: वो तो
1: बताओ।
0: तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकती
1: नहीं
0: हर चीज को।
1: इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो, तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए, हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते हैं, पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है, और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब हम सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती। वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं हैं, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा हैं। बेटियों में संस्कारों की छांव तो जरूरी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

0: तो देखिए बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है, और उन्हें यह एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए। ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे किसी से कम नहीं हैं। घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें। कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
0: काम होता है,
1: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए,
0: मार्शल आर्ट
1: और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर मन में कोई उनके
0: खुलकर सोच सकती है,
1: मन में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही आपकी लड़की जिसे वो बताने में संकोच कर रही, क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है, तो उसे बैठे घर वाले और ये नहीं कि कोने में ले जाके चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें, तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास

0: पढ़ाने का काम किया है जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था। साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत ज़रूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन बात अपनी बात कह गए हैं ये
1: जी।
0: इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर हैं, चौराहे पर खड़े हैं, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें बड़ों का अदब करो, बड़े संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
1: सही बात, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर के बारे में सही फैसले ले सकें, उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज उठाना सीखें।
0: हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ममता जी, समय के साथ साथ हम माएं भी समझदार हो गई हैं, अब बेटा बेटी समान है, बल्कि सच कहें तो बेटियां दो कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप सुनने के साथ साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में और त्वरित टिप्पणी भेज रही हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी माएं ना समझी क्या बर्ताव करती हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसी परंपरा चली आ रही है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी, आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
1: नहीं नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही हैं, लिखती हैं कि बच्ची, किशोरी, कुमारी, ये बेटियों की अवस्थाएं संस्कार क्षम कही जाती हैं, आकाश को लांघ कर चांद तक जा पहुंची हैं। आज की दुनिया में अब रहन सहन, परिधान, बोली भाषा, आहार विहार, शिक्षा, इन सभी संस्कारों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। छुई मुई कोमल अबला नहीं तो आत्मविश्वास से संपन्न निडर बेटी है, ये हर पालक का सपना बन रहा है, इसीलिए तो बेटी को भेदभाव रहित लालन पालन करना जरूरी है, दया, क्षमा और शांति को साथ लेकर हक के लिए आवाज उठाना, आत्मसंरक्षण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक साक्षरता, अन्याय का प्रतिरोध करना जैसे भावनात्मक दृढ़ता वाले बढ़ाने वाले संस्कार हर बेटी को मिलने चाहिए। बहुत सुंदर सी बात लिखी।
0: हमारी एक सखी लिख रही है कि निडर बेटियां विपरीत परिस्थितियों में घबराती नहीं बल्कि अपना बचाव खुद करने में सक्षम होती हैं। जब बेटियों में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने करियर, जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूँ मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज्यादातर महिलाओं की टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या? वैसे अगर सहमत होंगे या नहीं होंगे तो अपनी टिप्पणी आगे साझा कर सकते हैं, हम पढ़कर सुनाएंगे
1: जी।
0: और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और ब्रेक पर जाने से पहले मंजरी जी हम बात कर रहे थे कि बेटियों को सिर्फ संस्कार के बोझ तले ना दबाएं बल्कि उन्हें निडर बनाएं, आत्मविश्वास से भरें उन्हें। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बेटियों को हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि दुनिया कैसी है, उन्हें ये भी सिखाना है कि दुनिया का सामना कैसे करें। संस्कार उनकी पहचान बने और आत्मविश्वास उनकी ताकत बने। उन्हें इतना निडर बनाएं कि वे अपनी बात कहने से डरे नहीं बल्कि अपने सपनों को छोटा ना करें। और अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है
3: जी,
2: ये सुनते हैं ये गाना।

0: तो भाई ये जो फिल्म थी रश्मि रॉकेट, यहाँ इसमें भी एक ये लड़की की कहानी है जो दौड़ने
1: जी
0: में माहिर होती है।
1: बिल्कुल
0: पुरुष बहुल समाज में लड़कियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, वो संघर्ष
0: अब
1: करती तभी वो जीतती है।
0: बिल्कुल, तो संघर्ष करने से हारे नहीं पीछे नहीं हटे, बस यही पैगाम है आज के इस मंच से। आज फिर हम अगले मुद्दे पर अब आते हैं। किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से होती है। नीरू शर्मा की उद्यमिता की कहानी भी ऐसे ही एक विचार से शुरू हुई। भारत में ई कॉमर्स को आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का सपना इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आज।
1: नीरू शर्मा भारतीय टेक और ई कॉमर्स क्षेत्र की उद्यमी है और इंफीबीम के सह संस्थापक रही हैं। बाद में कंपनी का कारोबार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेवाओं की ओर काफी बढ़ा और नीरू शर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से की और आगे चलकर अल्काटेल जैसी तकनीकी कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसमें वित्त और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने।
0: और एमबीए के दौरान और उसके बाद उन्हें अमेज़न में काम करने का मौका मिला। वहां ई कॉमर्स के कामकाज, ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इंफीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था, वे ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: इंफीबीम की शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इंफीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल, और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: तीन देवियां फिल्म का गाना था, और मंजरी जी आपने हमसे पूछा था कि पहला वाहन कौन सा था, तो हमने अपना अनुभव बता दिया, आपने भी अपना अनुभव बता दिया। अब जो हमारी सखियां हैं, हमारे सखा हैं, उनके अनुभव भी हम जान लेते हैं। हमारी पहले तो बता दें कि हमारी एक सखी लिख रही कि हम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट शहर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहां से नमस्कार भेजा है आपको भी और पूरे शहर को, विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार पहुंचे। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरा पहला वाहन साइकिल थी, जब मैंने 8वीं क्लास पास की तब मुझे मिली थी, हालांकि ये साइकिल नई नहीं थी, मेरे भाई की साइकिल मुझे मिल गई थी। फिर मुझे करीब 6 साल पहले फिर साइकिल का सुरूर चढ़ा और घर में नई साइकिल खरीदने के लिए पति से काफी जद्दोजहद हुई, पर मैंने अपने लिए एक नई साइकिल खरीद ही ली। अभी कुछ ही दिन चलाई थी कि एक दिन मैं साइकिल से गिर पड़ी और मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मैं सुबह साइकिल चलाती हूँ, पर अब बहुत संभल कर चलाती हूँ।
1: सही बात है, अगर गिरेंगे, कहते हैं ना कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हाँ चोट लग गई तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई आप अपना ध्यान रखें। और हमारे साथी लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक पुरानी लूना खरीदी और उसे ट्रेन से हमारे शहर ले आए ताकि उसे इस्तेमाल कर सकूं। उस समय मैंने सरकारी नौकरी शुरू की थी, उस शुरुआती दौर में जो मोपेड थी उनकी शॉकअप और सस्पेंशन नहीं थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पिता पीछे बैठे थे। गाड़ी के सख्त होने की वजह से वो रेत और कचरे में से भरी सड़क पर गिर गई, मुझे थोड़ी चोट भी आई, ठीक होने में 1 महीना लगा और मुझे बिना वेतन के 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अक्सर अपनी वो पहली गाड़ी याद आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 12 साल का था तब घर में पहला वाहन खरीदा था। और बहुत सारे श्रोता अपने अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं वाहन से जुड़े
1: जी। और एक लिखते हैं कि उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी बचपन में, और उसके बाद साल 1968 में कॉलेज में दाखिला होने के समय बड़े भैया ने मेरे लिए साइकिल खरीद कर दी थी जो एक अच्छी कंपनी की थी, और 74 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोपहिया वाहन उन्होंने लिया था और बिना गियर वाला, बाद में गियर वाला उन्होंने स्कूटर लिया, अब बढ़ती उम्र में बिना गियर वाला स्कूटर वो चला रहे हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं, हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि जब मैं 9वीं कक्षा में थी तभी अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आ गई थी, तब मेरे नाना जी ने मुझे साइकिल खरीद कर दी थी, वो एक लेडीज साइकिल थी और मुझे सिखाई भी नाना जी ने। हमारे घर के सामने एक वॉलीबॉल ग्राउंड था, वहां पर मैंने खूब साइकिल चलाई और मैं साइकिल पर चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरना नहीं आता था, अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती थी और मुझे वो साइकिल से उतार थी। क्या बात है भाई, आज तो यादों के खजाना खोल दिया गया है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि उस समय कितना प्रेम था साइकिल से, घर से थोड़ी दूर भी जाना होता था या मम्मी छोटे से छोटा काम भी बोलती थी तो उछल कर करने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर आ गया स्कूटी, अरे नहीं नहीं, इससे पहले तो मैं कार भी चलाना सीख ली थी पर पापा जी चलाने नहीं देते थे, उन्हें लगता था कहीं मार दूंगी, फिर स्कूटी आया तो अब तक काम आ रही है मतलब वो, और हालांकि शुरू से लेकर अब तक तीसरी स्कूटी है, जैसे जैसे नई तकनीकी की आती जाएगी गाड़ी तो मैं चेंज करती रहूंगी। वाकई आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि सालों साल तक वो याद रह जाती कि कैसे हमने अपने माता पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना, और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मजा आता है, इन्होंने कहा है, और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है, हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं चल जाने के लिए, तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
1: और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था, तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी, उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे और बाकी रुपए पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा भी पहला वाहन और आखिरी वाहन साइकिल ही था और अभी तक है। परिवार इतना धनी नहीं था कि काठ का तिपहिया वाहन बनवाता, ये तो गनीमत रही कि शादी जल्दी हो गई और साइकिल मिल गई जो बदलते हुए भी अब तक बना हुआ है। भाई शादी में आपने साइकिल अगर दहेज मिली है तब तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भले ही कितनी विपन्नता हो लेकिन जो दहेज में आप ले रहे हैं वो लोग कैसे कलेजा काट के चीजें इकट्ठे करके वो दहेज देते हैं। उन माता पिता से जरा पूछिए उनका दर्द क्या होता है।
1: अपनी मेहनत से खुद खरीदें तो बहुत अच्छी बात है
0: जी।
1: तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे, तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा, उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर फिर जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया, आ गया, स्क्रीन आया कि नहीं आया। फिर नीचे से कोई बताता था, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है। अच्छा, तो और हिलाते थे उसको, वो एक अलग ही, तो वो तो, और वो रंग विभंग जो पड़ता था ना, वो बड़ा करारा होता था, बहुत
1: अभी
0: ही गहरा।
1: तक याद है वो रंग विभंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया।
0: तो एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आए, और तिलक जैसे ही खत्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई, तो वहां पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौकों पर, दुखद मौकों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्योहार मनाया गया मतलब जा रहा था, और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना? तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया था, तो
0: रंग में भंग
1: पड़ गया।
0: और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है। इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें, क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
1: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं, और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग घर में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था, जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए, फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
0: तो भाई, ये कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवा लेते हैं। सखियों और सखाओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगान, गंगाजल, अब तक छप्पन, अपहरण, बवंडर, सिंह इज किंग, राउडी राठौर जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है। वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है। जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधार टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना और बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
1: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
1: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
3: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
1: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
3: जी,
1: आकाशवाणी जलगांव में?
3: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
1: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
3: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाला था।
1: जी जी।
3: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
1: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
3: बिल्कुल।
1: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कोई ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, किस कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया।
1: जी, और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
2: शुरू हो चुका है ये
1: जी
2: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
1: क्या बात
2: तो
1: है?
2: आप वहां भी देख सकते हैं।
1: जी, आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो NSG की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
3: जी, मैं गलती से जब
1: गलती से मिली यशपाल जी से
3: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे NSD के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ, तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ।
4: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। फिर क्या हुआ?
3: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे फिर। फिर तो लड़ाई चलती रही।
4: अच्छा। पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर लें। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
2: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो 4थी बार किया तब हुआ।
4: अच्छा,
2: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
4: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप लोगों को मिलाया।
2: 3 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में, तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था, प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय कुलकर्णी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा
4: जी। तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
2: नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, उसको चल रहने देते हैं थोड़ा सा
4: जी।
2: हाँ, लेकिन एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त।
4: जी जी जी।
2: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
4: अरे। अच्छा।
2: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया, हाँ। कि अपने बाल कर्ली करवा लिए।
4: अच्छा।
2: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया,
3: कुछ ना कुछ करवाते ही रहता था।
2: बता रहा था भाई, 400 रुपए बहुत ज्यादा थे उस वक्त, 400 रुपए तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त, तो बोलो 400 रुपए में करवाए हैं बाल कर्ली। तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थे, वो भी अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपए में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात।
4: जी, तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
2: प्रतिभा जी,
3: पिया तो से
4: नैना लगे रे। वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।
5: पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो जो मैंने उठाया था,
0: जी
1: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
0: हाँ,
1: वहाँ
0: चल
1: इस
0: के चल के जाया।
1: हॉस्टल से वहाँ तक। तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया जलगांव, दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ए ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया। मैं कहा नहीं तुम साथ चलो,
0: अच्छा
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं।
0: ओ
1: बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे
0: अरे तो
1: वो आर्य
0: यशपाल के
1: समाज।
0: वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
1: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
1: हुई शाम का
0: ख्याल आ गया है।
1: खयाना।

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में, और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे
0: कौन सा
1: रेपेट्री
0: काम
1: में।
0: था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर
2: नाटकों
1: काम
2: की
1: करते थे,
2: रिहर्सल
1: नाटकों
2: वगैरह।
1: की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों के?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
0: दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
0: जी
1: मारिया।
0: जी यशपाल जी से हम जाना चाहते हैं। अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं? गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी, और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे, और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
0: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
2: वो,
1: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
0: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम। तो वहाँ हमारे पास पेजर था, पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई टांग खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
0: जी
2: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था, क्रिश्चियन
0: अच्छा
2: लड़की का।
0: जी
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5 4 घंटे ऐसे घूम घूम के, कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5 4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि
0: बिल्कुल
2: मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है।
0: और
2: मतलब
0: बहुत था
2: इसमें
0: जी।
2: वेरिएशन भी है, नेगेटिव

0: है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है। तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: मेरी तो ऐसे, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा। मैंने तो थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहाँ ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सेलेक्टेड।
1: क्या बात है, वाह।
0: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन उसी वक्त। आमिर खान मद्रास में थे, एआर रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए। तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
1: जी
0: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़ 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है, और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैंने कहा फिर 80 हजार में कर लूंगा। फिर सोचा चलो 40-50 हजार में कर लूंगा। अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20 हजार मिलेगा तो भी कर लूंगा
1: क्या बात है,
0: फिर
1: कितनी
0: मैं
1: प्यारी
0: गया
1: बात
0: रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया। तो
1: है।
0: रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, दो दो लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात है।
0: अब देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था। फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50 हजार और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था। तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह, बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया, मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया। और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी,
1: जी बिल्कुल।
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।
1: जी।

0: आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको।
0: जी
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से।
0: जी
1: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक कोई जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो
0: जी
1: गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहाँ से वो सामने गोरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो, इसीलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो। और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद्य है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं।
0: अच्छा, क्या बात
1: गौरी
0: है?
1: को देखने के बहाने।
0: जी जी जी
1: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा, और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई, मैं क्या कर रहा हूँ अब इसके लिए, मैं देश को धोखा दे रहा हूँ, वो
0: जी
1: एक एहसास हुआ, और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया।
0: जी
1: कुदरती अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
0: क्या बात
1: जी
0: है,
1: जी
0: बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और
0: जी
1: खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे,
0: जी
1: ये
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया,
0: बिल्कुल
1: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी, और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे, और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन
0: जी
1: चुका
0: जी
1: है,
0: जी
1: जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए, और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था।
0: जी और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट है ही,
1: बिल्कुल, आमिर खान
0: तो
1: के साथ
0: उनका
1: उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी, और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या
0: जी
1: करना
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर
2: मुझे?
1: लगान का ही सुनवा दो।
2: हाँ, वो
0: जी,
2: बहुत
1: कोई
2: इंस्पायरिंग है,
1: हमसे जीत न
2: कोई
1: पाए,
2: हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज
0: क्या
1: देखना उनको लगान रोज
0: है। तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: वो नहीं
0: तो
1: देखनी, ये ही
0: बच्चे
1: देखनी।
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब अब बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे
0: क्या
1: उनके फेवरेट एक्टर है उनके
0: बात है
1: पापा।
0: बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है,
0: जी नाम बताएं तो ऐसे।
1: सौम्या, सौम्या
0: जी
1: शर्मा।
0: चलिए, सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे
0: हीरो
2: हाँ एक
0: हीरो हैं।
2: मिनट, सॉरी मैं बीच में
0: हाँ
2: डिस्टर्ब
0: हाँ
2: कर
0: नहीं
2: रहा
0: नहीं
2: हूँ। जब
0: बोलिए बोलिए।
2: लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे, एक ऐसा हीरो आ गया है जो उसने सबको फेल कर दिया, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई। हैं
1: ऋतिक
2: कौन
1: रोशन
2: सी
1: की
2: वाली फिल्म
1: पहली
2: थी?
1: फिल्म जो थी
2: कहो ना
1: वो
2: प्यार है।
1: कहो ना
2: हैं
1: प्यार है।
2: तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या करूं लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई
0: जी, बिल्कुल।
2: दोनों।
0: प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है। तो
1: जी
0: ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा
1: नहीं,
0: था?
1: हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते
0: कर
1: आए
0: चुके
1: थे,
0: हैं।
1: तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी तब मुझे राजन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे,
2: पता नहीं मुझे,
1: रघुवीर यादव
2: रघुवीर
1: शायद,
2: यादव सेल
1: हाँ
2: जैसे।
1: रघुवीर यादव
0: जी
1: उनके दिमाग में थे, पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे वो, क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
0: जी। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे
1: नहीं
0: लेकिन
1: तब
0: इस फिल्म।
1: हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहाँ पे लोकेशन था,
2: मनोर में थी
1: मनोर में
2: लोकेशन,
1: थे।
2: वहीं होटल ले रखा था हमने
0: जी,
2: सब लोगों ने,
0: अच्छा।
2: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहे थे, वहीं बाजू में ही गांव था तो वहीं करते थे,
1: लेकिन
2: बच्चे भी साथ में थे।
1: बहुत सुंदर थी वो
0: जी
1: फिल्म।
0: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे,

0: और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे। क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी
1: तो
0: शूटिंग
1: उस
0: के लिए?
1: वक्त तो मतलब छोटे थे ही, ऑफ कोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल, और फिर मैं यहाँ से और क्या ही कर सकती हूँ फोन ही कर
0: कि
1: सकते
0: बच्चे जब मिलते थे
1: हाँ
0: रोते थे तो फिर
1: नहीं
0: दिल,
1: रोते भी नहीं थे वो, बड़े उस तरह के
0: अच्छा
1: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
0: उनको पता था कि
1: उनको
0: मम्मी
1: पता
0: पापा
1: था
0: को आगे बढ़ना है
1: पर
0: ऐसे साथ में।
1: एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला
0: जी, तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं, टेलीविजन
1: हाँ
0: से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।
2: लकड़ी

0: फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं। तो गंगाजल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
1: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूं मैं, तो मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो,
0: जी
1: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है करता हूँ, भी कर ली मैं, बात हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं, तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में, बोले हाँ यहीं पढ़ लो लो। तो मैंने वहाँ वह बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने,
0: जी
1: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी मैं करूँगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज़्यादा, और वो लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते उसमें मेरे सीन लिखे जाने लगे,
0: क्या
1: और
0: बात
1: हाँ
0: है।
1: और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या एक्चुअली में।
0: जी
1: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया।
0: जी बिल्कुल।
1: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पर।
0: जी अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है। हसन
1: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है? तो
1: जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है, ये भी एक तरीका है बच्चों का।
0: जी जी
1: मेरी वाइफ भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती।
0: अच्छा
1: ना बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे मैं,
1: और वाकई में वो पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना, जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानि हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी जी
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत प्यारी फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे, तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पे पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये कुछ भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा।
0: जी, जी जी क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम
2: डोली में बिठाई के का।
0: आप दोनों गा के सुनाएंगे।

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे ताकि आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। तो आइए अब चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन यानी 18 अगस्त को। दोस्तों, 18 अगस्त को हम मना रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में बैरिया बलिदान दिवस। दोस्तों, बलिया में 18 अगस्त 1942 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बैरिया बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। अगस्त क्रांति के दौरान इसी दिन बैरिया थाने पर क्रांतिकारियों और अंग्रेजी पुलिस के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। क्रांतिकारियों ने थाने पर कब्जा कर अंग्रेजों का जैक उतार कर तिरंगा फहराया था। संघर्ष में 19 क्रांतिकारी शहीद हुए जबकि 3 अन्य जेल में अंग्रेजों की यातनाएं सहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अगस्त क्रांति के दौरान बैरिया में क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद थे। 16 अगस्त को भूप नारायण सिंह और सुदर्शन सिंह के नेतृत्व में हजारों लोग बैरिया थाना पहुंचे। भीड़ के दबाव में तत्कालीन थानेदार काजिम ने स्वयं थाने पर तिरंगा फहराया और थाना खाली करके 2 दिन का समय मांगा था। दोस्तों, बताया जाता है कि उसी रात थानेदार ने जिला मुख्यालय से 5 सशस्त्र पुलिसकर्मियों को बुला लिया और थाने से तिरंगा उतरवा दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद क्रांतिकारियों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद 18 अगस्त को दोबारा

तो दोस्तों ये थी चर्चा उत्तर प्रदेश के बलिया में बैरिया बलिदान दिवस पर। सुनते रहिए आकाशवाणी उपला से प्रसारित आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: युववाणी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए, अंतरिक्ष में बढ़ते युवाओं के कदम, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं शुभम जायसवाल, प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
3: नमस्ते दोस्तों, हम ये जानते हैं कि अंतरिक्ष जैसा विषय एक समय पर सपना हुआ करता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती उपलब्धियों से हम ये कह सकते हैं कि वह सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। वहीं भारत की अंतरिक्ष इतिहास की बात करें तो हम ये देखते हैं कि महान वैज्ञानिक, ज्योतिषविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम सबसे अग्रणी है, जिन्होंने उस समय पर्याप्त संसाधन न होने के बावजूद भी अपनी बौद्धिक क्षमता और अंतर्ज्ञान से ज्योतिष शास्त्र की खोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि गोलपाद में जिस तरह नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तब वो समझता है कि अचर वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि उल्टी गति में जा रहे हैं, उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति में जाते हुए दिखाई देती हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस सिद्धांत को कॉपरनिकस ने सन 1473 से 1543 ईस्वी में खोज की थी, जिसे भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने हजारों वर्ष पूर्व खोज लिया था और बताया था, और इतने संसाधन के अभाव में यह उनकी महानता ही कही जाएगी। वहीं आज की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज लोगों के पास पर्याप्त संसाधन और सूचना के पर्याप्त साधन के माध्यम भी हैं, लेकिन आज की भावी युवा पीढ़ी को महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट से प्रेरणा लेने और इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत भी है। भारत को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाने और नया कीर्तिमान स्थापित करने में आज भारत की युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है, ताकि 21वीं शताब्दी में भारत अंतरिक्ष में कई उपलब्धियां हासिल करके भारत अंतरिक्ष क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो हम पाएंगे कि आधुनिक भारत में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना थी, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया। वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्रनायक के रूप में जाने गए। वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हाथों में है, और इसी के गठन से भारत अंतरिक्ष में बड़ी सफलता हासिल करने में आगे बढ़ा। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कही जाने लगी। इस संगठन ने भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। पहले इसरो के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार ने स्थापित किया था, तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। इसरो अंतरिक्ष विभाग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधित सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणाली की स्थापना की। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और JSLV विकसित किए। इसी प्रणाली में डॉक्टर विक्रम साराभाई की भूमिका के बाद जिस महान व्यक्ति का नाम आता है, वो न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जो साल 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। डॉक्टर कलाम जी को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपनी दृष्टिकोण स्पष्ट की। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे, और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की प्रगति और उन्नति पर लगा दिया। ऐसे महान सोच रखने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भावी युवा पीढ़ी और आगे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और इनके द्वारा की गई अनेकों काम, चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र या रक्षा क्षेत्र में हो, ये सब अनेक आने वाली पीढ़ी और वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शन और अनुकरणीय भी है। भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ने और बढ़ाने की सोच रखने वाले अनेक वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उनमें से भी जिन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम वैज्ञानिक क्षेत्र में अमर हो गया वे डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने युवा अवस्था में रहते हुए भारत की रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रखी, और सोच ही नहीं रखी बल्कि उसे धरातल पर कर दिखाया और अनेक युवा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए जिन्हें भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। वहीं अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की बात करें तो हम पाते हैं कि अनेक महिला वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही भारत देश का अंतरिक्ष क्षेत्र में नाम रोशन किया, और देखें तो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी बनी, जो अब यह कह सकती हैं कि महिला भी अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकती है। ऐसे ही भारत की महान भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी का नाम सबसे आगे आता है, जिन्हें अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ भी कहा जाता है। वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। वहीं दूसरी ओर देखें तो हम भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बात करते हैं, जिन्होंने 127 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और भारत देश का नाम भी रोशन किया। वे भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं और वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी। हम ये कह सकते हैं कि वे दोनों भारतीय अंतरिक्ष महिला न केवल भारत का ही नाम रोशन किया बल्कि भारतीय महिलाओं की अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का भी प्रदर्शन किया, और आगे आने वाले समय में भारत विश्व की अनेक महिलाओं को भी प्रेरणा देगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की सोच को भी पैदा करेगा। वहीं इसी प्रणाली में युवा अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो न केवल भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने बल्कि विश्व के 138वें व्यक्ति भी थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और सोवियत संघ के इंटर कॉस्मिक कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में शोधन खोज की सोच रखने वाले भारतीय और भारतीय मूल के निवासी जिन्होंने कड़ी मेहनत और अनेक संघर्षों के बाद प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्थान से जुड़े और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत देश का अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अहम कीर्तिमान स्थापित किया, जो आने वाले ऐसे अनेक भारतीय युवा पीढ़ी को प्रेरणा और अपने जिम्मेदारियों का मार्गदर्शन भी करेगा। साथ ही साथ भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में सोच रखने वाले युवा पीढ़ी को एक मजबूती भी प्रदान करेगी। वहीं अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धियों की बात करें, जिनमें चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लैंडिंग पिछले वर्ष ही हासिल कर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में ISRO ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO द्वारा विकसित तीसरी चंद्र मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है। यह मिशन चंद्रयान 2 की असफल लैंडिंग के बाद लॉन्च किया गया, जिससे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का प्रयास किया जा सके। मिशन के प्रमुख घटक देखें, जिसमें पहला विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, प्रणोदन मॉड्यूल है। विक्रम लैंडर यह एक उन्नत लैंडर मानी जाती है, जिसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें कई वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए है। इसमें सटीक लैंडिंग के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणाली है। वहीं दूसरी प्रमुख प्रज्ञान रोवर यह एक छोटा रोवर है जो लैंडर से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर चल सकता है। इसमें भी कई वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों का विश्लेषण कर सकते हैं। यह सौर ऊर्जा से संचालित होता है और चंद्रमा की सतह पर घूमकर डेटा एकत्रित करता है। वहीं तीसरी मुख्य प्रणोदन मॉड्यूल, यह मॉड्यूल लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर लगी है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का अध्ययन करने में सहायक है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रक्षेपण के बाद यान ने कई बदलाव किए और चंद्रमा की यात्रा शुरू की। सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए तैयार किया गया। वहीं 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। यह लैंडिंग चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में की गई, जो वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने लैंडर से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर अपना अभियान शुरू किया। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्र अन्वेषण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद की। इसी के साथ चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा पर सफल पूर्वक लैंडिंग की स्मृति में भारत ने 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी दिन चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष दिवस भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का उत्सव है और इसे भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। उसी वर्ष ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के साथ आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। आदित्य L1 पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले सूर्य पृथ्वी की लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थिर होगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। इन दोनों मिशनों ने सफलतापूर्वक लैंडिंग से भारत ने एक बार फिर से अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया, साथ ही अपने बढ़ते अंतरिक्ष क्षमता का भी प्रदर्शन किया जो आगे आने वाले अंतरिक्ष मिशन में मदद करेगी और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट और सुदृढ़ भी करेगी। इसी श्रृंखला में अगर चंद्रयान 1 और 2 की बात करें तो हम पाएंगे कि चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना था। इस मिशन की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्रमा की सतह पर जल के अंश खोजे जो एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जाती है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर मैपिंग की और विभिन्न उपकरणों की मदद से सतह की संरचना की जानकारी जुटाई। वहीं चंद्रयान 2 यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में 3 मुख्य भाग थे, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया और आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। हालांकि विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया, फिर भी चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह का अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा संकलित किए। वहीं अगर आगे भारत की अन्य अंतरिक्ष सफलताओं की बात करें तो हम देखेंगे कि मंगल मिशन जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मिशनों में से एक महत्वपूर्ण मिशन मानी जाती है जो विश्व भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इतने कम लागत में मिशन को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। यह मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। इस मिशन ने भारत को चौथा ऐसा देश बना दिया जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और यह एशिया का पहला देश है जिसने यह उपलब्धि प्राप्त की। भारत ने इसी तरह अनेक मिशनों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लैंडिंग कराकर कई कीर्तिमान स्थापित किया जो आने वाले वैज्ञानिक और युवा पीढ़ी को गर्व और प्रेरणा से भर देता है और कुछ करने के जज्बे को उजागर करता है। आज भावी पीढ़ी के युवा जिनके अंदर रचनात्मक सोच, इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन्हें इससे प्रेरणा लेना और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना और अपने देश का नाम रोशन करने की सोच को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत वर्तमान में सबसे बड़े किशोर 10 से 19 वर्ष और युवा 15 से 24 वर्ष की जनसंख्या के साथ आगे बढ़ रहा है और यह वर्ष 2030 तक ऐसा ही रहेगा। इससे देश को अमृतकाल स्वतंत्रता के 100 वर्ष तक अगले 25 वर्षों के दौरान इन जनसंख्यायिकी लाभ का लाभ उठाने का एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त होता है। इस युवा जनसंख्या को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति से भी लाभ हो रहा है। अब भारत के अधिक से अधिक बच्चे अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देख सकते हैं जो एक दशक पहले हमारे युवाओं के लिए दूर की बात थी। नवाचार नए भारत के सपने को साकार करने की कुंजी है। ये युवा पीढ़ी को तकनीकी चमत्कार विकसित करने और तर्कसंगत एवं विश्लेषक गुण की सोच को प्रोत्साहित करता है। इसे सक्षम बनाने के लिए सरकार ने कई योजना और कार्यक्रम लागू किए हैं जो रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने के उद्देश्य है ताकि आधुनिक भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। इनमें से मुख्य योजनाएं और कार्यक्रम जैसे मानक, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST के अंतर्गत मानक कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान से संबंधित 1 मिलियन इनोवेटिव आइडियाज उत्पन्न करना है जिससे छात्रों में कक्षा 6 से 10 तक के बीच में रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। वहीं दूसरी मुख्य योजना की बात करें युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इसरो, जिसे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी की मूलभूत समझ प्रदान करना है। यह योजना का पाठ्यक्रम 4 इसरो केंद्रों पर 2 सप्ताह की आवासीय प्रशिक्षण के साथ साथ आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा भी शामिल है। इसी बढ़ते क्रम में अगला मुख्य योजना पर प्रकाश डालें जिसमें अटल टिंकरिंग लैब शामिल है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और इसरो के अंतर्गत आता है। अटल टिंकरिंग लैब भारत के विभिन्न स्कूलों में स्थापित की जा रही है जिसका उद्देश्य 1 मिलियन बच्चों को नवाचारी आविष्कारक के रूप में तैयार करना है। विचार है युवाओं में जिज्ञासा, रचनात्मक और कल्पना को प्रोत्साहित करना। अटल टिंकरिंग लैब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की व्यवहारिक शिक्षा और अनुप्रयोग प्रदान करती है और उद्यमशीलता और कंप्यूटेशनल सोच को एक अवसर भी देता है। अगली मुख्य योजना की बात करें जिसमें BARC आता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। BARC परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी और छात्रों के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करता है। उनके प्रशिक्षण स्कूल विज्ञान, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए एक वर्ष की पाठ्यक्रम आयोजित

0: आयोजित करते हैं। यूथ ऑन द मूव, हाल ही के वर्ष में विभिन्न परिषदों और विभागों के कई योजनाएं युवाओं को उनके वैज्ञानिक मिजाज को परखने का साधन प्रदान कर रही है, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है, कौशल को उन्नत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार के बारे में सिखा रही है। युवा भारत आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनने की आकांक्षा रखता है और ऐसी पहलकदमियां और योजनाओं एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ने की मार्ग है और भारत का युवा इस यात्रा में तकनीकी रूप से समझदार और वैज्ञानिक रूप से उन्नत भारत बनाने की दिशा में मशाल लेकर चलने का अवसर प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे अंतरिक्ष में बढ़ते युवाओं के कदम, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे शुभम जायसवाल, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

दोस्तों आइए अब चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और जानते हैं क्या है खास आज के दिन चर्चा में। आइए सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के उपयोग को कैसे युवा किसान बढ़ाएं इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आज के समय में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता, बढ़ती लागत और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए युवा किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। खेती में सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर किसान अपनी लागत कम करने के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण में भी योगदान दे सकते हैं। सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा है। युवा किसान खेतों में सोलर पंप, सोलर ड्रॉपर, सोलर लाइट और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं। इससे बिजली और डीजल पर निर्भरता कम हो सकती है और सिंचाई की लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। वहीं बायोमास ऊर्जा की कृषि अवशेषों और जैविक पदार्थों से प्राप्त की जा सकती है। फसल के अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरे से बायोगैस, जैव ईंधन और जैविक खाद तैयार की जा सकती है। इससे खेतों में फसल अवशेष जलाने की समस्या कम होगी और प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। युवा किसान नई तकनीकों को अपनाने, कृषि अपशिष्ट का सही उपयोग करने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी चर्चा कि कैसे सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के उपयोग को युवा किसान बढ़ा सकते हैं।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अंक। अब दीजिए अपने रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की अनुमति। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। बहन लोगन देखा, हम बताशा आज अपने बैठकी कार्यक्रम में शामिल हैं, जोने कार्यक्रम का नाम है घरनी। और देखे सावन का महीना और चारों तरफ हरियाली, देखते देखा अपन मन भी हरियर हो जाता। ऊपर से रिमझिम फुहार तन के साथ साथ मन के भी सराबोर कर देता और खुशी से मन झूम उठाता। बहनों देखा, हर चीज़ का हर बात का दो पहलू होला, अच्छा खराब गलत सही। हम बात करनी है देखा एक पहलू, मने चारों तरफ हरियाली खुशी का माहौल और आनंद ही आनंद। एकर अगर दूसर पहलू देखल जाओ तो देखा, बरखा का पानी से चारों तरफ नमी बनल रहला। अगर हम लगातार पानी में रह के कोनो काम काज करत हैं, जैसे खेत कियारी में साग सब्जी के तोड़ाई बा, निराई गुड़ाई बा, या फिर पानी में भीजल रह बराबर लगातार घरे में काम करत हैं, कपड़ा लत्ता नाही सूखल बा बढ़िया से और ओके फिर से देहे पे डाल लेली और ओके काफी समय तक पहले रहली, तो देखा ऐसे दिक्कत हो सकेला। जल ही जीवन है, बाकी एकर गलत प्रयोग गलत तरीका से एकर अपनावल गईल कोनो भी प्रयोग, देखा हम लोगन के तमाम तरह का बीमारी या फिर संक्रमण भी लागे में देर नाही लागी। देखा जल जनित बीमारी जौन की पानी का दूषित भइला के बाद, मैंने पानी के दूषित होकला के बाद गंदा पानी में रहला पर और ओके अगर पियला पर, अगर हम लोगों के पियत हैं जा, तो कई तरह का जल से जुड़ल बीमारी हो सकेला। जैसे देखा टाइफाइड बा, हैजा हा, डायरिया हा, हेपेटाइटिस है, जैसा ये सब संक्रमण से देखा फैले वाली बीमारी सब है। और ये कुल बीमारी देखा पानी में मौजूद जौन है ना कि हानिकारक बैक्टीरिया कहला चाहे वायरस कहला, परजीवी के कारण फैलेला। पेचिस जैसन बीमारी होखला पर देखा शरीर, अगर पेचिस भगवान न करे केहू के कोनो बीमारी लागे, लेकिन बहिनी शरीर है और लापरवाही कोनो भी वजह से हो सकेला। तो देखा ये पेचिस होखले से शरीर में जो अतिरिक्त पानी होला वो शरीर से निकलला पर शरीर कमजोर हो जाला। ऐसे बरसात का पानी के हम लोगन के बचत कर ही के बा, साथे साथ जब हम लोगन के पिए के या फिर खाना पानी बनावे खातिन के प्रयोग करे चाहते हैं, तो सबसे पहले देखा खास तौर से जब हम लोगन सीधे पानी के पिए थे तो एके पहले उबाल लेवल जाए, और जब उबल्ला के बाद पानी ठंडा हो जाए तो एके साफ गगरी में भर देवल जाए, या फिर फिल्टर करके ही पानी के पियल जाए। खाना बनावे वाला जोन पानी होला ओके भी साफ सुथरा ही रखें।

कि देखा जौन भी मिट्टी रहला, बरसात में देखा नदी नाला में पानी बरसला से काफी गंदा हो जाला, तो ई एक क्रिया अपनौला से ना पानी फिर से साफ सुथरा हो जाला, फ्रेश होला। दूसर चीज की अगर फिटकरी घरे में देखा हम लोगन रखले हैं जा, तो एगो डोरा में बांध करके ओके पानी में बढ़िया से घुमा देला पर ना कुछ देर बाद पानी एकदम फ्रेश हो जाला, तब भी देखा पानी के प्रयोग कैल जा सकेला। और जौन भी बीमारी बा इससे जुड़ल उससे हम लोगन बच सकेला। और छोट छोट बात बा बही लोगन अगर ओकर ध्यान रखल जाए तो हम लोगन ने बरसात के आनंद भी ले सकीला। जैसे कि खाना खाए से पहले या फिर शौच के बाद हम लोगन पानी से साबुन से हाथ जरूर धोवल जाए, एकर खास ध्यान रखल जाए। और देखे सावन का महीना बा और पानी बरसत बा रिमझिम रिमझिम, तो देखे सावन के महीना में कजरी का आनंद तो अपन आप में बड़ा ही अलग अनुभूति करावला। तो देखा आज अपने बैठकी में जब जुटल हैं हम लोगन तो बातचीत तो होते रही, तो काहे नहीं मोनिका भट्टाचार्य के गावल एक ठुक कजरी पहले अपने बैठकी में हो जा, फिर ओकरे बाद हम लोगन आगे जानकारी सुनावल जी बातचीत करल जाए।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: तो बहन लोगन देखा संदेश सुन लीजा, उससे पहले मोनिका भट्टाचार्य जी के अपन देखा कजरी सुन लीजा, और देखा बहन लोगन मन फेर तो मन फरहर करेला। बाकी जीवन में सफलता पावे खातिर शरीर का स्वस्थ रहल भी बहुत जरूरी बा, चाहे बूढ़ पुरनिया लोगन होके या फिर जन्मतुआ बचवा बचपन के खातिर। देखा बचपन के खातिर तो देखा शुरू से ही टीकाकरण जो उनकी सुरक्षा कवच मानल जाला, महतारी के दूध के साथ साथ टीकाकरण भी बहुत जरूरी बा, जो उनकी बचपन के कई जानलेवा बीमारी से रक्षा करेला। जैसे बचपन का टीका है, जन्म के समय BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी है जो उनकी ऐसे बचावेला, और छठवां हफ्ता में 10वां हफ्ता में और 14वां हफ्ता में पेंटावेलेंट रोटावायरस IPV और PCV का टीका लगाला। और जब बचवा या फिर बचिया 9 महीना के हो जाए तो देखा खसरा हा, रूबेला हा, विटामिन ए का पहली खुराक पियावल जाला। और ओकरे साथ साथ देखा जब 14 या फिर जब 24 महीना के बचवा या फिर बच्चा हो जाए तो देखा MMR और TPT का मतलब जो बूस्टर डोज होला, बूस्टर खुराक होला, ओके बचवन लोगन के देवल जाला। बाकी देखा एक बात इहो कहल जा चाह बहन लोगन आपसे कि देखा सरकार द्वारा जौन भी सब टीका बनावल गया है वो देखा असरदार और पूरी तरह से सुरक्षित होला। बाकी पूरी जानकारी खातिर के देखा ANM है, डॉक्टर बहन जी लोगन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, आशा बहन लोगन है, इनसे जरूर जानकारी लेत रहे के चाहिए। और जब बचपन के देखा किलकारी आंगन में गुजे लाना तो अपन जीवन ऐसे ही सफल मानल जाला, और ओकरे बाद तब लागेला कि कुछ और हम लोगन के जीवन में करे के चाहिए, जैसे कि सफलता का शिखर पर हम लोगन पहुंच सकें और अपन परिवार अपन गांव समाज के नाम रोशन कर सकें। देखिए आज जानकारी हम लोगन शामिल कैले हैजा सफलता का कहानी से बदलल जिंदगानी, ए पर देखा संजू कुशवाहा जो उनकी समूह अध्यक्ष है उनसे सुश्री द्विवेदी जी के बातचीत हो रहल बा, और का बातचीत बा, उनके सफलता का कहानी उनके जुबानी ही सुनल जाए और ये जानकारी के सुन के गुनल जाए।

0: साथियों, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम को साकार करती हमारे जनपद सोनभद्र की स्वयं सहायता समूह की श्रीमती संजू कुशवाहा जी ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि विभिन्न उत्पादों को लेकर पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी हैं। आइए आज जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद संजू जी की जुबानी। संजू जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: संजू जी, आज आपका नाम हमारे जनपद से उठ के राज्य से लेकर पूरे देश में जाना जा रहा है जी। कभी आप साबुन बनाती हैं, कभी आप राखी बनाती हैं, कभी आप झंडा बना रही थीं, कभी आप होली के गुलाल बनाती हैं। ये तो आज आपकी सफलता हुई, और आपके सफलता तक पहुंचने में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। तो संजू जी, ये बताइए कि समूह में जुड़ने का फैसला आपने कब और क्यों लिया, और जब आप इसमें जुड़ी तो शुरुआती दिनों में घर और परिवार समाज का व्यवहार आपके प्रति कैसा था?
1: जी दीदी, कोरोना काल के बाद हमने समूह में जुड़ने का फैसला लिया, क्योंकि कोरोना काल में जो दिक्कतें हो रही थी, मुझे लगा कि एक लोग के काम करने से घर नहीं चलने वाला है, तो फिर मैं समूह में जुड़ी। मुझे पता चला कि समूह में जुड़ने से कई नए नए रोजगार मिलते हैं, तो मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए, और मैं जुड़ी। और उसमें मुझे बचत करने का भी मौका मिला, समूह में कैसे बैठा जाता है, दीदियों से कैसे बात किया जाता है, इसकी भी जानकारी मुझे मिली। और बचत करने का जो एक होता है कि महिलाओं के अंदर बचत करने की हुनर होनी चाहिए, तो वो चीज़ मुझे समूह में मिला।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है, महिलाओं को प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में ये है कि वो छोटे छोटे पैसों की या किसी भी चीज़ की बचत करके आपातकालीन स्थिति के लिए एक अच्छी रकम तैयार कर लेती हैं। पर शुरू के दिनों में बचत और बैठक की प्रक्रिया से जुड़ना जी, कितना कठिन और कितना आसान था? मतलब कुछ तो चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा।
1: जी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि समय से बैठक में जाना, घर से भी थोड़ी सी पाबंदियां होती थी कि कहाँ कहाँ हर हफ्ते चली जाती है, पता नहीं पैसा डूब जाएगा कि क्या होगा, ये सारी चुनौतियां आती थी। कि बैठक में महिलाएं भी कहती थी कि अरे समय से आती नहीं है, अगर लेट हो गया तो समय से आती नहीं है। समाज भी कहता था कि अब घर से निकल करके ये लोग पता नहीं क्या बैठती हैं, तो ये सारी दिक्कतें हुई हम लोगों को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तब आप गुमनाम थी।
1: गुमनाम थे, मुझे लोग जानते नहीं थे।
0: नहीं थे, पर अब जब आपको लोग जान चुके हैं तो ऐसे प्रश्न तो नहीं उठते होंगे। फिर भी समूह से जुड़कर किसी काम या रोजगार की शुरुआत जब आपने की, तो इसके लिए आपको सरकार और प्रशासन से प्रशिक्षण या वित्तीय मदद जैसी कोई सुविधा मिली?
1: जी दीदी, सरकार से जो वित्तीय मदद है कि हम लोगों के समूह में सरकार के द्वारा फंड आता है, उसे हम लोन के तौर पर उस पैसे को लेते हैं और अपना रोजगार स्टार्ट करते हैं। रोजगार अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मुझे निःशुल्क प्रशिक्षण, हम महिलाओं को, समूह की महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण मिलता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तरफ से। वो प्रशिक्षण हमने लिया और सरकार के तरफ से पैसा भी मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण लेने के बाद जब रोजगार हमें स्टार्ट करना रहता है तो पैसे ही नहीं रहते, तो वो भी मुझे सरकार के तरफ से मिला, प्रशासन की तरफ से पैसा मिला, तो हमने अपना रोजगार स्टार्ट किया।
0: तो वो पैसा फिर आपको वापस करना रहता होगा, उस पे कुछ ब्याज दर है?
1: हाँ, उस पे ब्याज, 1% ब्याज की दर से हमने वो पैसा किस्तवाइज, एक ही बार नहीं जमा करना रहता है, तो जितना मेरे पास रहता है तो किस्तवाइज हम लोग उसको जमा करते हैं।
0: जी जी जी, ये तो फिर अच्छी बात है, इससे मनोबल बढ़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि शुरू के दिनों में तमाम प्रश्न थे परिवार से या समाज से, आज आपकी सफलता को देख के परिवार में आपकी भूमिका और आपके निर्णय लेने में जो आपकी भागीदारी है वो कितनी तवज्जो भरी है?
1: हाँ दी, पहले तो क्या था कि हम कुछ बातें कहते थे तो मेरी बातों को सुना नहीं जाता था, यही हम मेरी बातों को दबा दिया जाता था कि आप शांत रहो, हम लोग बात कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि मेरे पास उस समय कुछ था नहीं, पैसे नहीं थे। सबसे बड़ी बात होती है, महिलाओं के पास अगर पैसा है और हुनर है, पहचान है, तो उसकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है और उसकी बातों को रखा जाता है। मेरे साथ भी यही होता था पहले, अब क्या है कि घर परिवार के साथ साथ मेरे रिश्तेदार जो हैं और जो लोग समाज में भी हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज में भी हम लोगों से पूछी जाती है, हाँ, कि क्या ये सही है, करना चाहिए, तो अच्छा लगता है कि हम भी हैं, अब बन गए हैं उस लायक।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मुझसे भी पूछा जा रहा है और परिवार में भी मुझसे सहमति ली जाती है, पूछी जाती है कि ये सही है, हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो हम बोलते हैं कि नहीं ये सही है और यहाँ ये चीज फंसने वाली चीज नहीं है, इसको करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सब निर्णय लेने का भी हमें मौका मिलता है और हम अपनी बातों को रखते हैं अपने बीच में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हुनर एक ऐसी चीज़ है जो न केवल हमारा विश्वास बढ़ाता है बल्कि लोगों के बीच में हमारी अहमियत भी बढ़ जाती है। आज आपका व्यवसाय किस स्तर पर पहुंच चुका है, इससे आपकी आय और आत्मनिर्भरता में कितना सुधार हुआ है?
1: आज मेरा व्यवसाय जो है इंटरनेशनल लेवल का हो गया है, मतलब विदेशों तक मेरा सामान जाता है और इससे

0: हमारे आय में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, या इतना कि मुझे लगता नहीं था कि मैं पहले अपने बच्चियों को पढ़ा पाऊंगी। अब मेरी बेटी जो है बाहर में रह करके पढ़ाई कर रही है, और मुझे ये लग रहा है कि अब मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। पहले नहीं मुझे पता था कि मेरी बच्ची पढ़ पाएगी, क्योंकि कहीं से इनकम नहीं था। आज मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और आगे बढ़ा रही हूँ उनको।
1: अच्छा, कुछ एक दो उत्पाद बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका लोकप्रिय है।
0: पहले मेरा बकरी के दूध का साबुन, जो नहाने का साबुन था, वो इंटरनेशनल लेवल पे गया, विदेशों में गया। अभी मैं जो श्री अन्न को प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि मोटे अनाज को आगे लाना है, तो उन मोटे अनाजों से मैं बिस्किट बनाने का काम कर रही हूँ, और उन मोटे अनाजों का मैं लड्डू बनाने का काम कर रही हूँ। जैसे रागी का लड्डू हो गया, कोदो का बिस्किट हो गया, सांवा का बिस्किट हो गया, जौ का बिस्किट हो गया, ये सब बिस्किट मैं बनाने का काम कर रही हूँ। और ये मेरा बिस्किट अभी दिल्ली तक गया है,
1: जी
0: ये
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: बिस्किट दिल्ली तक, अभी वहाँ से भी ऑर्डर आता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बिस्किट भी मेरा विदेशों तक जाएगा।
1: जी जी हमारी शुभकामना है। आपका बिस्किट हमारे बस दिल्ली तक पहुंच गया,
0: हाँ
1: तो बस उसे तुरंत देश से बाहर जाना ही जाना है।
0: जी
1: अब आज एक बहुत बड़ी बात है, चूंकि हमारे साथ आप आकाशवाणी में बैठी हैं और हमारे तमाम श्रोता बहनें हैं, इनको सुनती हैं और उन्हें प्रेरणा भी मिलती है। तो आप ऐसी महिलाएं जो आज भी घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर कुछ कर नहीं पा रही हैं, वो अपनी पहचान बनाने की उत्सुक हैं, पर कैसे, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करें, तो ऐसी बहनों के लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: मैं अपनी सभी बहनों से कहूंगी, जो परिवार में हैं वो कुछ करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, तो वो पहले स्वयं सहायता समूह, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम है वो चल रहा है, उससे जुड़े, समूह से जुड़ करके अनेकों प्रकार की प्रशिक्षण उन्हें मिलती है, प्रशिक्षण लें और आगे बढ़े, अपनी पहचान बनाए, अपने हुनर को आगे बढ़ाएं। क्योंकि महिलाओं को बहुत कुछ चीजें आती हैं, लेकिन वो बिजनेस के तौर पे नहीं कुछ कर पाती हैं, तो उन्हें क्या है कि थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है, और जो है अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकती है, अपनी पहचान बना सकती हैं। तो आज जो भी महिलाएं अभी समूह से नहीं जुड़ी हैं वो जुड़े और आगे बढ़ें।
1: बिल्कुल सही बात है, और आपने अपना अनुभव साझा किया, अपनी सफलता बताई,
0: जी
1: यह तो
0: जी
1: बहनों को प्रेरित करेगा। साथ ही साथ आपने जो इतने अहम सुझाव दिए कि किसी मंच तक जाने के लिए उन्हें कहाँ से कदम बढ़ाना है, तो आपकी यह राय हमारी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतनी महत्वपूर्ण बातों के साथ आप हमारे आकाशवाणी आई, अपना समय दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया जानकारी देखा, ये जानकारी के बाद सीखे के मिलल। तो संजू कुशवाहा जी से तो भाई, और भी बहन लोगन, जितना भी बहन लोगन है, कुछ न कुछ उनके अंदर हुनर जरूर रहला, तो कि निखारे की जरूरत बा। कहीं ना कहीं देखा, जब घर के चौखट से जब बाहर निकली है और बुद्धिजीवी लोगन से मिली है, तो निश्चित तौर पे आगे बढ़े के एगो मौका मिली, एगो अवसर मिली। तो इतना बढ़िया जानकारी मिलल, तो इनके धन्यवाद स्वरूप एगो और मोनिका भट्टाचार्य जी के गावल मन फिर हो जाओ। तो भाई सुनल जाए।

तो बहन लोगन देखा मोनिका भट्टाचार्य जी के गावल मन फेर तो झूम झूम के हम लोगन सुन भी कर ली गया और झूम तो है जा, लेकिन देखा मन फेर के अलावा भी ना हम लोगन के जीवन में बहुत सारा ऐसा चीज़ करे के चाहिए, पढ़े लिखे के चाहिए, लोगन के साथ बैठे उठे के चाहिए। तो देखें जोन बात बा कि हम लोगन जब बुद्धिजीवी लोगन पढ़ल लिखल लोगन के बीच में बैठी ला तो कुछ ना कुछ सीखे के ही मिलेला। अब जैसे आज बैठकी में हम लोगन जुटल ही ना तो देखा एक लोगन से जानकारी मिलल कि देखा काल है 19 तारीख और काल देखा जोन गोस्वामी तुलसीदास जी रहना ना उनकर जयंती माने जन्मदिन के रूप में मनावल जाता है। इनका जन्म जो ना कि 1532 ईस्वी में बांदा जिला के राजापुर गाँव में भैल रहल। गोस्वामी तुलसीदास जी के देखा हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महान कवि और संत मानल जाला। इनकर पिताजी के नाम देखा आत्माराम दुबे और माता इनकर हुलसी देवी रहली। और देखें जो इनकर पत्नी के नाम रहल इनकर रत्नावली देखा नाम रहल और विदुषी कन्या से इनकर ब्याह भरल। इनकर देखा लिखल जो हनुमान चालीसा चाहे कहला चाहे विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, प्रमुख रचना में से एगो मानल जाला। तो बहन लोगन देखा इनका जो हनुमान चालीसा है देखा मंगर के शनिचर के विशेष रूप से तुलसीदास जी का लिखल ई हनुमान चालीसा के नहीं याद बा। बहनों देखा बात तो बहुत बा पर समय कहता कि अब आज के बैठकी यहीं तक, लेकिन इहो कहब कि बरसात में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखल जाए। रसोई में मौजूद जौन भी मसाला बा जैसे हल्दी अदरक काली मिर्च

लौंग बा, ये सब देखा ना, एंटीबायोटिक होला और पाचक से भरपूर होला, ते मसाला का उपयोग हमेशा करत रहे के चाहिए। और ये मानसून में हम लोगन अपन ध्यान रखल जाए, अपनन के ध्यान रखल जाए, तो चले के तो सब भाई लोगन के राम राम।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर ने 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी।
1: इस मौके पर उन्नाव, हमीरपुर और जालौन के साथ ही प्रदेश के कई गो जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात कैले और उनका समस्या सुन ले। मुख्यमंत्री अधिकारियों के लोगों की समस्या का जुड़ते गुणवत्ता के साथ असंतुष्टि परक निपटारा का निर्देश दिले। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात खातिर नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त कैले हवे। विनोद तावड़े के उत्तर प्रदेश का प्रभारी आज जगदीश ईश्वर भाई पटेल के सह प्रभारी बनावल गयल हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी दलन पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक के लेके वोट बैंक राजनीति बदे गलत सूचना फैलवले का आरोप लगौले। एगो निजी समाचार एजेंसी के दिहल गल इंटरव्यू में उहां के कहने की विपक्ष बहुते झूठ फैलवले हो आ एह तरह का झूठ बात फैला के राजनीति कैल एकदम में गलत बा।
2: पूरा झूठ फैला है देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।

0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर वायरल ओह वीडियो का खंडन कैले हवे जेमे दावा कैल गेल रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सज्जो नागरिकन खातिर 3 महीना का मुफ्त रिचार्ज घोषित कैले हवे। पत्र सूचना कार्यालय का तथ्य जांच इकाई बतावलस कि ई दावा फर्जी हवे और वायरल वीडियो एआई से बनावल गईल बा। प्रधानमंत्री ऐसन कौनो योजना का समर्थन नहीं कैले हवे। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का घोषणा कर दी हवे। महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पलेला गायत्री गोपीचंद के लेके कई गो खेलिन के 15 औरियो खिलाड़ियन के बढ़िया प्रदर्शन खातिर अर्जुन पुरस्कार दिया जाये। प्रदेश का छोटीलाल यादव के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कैल जाये। श्री यादव भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का कोच रह चुकल हवे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कहलस की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेल में बढ़िया प्रदर्शन के सम्मानित करे खातिर दिहल जाला। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर काल देर रात वैन और ट्रक के टक्कर में प्रदेश के 8 जने का मौत हो गयी। 23 जने और यू घाही हो गये। पुलिस मामला दर्ज कई के कारण का जांच शुरू कर दिले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह दुर्घटना पर गहरा शोक जतावले हवे। वहां के यह दुर्घटना में मृतकन के परिजन के 2-2 लाख रूपया का आर्थिक सहायता दिले का निर्देश दिले हवे। प्रदेश के कई जिलन में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी इलाकन के ढेर जिलन में आवे वाला 3 दिन ले गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरखा भइले का संभावना जतावले हो। ओहर लगातारे हो रहा बरखा आ बैराजन से पानी छोड़ने के नाते कई जिलों में बाढ़ का हालत बा। बनारस में गंगा का जलस्तर घाटन के ऊपरी हिस्सा के ओर बढ़ रहा हो, जेके देखत प्रशासन आ सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।
1: एक सौ 2.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। उससे पहले खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवानी केन पुत्री स्वर्गीय हरि किशन केन निवासी 8/395 लोनी गेट छोटा बाजार शाहदरा दिल्ली, जो मुर्धवा खाड़पाथर सोनभद्र से दिनांक 26 मई 2026 से लापता हैं। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 28 वर्ष, लंबाई 147 सेंटीमीटर, गेहुआ रंग, गोल चेहरा, मजबूत जिस्म, दोहरी बदन, पहनावा गुलाबी रंग का सूट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रमा देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण निवासी पूर्व परासी वार्ड नंबर 7 नेहरू नगर थाना अनपरा जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 3 जून 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 34 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, पहनावा सफ़ेद सलवार सूट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 10 बजे हमारे लखनऊ केंद्र से आज आप सुनेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।

अब से कुछ देर में यानी शाम 6:10 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत, और शाम 6:50 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाड़ी, शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 8:00 और 8:30 पर। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का समय होगा रात्रि 9:15 पर, और रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम आपके लिए। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम,
1: आपों के राम राम भला भैया, पंचायत
0: राम राम रहो भाई।
1: डुगडुगी बजल भैया और मौसम के मिजाज भी भैया देखा एकदम झमाझम बरसात होखत हुए
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल,
1: अपने
0: बिल्कुल।
1: अंचल में भी लगातार जोन बाकी बारिश होखत हुए और इसने में जहां भी धान के रोपाई भैया बाकी रहले और सब लोगन जोर शोर से लगल हुए और रोपाई के काम चलत हुए।
0: बिल्कुल, और वही क्रम में बचवा लोगन के पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: और जोन बाकी में अभी स्वतंत्रता दिवस मना करके लोग खाली होइल है,
1: बिल्कुल
0: तब से जोन बाकी लगातार बारिश के वजह से कितना लोग तो प्रभावित हो जात हुआ,
1: एकदम
0: इतने
1: भैया
0: बच बचा के रहे के भी जरूरत हो, जिससे मान लो नदी नाला हो और आर पार जोन बाकी स्कूल हो, तो ऐसे में बच बचा के चले के जरूरत हो, कहीं बाढ़ देख ले के हो कि ऊपर अगल बगल, जितना रोड पर गाड़ी से सावधान रहे के हो उससे कहीं बढ़ करके ऐसे सावधान रहे के हो,
1: एकदम भैया
0: चूंकि रोड पर तो कुछ न कुछ संकेतक भी मिलला भैया,
1: हाँ।
0: लेकिन नदी में जन बाकी अचानक बाढ़ भी आ सकला, तो ऐसे बचवा लोगन के साथ साथ आम नागरिक के भी जन बाकी सावधान रहने की जरूरत है,
1: एकदम
0: और
1: भैया
0: जवान नदी के आसपास पड़ोस में घर द्वार हो बल्कि उससे बच के रहे के हो, थोड़ा ऊंचाई पर रहें लोग, ये
1: एकदम
0: भी ध्यान देवे की जरूरत है, और अकस्मात ये समय जो बाकी बिजली जो तरकत है गरजत हो भैया, अभी तो कई लोगन के मचान के नीचे जोन बाकी पशु भी बिजली से के में आकर के जोन बाकी चोटिल होकर के मृत्यु भी हो गई,
1: अच्छा,
0: तो ऐसे में पेड़ पालो के नीचे जोन बाकी लोग छुपे के प्रयास कर ला कि थोड़ा ये जगह कम छीटा पड़ी पानी के,
1: हाँ भैया
0: लेकिन उससे भैया बच के रह गया।
1: एकदम एकदम सही कहत हुआ भोला भैया, और ओकरे साथ साथ भैया देखा एक चीज से और बचे के हुए कि जोन भी भैया देखा संचारी रोग हुए ऐसे में भैया देखा एकदम जोन बाकी पाँव पसारे ला और
0: बिल्कुल
1: कई तरह
0: बिल्कुल
1: की
0: बिल्कुल
1: बीमारी हम लोगों के देखे के मिला ला, तो ओकरा से भी भैया देखा सावधानी बरतले के जरूरत हुए और केहू के भी भैया देखा बड़ बीमारी के लक्षण दिखाई देवे तो अपन भैया देखा तुरंत इलाज करैले के जरूरत हुए, और ओकरे साथ साथ भैया देखा हम लोगन के घर परिवार में लैकन बचवन भी रहलन और लैकन बचपन के भैया देखा स्वभाव हला कि भैया देखा देख करके सीखेलन,
0: बिल्कुल
1: भैया
0: बिल्कुल
1: देखा जोन बाकी परिवार भैया देखा लैकन बचपन के प्रथम पाठशाला हुए और
0: हाँ
1: लैकन बचपन के पहला ज्ञान भैया देखा घर परिवार से ही मिला ला, तो हम लोगन के भैया देखा ऐसन भैया देखा अपने घर में माहौल बना के रखे चाहिए, ऐसन भैया देखा जोन बाकी काम करे के चाहिए देखा से लैकन बचपन अच्छा सीखे और आगे बढ़े भैया।
0: बिल्कुल, और साथ साथ जन बाकी अगर घर के माहौल ठीक रहे तो निश्चित रूप से समाज के भी माहौल सही रहे,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि घर घर करके जब समाज बनाला तो अगर घर परिवेश अच्छा हो तो जन बाकी समाज के भी अच्छा माहौल रहे, तो समाज से भी बहुत सीखे के मिलला बचवा लोगन के।
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: जैसे बात बत कही कि बात आवला कि जन बाकी अगर

0: पास पड़ोस में कोई गाली गलौज के मुख से बोल रहा हो भैया, तो उसने जो बाकी बचवा लोग पड़ोसी के भी सीखे हैं।
1: एकदम
0: और
1: भैया,
0: कहीं पढ़ाई लिखाई के अगर माहौल हो, अच्छा आदर पूर्वक बात उच्चारण हो रहा हो,
1: हाँ
0: तो वो आदर पूर्वक बात विचार करे के ओके सहूलियत सीख पाई बचवा लोग। तो
1: एकदम
0: ऐसे जो बाकी जितना जिम्मेदारी स्कूल में शिक्षक लोगों के होला, कहीं उससे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोग के जो बाकी घर परिवार और समाज के हो भैया।
1: एकदम भैया,
0: क्योंकि समाज में और घर परिवार में ज्यादा समय तक बचवा लोग रहत बा। खेले के अगर जाए के हो बाहर तो समाज के लड़का लोग मिले हैं, घर में जो बाकी खान पान रहन सहन एक
1: हाँ
0: जगह घर परिवार के लोग रहत बा, तो कुछ न कुछ खटपट होला।
1: एकदम
0: तो
1: एकदम
0: खटपट होके में कहीं ऐसा जोन बाकी दोषपूर्ण उच्चारण हो जाने से कि जोन बाकी बच्चे के मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़े भैया।
1: एकदम बिल्कुल सही कहा था भैया। और इसने भेंट वार्ता हम लोगों के आज के जोन बाकी कार्यक्रम में शामिल हुए, अनुकूल परिवेश बच्चों के विकास में सहायक पुष्पराज सिंह अध्यापक हुवन, और जिनसे भैया आपके जोन बाकी बातचीत भेल हुए, और हम तक कहब कि जानकारी के क्रम में सुनल जाए भैया।
0: श्रोताओं, कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाधर्मः तथा सुखम। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म के बाद तब फिर सुख की अनुभूति कल्पना की जा सकती है। विद्या मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आज बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार से अभिभावक और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और उनके माहौल को अच्छा करके उनके शिक्षा के विकास में आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मनबसा मध्य के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री पुष्पराज सिंह जी से बातचीत करने के लिए मुलाकात हो रही है। तो पुष्पराज जी, आपको आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये शिक्षा देखिए, सारे लोग का निगाह है, चाहे सरकार हो, चाहे माता पिता हो, चाहे शिक्षक हो या समाज हो, सारे लोग चाहते हैं कि बच्चे का विकास हो। तो बहुत सारे कुछ बाधक तत्व तो होते हैं जिससे कि बच्चा एक तो जो है कि प्रतिदिन पढ़ने नहीं जा पाता है, या माता पिता के या घर के परिस्थिति इस प्रकार से हो कि कुछ काम करने के लिए रोक लेते हैं, या फिर और कुछ कारण हो सकता है। तो शुरुआत हम लोग करें कि शिक्षा कितना ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन में, कितना त्याग पूर्वक उसको लेने की ज़रूरत है, इस पे कुछ चर्चा हो सर।
2: शिक्षा जो है सभी के लिए बहुत उपयोगी है, और खासकर जो है बच्चे के संबंध में। तो शिक्षा से ही बच्चे अपने अधिकार और
0: जी
2: कर्तव्यों को जान पाएगा।
0: जी जी जी
2: अगर वो शिक्षित है तभी वो सारी चीज़ों को समझ पाएगा कि
0: जी
2: हाँ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही गलत का जो फर्क है वो शिक्षा ही हमें देती है।
0: जी
2: तो शिक्षा बहुत उपयोगी है, और बिना शिक्षा के जो है संभव नहीं
0: जी
2: है।
0: जी तो जिसे नगरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति बहुत लोग जागरूक है और वहाँ लगभग संपूर्ण समय जो है कि शिक्षा के प्रति समर्पित कर देता है लोग, जितने समय काल तक बच्चा जगा हो तो कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक काम इत्यादि चलते रहते हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल में थोड़ा उसे हट करके कुछ समस्याएं हैं। बहुत लोगों की जो है कि बच्चे बकरी गाय के तरफ देख रेख करने के उद्देश्य से, कुछ लोगों का मानना है कि माता पिता अपने काम करने जाएंगे तो जो छोटा बच्चा है उसको देख रेख करने के लिए अपने कुछ बड़े बच्चों को रख लिया जाता है। ऐसा कुछ समस्या आता है क्या
2: नहीं
0: अपने?
2: नहीं नहीं ये समस्याएं जो हैं, ये देखिए जो ये विद्यालय है ग्रामीण परिवेश में,
0: जी
2: तो यहाँ ये समस्याएं हैं। पहली एक समस्या है कि देखिए उनके अभिभावक
0: जी
2: कुछ तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभिभावक जो शिक्षित नहीं हैं,
0: जी जी जी
2: तो उतना ज़्यादा वो उसको समझ नहीं पाते कि कितना उपयोगी है इस बच्चे का पढ़ना।
0: जी
2: अच्छा, इनका जो है जो मतलब रोजगार है वो भी कृषि है, खेती बाड़ी से संबंधित है, तो इन्होंने भाई पशु भी रखे हैं, तो
0: जी
2: अगर खेती बाड़ी के काम में लग गए तो फिर वो बच्चों को कहते हैं बेटा एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए इसको देखो,
0: जी
2: तो बच्चा वो 2 दिन जो है स्कूल नहीं आता, तो
0: जी
2: ये एक बाधक है उसके शिक्षा में।
0: हाँ
2: और इसी तरह से जो है आपका मतलब और भी काम घरेलू काम है, तो पहली तो आवश्यकता उनकी है कि जीवन यापन,
0: जी जी जी
2: तो इसके बाद सेकंड है वो शिक्षा। तो
0: जी
2: थोड़ा सा गार्जियन का कम पढ़ा लिखा होना, ये थोड़ा सा इसमें बाधक है,
0: जी जी
2: समस्याएं हैं।
0: समय का पाबंद
2: हाँ,
0: नहीं
2: समय
0: है।
2: के पाबंद नहीं है विद्यालय
0: जी
2: आने में,
0: जी जी
2: और गार्जियन अपने आवश्यकताओं से कुछ रोक लेते हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या है।
0: और तमाम होता है कि जो

0: कि ठीक है आज पर नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा,
1: हाँ
0: कल
1: ये
0: से
1: तो है
0: जाएगा
1: कि भाई
0: तो।
1: एक दिन में दो दिन में,
0: हाँ
1: लेकिन ये चीज़ है कि जो स्कूल में आज जो चीज़ पढ़ाई गई
0: जी
1: वो दो
0: जी
1: दिन बाद 3 दिन बाद बच्चा आएगा तो वो
0: बिल्कुल
1: उसका
0: बिल्कुल, वो छूट
1: उसमें
0: गया
1: वो चीज़
0: रहेगा।
1: छूट जाएगी, फिर से उसको उस चीज़ को पढ़ाना पड़ता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: तो
0: तो
1: ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत करती हैं
0: जी,
1: जो है बच्चे के
0: तो
1: सीखने
0: अब
1: के
0: तो बहुत
1: क्रम में।
0: तो इसमें बच्चों के सीखने में निश्चित रूप से बाधक है, और जबकि ये तो प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति जान पाता है कि आज के पढ़ाया हुआ चीज़ फिर अगले दिन, अगर अच्छा अगले दिन अगर उसको पढ़ाने लग जाएगा तो दूसर के बच्चे के लिए वो रिपीट हो जाएगा, दोहरा दिया जाएगा, तो वो और मैंने किसी भी प्रकार से एक दिन अब्सेंट करने से उसका हानि ही हानि
1: हानि
0: है,
1: है, हाँ
0: इसलिए
1: उसका
0: प्र
1: नुकसान होता
0: जी।
1: है।
0: तो चूँकि अभिभावक भी जाने अध्यापक के विचारधारा को और जो क्या कहने की इच्छा है, बच्चा भी जानता है कि हमको सर जी ये बात कहे हैं तो शायद हमको जो है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ घर पे जाते ही परिवेश में बदलाव समझ में आता है, तो ऐसे स्थिति में क्या करे बच्चा, चूँकि अब तो इधर गुरु जी का आज्ञा और सिस्टम, यहाँ पर विद्यालय में बच्चा कम समय तक रह पाता है, अधिक समय तक माता पिता के पास रहता है, तो हमको लगता है कि गार्जियन को भी कुछ जागरूक होना पड़ेगा।
1: नहीं, इसके लिए देखिए हम लोग में जो सरकारी विद्यालयों में निर्धारित है
0: जी
1: कि SMC बैठक,
0: हाँ
1: तो बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके
0: जी
1: सदस्यों SMC बैठक जो हर माह कराई जाती है
0: जी
1: प्रथम बुधवार को, तो उसमें हम लोग जब मीटिंग लेते हैं अभिभावकों की
0: जी
1: तो उसमें बात को इस बात को कहा जाता है कि देखिए बच्चों को आप प्रतिदिन विद्यालय भेजिए,
0: जी
1: और अगर मान लीजिए बच्चा किसी कामवश आपको बहुत इमरजेंसी है
0: जी
1: किसी
0: जी
1: कारणवश अगर आपको रोकना है तो हम लोगों ने नंबर अपना दिया है कि आप
0: जी
1: इस पे हमें फ़ोन से सूचित करिए
0: जी जी
1: कि बच्चा जो है आज सर काम है एक दिन के लिए
0: जी
1: और एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन आप उसको मत रोकिए,
0: जी
1: तो उतना तो ठीक है। तो इसको हम लोग बार बार अभिभावक को समझाने का प्रयास करते हैं SMC बैठक में कि बच्चे को रोकिए नहीं, उसका नुकसान मत करिए।
0: जी जी
1: और जो है दूसरी बात है कि जैसे हमने पढ़ा दिया आज पाठ को, इसके बाद ये भी हम लोग अभिभावक मीटिंग में कहते हैं SMC बैठक में कि बच्चे को शाम को
0: जी
1: आप बच्चे को 1.5 से 2 घंटे जरूर बैठाइए,
0: जी
1: जब आप खेती बाड़ी के काम से नहीं पटाए या अपने नौकरी काम से आ जाएं घर पे तो 2 घंटे उस बच्चे को बैठाइए
0: जी
1: और देखिए कि बच्चे को स्कूल में क्या पढ़ाया गया
0: जी
1: और बच्चे ने कितना, तो जब दोनों की सहभागिता होगी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अध्यापक
0: बिल्कुल
1: और अभिभावक
0: जी
1: तब उस बच्चे का विकास तेज गति से होगा,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: बच्चा देखिए 6 घंटे ही स्कूल में रहता है विद्यालय में, 18 घंटे वो अपने माँ बाप के साथ रहता है,
0: बिल्कुल
1: तो उनकी सारी चीज़ों को वो जो है ज़्यादा देखता है।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: पहली प्राथमिकता जो है बच्चे की शिक्षा है,
0: जी
1: और इसके बाद बच्चा विद्यालय से चला जा रहा है 2 बजे,
0: जी जी
1: 2 बजे विद्यालय बंद होता है, उसके बाद उस काम को आप करा लीजिए।
0: बिल्कुल
1: हम ये नहीं
0: बिल्कुल
1: मना कर रहे कि आप काम मत
0: नहीं,
1: कराइए
0: वो
1: बच्चे
0: तो
1: से,
0: सर्वांगीण विकास में तो वो
1: हाँ
0: भी आता है
1: वो भी
0: ना,
1: आता
0: सभी
1: है, तो
0: काम जानना
1: घरेलू काम
0: चाहिए।
1: भाई अब कैसे वो
0: जी
1: बच्चा जैसे कुछ भी छोटे मोटे काम है तो
0: बिल्कुल
1: उसमें तो
0: बिल्कुल
1: बच्चा सहयोग करेगा ही,
0: जी जी
1: तो उस काम को आप कोशिश करिए कि विद्यालय बच्चा नियमित है उसके बाद जो जाता है उस
0: जी
1: समय में आप उस काम को रख लीजिए,
0: बिल्कुल
1: और बहुत कोई इमरजेंसी है तो चलिए एक आध दिन के लिए आप बच्चे को, लेकिन नियमित मत बनाइए उसको,
0: जी जी
1: नहीं तो बच्चा फिर पढ़ाई से धीरे धीरे उसकी दूरी
0: तो
1: बढ़ती जाएगी।
0: जी जी तो ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चा किसी अच्छे वस्तु को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, और वो अगर ये भी जाने कि हमारा विद्यालय बहुत सुंदर, कोई चित्र बहुत अच्छा सा बना है उसको देखकर प्रफुल्लित होता है, पौधे लगे हुए हैं उसको देखकर के प्रसन्नता होती है, तो ऐसा ही कुछ उनके जीवन काल में है कि सबसे अच्छा जो है अपनी माँ को समझता है बालक, और सबसे मजबूत कहीं जब समझता है तो पिताजी को समझता है, और कहीं ऐसा हो जाए कि पहनावा ओढ़ावा के मामले में, चाहे कभी कभार ग्रामीण अंचल में लोग कहता है कि थकान दूर करने के लिए नशा पत्ती कर लेता है, वैसे स्थिति में जब पहुंचता है विद्यालय तो ऐसे में हमको लगता है कि बच्चे के दिमाग पे बड़ा कुप्रभाव पड़ता होगा, कैसा लगता है?
1: नहीं देखिए ये तो चीज़ है कि जैसे बच्चे का अभिभावक है, देखिए प्रथम जो है उसकी शिक्षक तो माँ होती है
0: जी
1: बच्चे की,
0: जी
1: प्रथम शिक्षक माँ है, क्योंकि बच्चा उसकी गोद से ही उस बहुत चीज़ें वो माँ से ही सीखता है,
0: जी
1: और भाई पिता है पिता के साथ भी रहता है कुछ चीज़ें वहाँ भी सीखता है। हाँ जैसे आपने कहा कि मान लीजिए अभिभावक उसका मतलब गलत उसमें तरीके में विद्यालय आ जाए
0: जी
1: तो जो एक बच्चे का एक मतलब अपनी जो एक उसका भी एक सोसाइटी एक
0: सोसाइटी
1: समाज
0: है
1: है उसके
0: बिल्कुल
1: दोस्त
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: अगर उसका पिता अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाता है विद्यालय में तो उसको सही बात है कि उसको थोड़ी सी अपने मित्रों में दोस्तों में बताने में एक शर्मिंदगी होती है।

0: कि देखिए मेरे पिता, और बच्चा हर सारी चीज़ों को समझता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये सब चीज़ों को तो हम लोग मीटिंग में वो सारी चीज़ों को बताते ही हैं कि भाई बच्चे, माँ बाप बच्चे के साथ वैसा आचरण करें जैसा वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। तो मतलब ऐसे घर में भी ऐसे रहें कि बच्चे वो देखें तो सीखें, क्योंकि बच्चा पहली चीज़ माँ से सीखता है, पिता से सीखता है और उसके बाद शिक्षक से। तो ये कड़ी है, माता पिता और शिक्षक, ये तीन को बच्चा बहुत ज्यादा मतलब कहिए कि गंभीरता से लेता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: इनकी चीजों को, इनकी बातों को
1: जी,
0: तो वो सीखता है। तो इसलिए जो है हम लोग भी कहते हैं कि भाई अभिभावक ऐसे आचरण करें, ऐसे घर में रहें, ऐसा परिवेश दें। विद्यालय में तो हम लोग दे ही रहे हैं बच्चे को, लेकिन घर में भी उसको लगे कि नहीं जो है मतलब हमारे माँ बाप इस तरह से हैं और हमें ऐसे रहना है
1: जी,
0: तो तभी बच्चा वो विकास कर पाएगा।
1: क्योंकि रेडियो के माध्यम से आपको लगभग पूरे जनपद के लोग सुन रहे हैं, चलते चलाते आप कुछ क्या निर्देश देना चाहेंगे अभिभावक एवं बच्चों को?
0: हम ये कहेंगे खासकर अभिभावकों को कि देखिए शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है
1: जी,
0: क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति का जो है बच्चे का विकास संभव नहीं है
1: जी।
0: और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शिक्षित नहीं तो आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा
1: जी, जी।
0: आप तमाम ऐसे समाज में उदाहरण है कि जो बहुत कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे रहे, लेकिन उनके बच्चे बड़े बड़े उच्च पदों पर इस समय नौकरी कर रहे हैं
1: जी।
0: तो आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, पहले तो प्रतिदिन उनको विद्यालय भेजिए
1: जी।
0: बच्चा रोज स्कूल आएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा
1: जी, जी।
0: बच्चा रोज विद्यालय आएगा, सीखेगा, और इसके बाद शाम को हम तो हर मीटिंग में, हर उसमें ये चीज़ कहते हैं, गांव में भी अगर निकलते हैं भ्रमण में तो कहते हैं कि बच्चे को शाम को प्रतिदिन घंटे डेढ़ घंटे का समय उनको दीजिए। विद्यालय में क्या पढ़ाया गया क्या है, तो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, उसको रिवाइज करेगा, फिर जब वो अगले दिन स्कूल आएगा तो बच्चे का कॉन्सेप्ट मान के चलिए 60-70% तक क्लियर है। और इसके बाद जो है बच्चे का जो है मतलब स्कूल के साथ साथ और भी जो गतिविधियां हैं उस पर भी ध्यान दिया, ऐसा नहीं केवल पढ़ाई। बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको खेलने का समय है, खेले कूदे, खाना पीना खाए, सारा चीज़ करें।
1: निश्चित रूप से चाहे अभिभावक पढ़ने जान रहे हों या न जान रहे हों, कम से कम यह कह करके कि जो दिन भर पढ़े हो बच्चा हमको भी सिखाओ, हमको भी बताओ, ऐसे भी करके अगर जो है कि घंटा दो घंटा बैठे तो निश्चित रूप से जो पढ़ाई किया होगा बालक और वो जो है कि दोहराएगा, उससे उसको ज्ञान में वृद्धि होगी। इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे प्राथमिक विद्यालय मनबसा मध्य के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री पुष्पराज सिंह जी, आपसे बातचीत हुई, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोला भैया,
1: हाँ भैया,
2: देखिए इतना बढ़िया आपसे बातचीत भैलक जोन बाकी पुष्पराज सिंह जो उनके अध्यापक रहन और पूरा जानकारी दिलन की कई तरह से लेकिन बचपन के हम लोगन आगे बढ़ावे में सहयोग कर सकेला और माता पिता के घर परिवार के का योगदान हो सकेला, और इतना बढ़िया जानकारी खातिर तो धन्यवाद जरूरी हुए।
1: बिल्कुल,
2: धन्यवाद कराओ भैया।
1: तो भैया देखा आज इसमें जानते हो कि कजरी के मौसम है और महीना तो हो तो हल्ले हो, लेकिन आज मौसम भी एकदम बिल्कुल वैसी है।
2: बिल्कुल,
1: तो शारदा सिन्हा की एक जन बाकी कजरी हम लोग सुनल जाए।
2: एकदम सुनल जाए।

0: कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया बदरिया घेरिया ऐल सखिया।
1: बाप रे,
0: निश्चित रूप से शारदा सिन्हा कितना बढ़िया, एकदम बिल्कुल मौसम के अनुसार बादल घेरले ही भी है भैया।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: इसने में कजरी सुनौने बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके। लेकिन भैया देखा, ये समय खेती किसानी भी बड़ा जोरों पर चल रहा है।
1: एकदम
0: बहुत
1: भैया,
0: किसान भाई लोग तो जन बाकी जो जो के रहन की जो भाई, कब हम पानी बरसे कि हम लोग के धान रोपाए। जौने किसान भाई के पास जुगाड़ रहा तौन तो केहू तरीके धान रोपनी कर दिले रहन लोग।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जौन बिल्कुल प्रकृति पर आश्रित भैया, उनके लिए एकदम वरदान हो भैया इस समय। लेकिन इस समय अधिक से अधिक लोग ये सोच में पड़ल हल
1: का भैया,
0: कि अपन हम लोग जौन धान रोपत थी
1: हाँ
0: ओमे कैसन कीटनाशक के प्रयोग करें कि हम लोग के धान भी पौष्टिक रहे और खेत भी जौन बाकी सुरक्षित रहे भैया।
1: बिल्कुल
0: तो एक एक खातिर लोग सलाह देते हैं, उन विशेषज्ञ लोग भी,
1: का भैया,
0: कि हम लोग जैव कीटनाशक के अगर जौन बाकी एक प्रयोग कर जाए
1: हाँ
0: तो सुरक्षित पर्यावरण भी रही और अनुकूल हम लोग के फसल भी रही। तो ये पर जौन बाकी विशेष ध्यान देवल जा रहा है भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हुआ भोला भैया। और ओकरे साथ साथ भैया देखा, साग सब्जी या बाग बागवानी भी भैया देखा, जब बरसात के मौसम आवला तो अधिक भैया देखा कीट पतंग हम लोगों के देखे के
0: बिल्कुल
1: मिलेला।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: निश्चित
0: बिल्कुल
1: रूप से भैया देखा, अधिक जौन बाकी कीटनाशक के प्रयोग करेला पड़ेला।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम
0: हाँ
1: लोगन के जौन रासायनिक कीटनाशक बा ओकरा प्रयोग ना करके भैया देखा घर पे ही अपन जौन जैविक कीटनाशक होखाला,
0: बिल्कुल
1: चाहे
0: बिल्कुल
1: निमास्त्र के बात होखाला या भैया देखा 10 पर्णिक अर्क के बात हो पाला,
0: हाँ हाँ
1: भैया
0: हाँ
1: देखा ये तरह के जोन बहुत ही कम खर्च में अपने घर पे भैया देखा हम लोग बना सकीला,
0: बिल्कुल
1: ओकरा
0: बिल्कुल
1: बना करके
0: बिल्कुल।
1: भी हम लोग अपने खेती बाड़ी में प्रयोग
0: और
1: कर
0: जिसे
1: सकीला।
0: माहौल जिसे छोटे छोटे ऐसा जौन बाकी कीट हवन तो इन लोग के खातिर जौन बाकी मठास्त्र के प्रयोग लोग ज्यादा कराला।
1: एकदम
0: और जहाँ निमास्त्र के बात आप करें तो जौन बाकी नीम तो हर खेत के मेढ़ पर हो भैया,
1: हाँ हाँ
0: हम सब लोग किसान हैं। खाली वो में थोड़ा सा हम लोग पशुपालन पर ध्यान देते हैं तो पशु के जौन बाकी गोबर मुतारी और जौन बाकी ये नीम के पत्ती ये सब के अगर प्रयोग करके हम लोग चाहें तो अच्छा से अच्छा जौन जैव

0: कीटनाशक बना सकेला, और जो हम लोग महंगा महंगा कीटनाशक दवा लेवल जाला बाजार से, उससे आदमी बच जाए, अपन पैसा भी बची और जन बाकी फसल भी सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल सही कहा हुआ भोला भैया, और हम तक आपकी जानकारी के क्रम में हो मंसूरी धान की खेती में सामिक कार्य एक बारे में मोहन सिंह जो उनकी प्रगतिशील कृषक हवन अपन मुनई भैया के बातचीत हुए न हो तो भैया सुना।
0: बिल्कुल भैया सुना जाए।
2: किसान भाई लोग देखा है हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ल है, और असम को जवन समय बा वो ऐसा समय बा पंच भैया लोगन की हम लोगन के यहाँ अपने अंचल में खास तौर से पानी नहीं बरसत, लेकिन ऐसने में अपन किसान भाई लोग देर सवेर जवन धान का रोपाई बा वो अभी भी करत हो तो का प्रभाव उनकी खेती पर पड़ सकला, कितना लाभ हो सकला, कौन कौन बारीकियों में अपनावता एक हम लोगन उनके अनुभव पर ही जाने का प्रयास कर जाए। आज देखे हमारे संपर्क जोन बा वो हो गल बा रावर्सगंज ब्लॉक के सहदैया गांव का जोन प्रगतिशील किसान बा मोहन सिंह भैया, और उन्हीं से उनकर धान का खेती का अनुभव बा एक हम लोगन जानल जाये। कहे से कि समय थोड़ा सा धान की खेती बदे अपने अंचल में लेट होता है धीरे धीरे, तो मोहन भैया का अनुभव उनसे जानल जाए। हाँ मोहन भैया, राम राम।
3: राम राम किसान भैया, राम राम
2: भैया। ये समय धीरे धीरे अपन माने मग्घा नक्षत्र शुरू होवे वाला बा, ये समय आपका धान की खेती में का होता?
3: धान ऐसा मैं कल खेत में लगभग 15-20 दिन पहले ही।
2: जी जी।
3: अभी कुछ रोपाई एक हफ्ता पहले भइल बा।
2: अच्छा, माने कुछ रोपाई एक हफ्ता पहले भी भइल बा। अच्छा, जवन आप लोगन जैसे कि असों बरसात नहीं होत जोने हिसाब से हो एक चाहत रहल है, तो ऐसने स्थिति में अपने धान की खेती में कौने कौने बात का प्रमुख रूप से आप लोगन ध्यान रखत हुआ?
3: मौसम इस साल देखा जाए तो बारिश बहुत कम होत बा, अभी आपके सावन भी धीरे धीरे बीतल जात बा, महीना बादों जो कहना कि जैसे सावन से बादों डूबा न रही, जैसे बारिश की उम्मीद बहुत कम बा, अंदेशा बहुत कम लगा जात बा, लेकिन पानी का व्यवस्था बोरिंग बा, सिंचाई वही से होता और खेत में पानी हमेशा लगल बा।
2: अच्छा, जैसे बरसात होलै तो वो समय धान का रौनक और पानी नहीं बरसत तो ये समय धान का रौनक में का अंतर देखे में समझ में आवता?
3: इसे कहा जाला दो पिस्पणिया के कारण के धान पान और केला तीनों है पानी का चेहरा, तो ये बात सही कर जाला कितनों आप नीचे से पानी कितनों भी बोरिंग का भर दें, नदी से या नहर से कहीं भर दें, ऊपर के बारिश से फसल का अलग ही रौनक दिखा जाला। जब तक ऊपर से बारिश नहीं होता तब तक फसल में ज्यादा रौनक न रही, बस एक रही कि बस जीत रही किसी प्रकार से, बस खेत में दिखाई दे, लेकिन जो रौनक उसे ऊपर से पानी से होला वो आपके नीचे पानी से न मिल पाए।
2: बिल्कुल सही बात कहता हूँ। तो असम कौने धान की खेती आप करता?
3: इस समय मंसूरी और महीना में लगा हुआ धान दो प्रजाति है।
2: तो मंसूरी भैया कब रोपाई हो गई चुकी? एक पहले ही रोपाई हो जाए तब भाई धान बढ़िया होला?
3: मंसूरी की रोपाई हमारे 25 जुलाई के पहले ही हो गया रहा।
2: अच्छा, तो जो मंसूरी का खेती आप लोगन कैले वहाँ, तो रोपाई में कौने कौने बात का विशेष ध्यान आप लोगन रखा भैया?
3: रोपाई में जैसे खेत पहले तक आप जैसे नर्सरी डाला, नर्सरी डालने के बाद होकर बीज का जनरेशन सही हो, बीज का देख रेख सही हो, घास पतवार खरपतवारों में न रहे, ओकरे बाद देख रेख कर जाला, और जब नर्सरी तैयार के कम से कम एक महीना के अंदर खेत में रोपाई कर देना चाहिए।
2: अच्छा।
3: जब कम समय में रोपाई हो जाला तब ओकर पैदावार अच्छी होला और उनमें से कल्ला भी अच्छा निकला। जब रोपाई जब भयल तो उस समय खेत का तैयारी भी अच्छे तरीके से जैसे दो बार कल्टीवेटर और फिर रोटावेटर मार दिया जाला।
2: जी जी।
3: और फिर उनके पलामू जिला जो सब लेबर आवन वही से रोपाई कराल जाला।
2: अच्छा, बावनी मंसूरी के रोपाई में कौन माने जैसे रोपाई आप लोग करावना तो पौध से पौध की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी का रखना, कई का धान का रोपाई करावना भैया?
3: मंसूरी धान और धान तो आप दो धान तीन धान लगा सकते हैं, कि मंसूरी अधिकतर एक धान लगा जाए, एक दूरी आपके ज्यादा बहुत ज्यादा आधा फीट से कम न रहना चाहिए, आधा फीट से अधिक रहना चाहिए, क्योंकि अब अगर ज्यादा घना रोपाई कर दिया तो घना रोपाई केले से क्या होगा कि उनमें पत्ती में सड़न पैदा होगा, भंभा रोग जिसे कहा जा रहा है, बहुत तेजी से लगा मसूरिया धान में।
2: अच्छा।
3: इनमें बहुत ज्यादा सिंचा थोड़ा ऐसे एक दूरी विशेष ध्यान दिया जाला, और इससे आप जितने दूरी करेंगे कल्ला अदर धान की अपेक्षा कल्ला ही बहुत ज्यादा होगा और अगर पैदावार भी अदर धान से अधिक है।
2: अच्छा, मैंने धान में लाइट रहा और धान का वजन भी सुने में आवला की बढ़ाला, केवल केवल दुई बार खाद देवे पड़ा ला कि तीसरी बार भी आप लोगन
3: मसूरी।

0: तीसरी बार में हल्का बहुत हल्का ट्रैपेसिंग यूरिया कर डाला 15 से 20 किलो प्रति बीघा।
1: अच्छा, तो उका कौने समय देवल जाला भैया?
0: जब धान रेड़ा पा जाला वही समय का ट्रैपेसिंग कर डाला।
1: अच्छा, जैसे मंसूरी में कौन कौन प्रमुख रूप से रोग लगला ओकरे बदे का उपाय भी आप लोगन करना?
0: मंसूरी में बस रोग ज्यादा बस वही है, बस जो भम्मा रोग लगला बस एक ही रोग के ज्यादा शिकायत आवला में।
1: अच्छा,
0: बाकी तो आपके रोपाई से लेकर कटाई तक कोई ज्यादा बीमारी नहीं, बस वही भम्मा का शिकायत बहुत ज्यादा, पत्ती में सड़न पैदा होला, पत्ती सूखा लगल है, बहुत ज्यादा समस्या होगा। जब अगर समय पर उपचार नहीं हो, इलाज नहीं हो, तो आपके बहुत ज्यादा मतलब जब फैल जाला तो उसमें आप कितने भी दवा का प्रयोग करिए ऊपर कंट्रोल नहीं कर जा सकला।
1: अच्छा, तो ये दवा का उपयोग आप लोगन स्वयं पहले ही सावधानी बरते बदे भी कराना कि नहीं, रोग जब दिखाए लगला तब कराना?
0: नहीं, इसे का होला कि जैसे खेत हम धान को रोपाई कर जाला, खेत के मेड़ पर सुबह दोपहर शाम तीन टाइम आपके खेत पर जाएगी और खेत के हर पौधा के रौनक अगर देखभाल में देखना चाहिए कि मेड़ पर बैठ के आराम से कि पत्ती में कोई समस्या नहीं है। जैसे छोटा बालक होला जिसे हमेशा शरीर के टेम्परेचर के देखा जाला कि बच्चा कहीं बुखार नहीं है, खांसी जैसे जो समस्या हो बच्चा को बहुत ध्यान दे, उसी धान के फसल है क्योंकि बहुत देख रेख करे खोला, सुबह दोपहर शाम जो तीन टाइम आप खेत के मेड़ पर जाइए और आराम से वो बैठ के थोड़ा बेड़ पर उनमें आप पौधा से पौधा के बीच में जब जगह जहाँ भी में देखें ध्यान से देखें तब खुद अनुभव मिली, जब उन्हें निगरानी समय समय से करी है तब जब भी आपको थोड़ी बहुत समस्या, जैसे शुरू में समस्या एक जगह से स्टार्ट होगा आपके खेत में नहीं फैले, जब ये जगह से स्टार्ट हुई जब उनका जो भी कीटाणु जब ज्यादा जब हवा मात्रा जब फैला चला ला हवा से ज्यादा तब खेत में फैलाना तो चारों तरफ दिखाई दे वाला और शुरू में अगर उपचार कर दिए आपके तो ज्यादा नुकसान से बच दिए।
1: बिल्कुल मोहन सिंह भैया, अच्छा जॉन मंसूरी का खेती आप लोग धान का करता है खासतौर से बोनी मंसूरी का, तो इसमें खर्चा का गिर जाला?
0: खर्चा में वही आपके बीज गजनबा हर धान के अपेक्षा सस्ता मिला और प्लस एक बीज भी आपके हर धान से थोड़ा कम लगाला, रोपाई में बहुत कम मात्रा में का बीज भी लगाला और खाद जितना अदर धान में दो जाए उतना भी दो जाए समान मात्रा में और हम लोग खाद बहुत कम मात्रा में दो जाएगा क्योंकि घर सब खेत हम लोगों का खुद गोबर जो कंपोस्ट खाद है उसे जो फरल हो प्लस कोहरी और हम लोगों के जो सब्जी की खेती होला लौकी भिंडी नेनुआ ये सबसे खेत बहुत चढ़ जाला, इससे कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं आवा।
1: हाँ भैया, ये कहते हैं कि अगर खर्चा बर्चा कटले के बाद बचत का हो जाला?
0: अगर खर्चा बर्चा देखा जाए तो बहुत ज्यादा बीघा पर रोपाई से लेकर अगर अपन साधन अपन बा तो रोपाई से लेकर कटाई तक 10 से 15 हजार रुपया खर्चा होला प्रति बीघा। हाँ,
1: अब बचत का हो जाला?
0: बचत आपके देखने मसूरी धान का पैदावार एक बीघा में 20 से 22 क्विंटल होला और 23 रुपया 24 रुपया 25 रुपये जैसा ही मार्केट में धान चल जाला, तो आपके बचत बीघा पर कम से कम 25 से 30 हजार प्लस रही कम नहीं।
1: चला चलावत जो अपन किसान भाई लोग मोहन सिंह भैया अपने अनुभव के आधार पर का कहल चाहिए आप उनके का संदेश देवल चाहिए?
0: हम भी सभी किसान भैया से ये लोग कहना चाहते कि जो भी आप चाहे धान की खेती चाहे सब्जी की खेती चाहे कोई भी खेती करें उन्हें बहुत मन और लगन और मेहनत के साथ करें तभी आपके फायदा मिली और जब फायदा मिली तभी आपका मन में लगी और जब मन लगी तभी आप जब मन लगी हैं रमिहन तभी आपका विकास हुई और आपके परिवार का विकास हुई, इसलिए जो भी खेती कर रहे थे आप हम लोग पेड़ तो बहुत ज्यादा मिर्च और टमाटर का है, मिर्च टमाटर के भी लोग खेती बहुत ज्यादा पेड़ पैमाने पर होला हम तरफ, लेकिन हम लोग धान हम लोग भी होला और धान का भी ध्यान दो डाला, इसलिए जितना भी आप ध्यान दिए उतना ही ज्यादा आपके फायदा मिले। अब किसान भैयाओं से यही कहा कि जो भी आप खेती करें मन से करें और समय पर उनका देख रेख करें, दवा उपचार टाइम पर दिए आपके पैदावार अच्छा मिली और आपके मुनाफा भी अच्छा मिले।
1: बिल्कुल मोहन सिंह भैया, आज आपसे संपर्क भर और जवान अनुभव का बात भैल आपसे ऐसे जरूर अपन किसान भाई लोग लाभ उठे हैं, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भोला भैया, देखे जानकारी मिलल बहुत बहुत धन्यवाद हम मोहन सिंह भैया के।
3: बिल्कुल,
2: और नए भैया के भी, लेकिन अब जौन मौसम इसमें चल रहा है आगे के मौसम के का स्थिति रही एक हम लोग जानकारी ले लो जाए सिमंगल सिंह जौन मौसम वैज्ञानिक भी चुके हैं।
3: हाँ,
2: तो फिर एक अनुसार हम लोग खेती किसान कर
3: एकदम सुनल जाए भैया।
1: पंच भैया लोग देखें हम लोगों ने खेती बाड़ी से जुड़ल ही अगर खेती बाड़ी करत है तो मौसम का भी जानकारी हम लोगों के जरूर मिले के चाहिए। देखें आज हमारे संपर्क हो गल बा फिर एक बार शिव मंगल सिंह साहब से जौन की तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग।

0: काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप हों, और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि आवे वाला जवन शुक्रवार तक का मौसम बा वो कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। किसान भाइयों, पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और अगले 3-4 दिनों तक भी जो है कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है
0: जी।
1: और आगे भी बरसात होगी अगले 3-4 दिनों तक। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए खेती बाड़ी में,
0: जी।
1: उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों धान के खेत की। इस समय धान में कल्ले निकल रहे हैं और लगातार जो है बादल और बारिश के कारण धूप कम मिलने से पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है
0: जी।
1: तो इस समय क्या है कि खेत में बिना जरूरत के यूरिया के न डालें, क्योंकि अभी भी क्या है कि धूप निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि पौधे तो हरे भरे हो जाएंगे लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं रोग का कारण बन सकता है, रोग को आकर्षित करने का कारण बन सकता है। इसीलिए जब मौसम क्लियर हो, साफ हो, तब जो है किसान भाई यूरिया का छिड़काव करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा
0: जी।
1: और वहीं अगर मक्का के खेत की बात करें, अरहर और मूंग की बात करें, तो इस समय जो है किसान भाइयों विशेष सावधानी की जरूरत है
0: जी।
1: बारिश के बाद अगर खेत में पानी ज्यादा देर तक खड़ा रहता है इन सब फसलों के खेतों में, तो मिट्टी के अंदर क्या है कि जड़ों तक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
0: जी।
1: इसका असर जो है पौधों की जड़ों और नई जो बढ़वार वाली शाखाएं होती हैं उस पर सीधे तौर से पड़ता है
0: जी।
1: इसलिए जो है पानी निकालने के बाद पौधों को ध्यान रखें कि केवल पत्तियां पीली दिखाई देने पर तुरंत यूरिया डालना सही नहीं होता है
0: जी।
1: ठीक है, कभी कभी अब क्या होता है कि पौधे की जो जड़ों की अवस्था देख लें उसके बाद जो है अगर हम ये क्या नाम है रसायन का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है
0: जी।
1: और एक महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हैं किसान भाइयों को, क्या होता है कि किसान भाई देखते हैं कि भाई थोड़ा सा मौसम निकल गया तो सोचते हैं कि निकाई गुड़ाई कर लें, लेकिन क्या होता है कि जब मिट्टी बहुत गीली होती है और उस पर चलेंगे या फिर मशीन चलाएंगे तो मिट्टी चिपकने लगते हैं ना, तो उस समय खेत में काम करने से क्या होता है कि मिट्टी दब सकती है और जो मिट्टी की संरचना होती है फसल के हिसाब से वो खराब हो सकती है
0: जी।
1: इसलिए किसान भाई क्या करें कि जब मिट्टी में पर्याप्त नमी कम होने पर ही जो है जैसे कि मतलब उसमें हो कि भाई धंसे न पैर, तब जाके उसमें अगर निकाई गुड़ाई करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा
0: जी।
1: और अगर पशुओं की बात करें तो क्या है कि देखिए लगातार नमी से क्या है कि पशुओं में जो पशुओं के खुरे हैं वो लगातार जो है कि गीले मिट्टी में रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी सूजन आ जाता है, तो आप देखें कि पशुओं की चाल ढाल देखें अगर लंगड़ाने लगे लातिमा या दुर्गंध दिखाई दे जैसे मतलब कि होता है कि थोड़ा सा बदबू आ रहा है तो संबंधित संक्रमण का शुरुआती संकेत हो सकता है
0: जी।
1: इसलिए ऐसे में क्या है कि बरसात में पशुओं पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस तरह से किसान भाई जो है मौसम के आधार पर अपनी जो खेती बाड़ी है उसको करेंगे तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा और जो उनका मौसम जनित नुकसान होने का संभावना है वो नहीं होगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भयल और इतनी अच्छी जानकारी अपने पंच भैया लोगन के मिलल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
2: मधुपुर मंडी के बाजार भाव कुंतल में हो पुनर्वासी चौहान भाई भेजले हूँ।
3: बिल्कुल
2: आलू रहल जनबा की 1200 रुपया कुंतल और जनबा की बैगन गोल 2500, टमाटर 3500, मिर्च 3200,
3: अच्छा अच्छा
2: शिमला मिर्च रहल 6000, चौराई 1500, पालक 1500, करेला 3500, नेनुआ 2000 और तरोई रहल 2500, भिंडी 1000, लौकी 800, कोहड़ा 2200, बोड़ा 1500, धनिया 6000, प्याज 2500, लहसुन 10000, अदरक 10000, अरुई रहल 3000,
3: हाँ भैया
2: मूली 200 रुपया कुंतल और गाजर जनबा की 2800,
3: हाँ भैया
2: और वहीं भैया खीरा 2500 रहल, परवल 6500 रुपया कुंतल और फूल गोभी 3000 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2800, नींबू 200 रुपया सैकड़ा रहल। ये रहल जनबा की घुराव मधुपुर मंडी के बाजार भाव पुनर्वासी चौहान भैया पत्र भेजलन, बहुत बहुत धन्यवाद
3: एकदम भैया। और जोन बाकी हम लोगन भी जोन बाकी घड़ी के सुई कहते हुए कि आज के पंचेती भैया यही समेटल जाए, तो एक ही प्रतिज्ञा के साथ

0: पंच इतनी समेटल जाए कि नेत्रदान महादान हुए भैया। जब भी अवसर मिले हम लोगन के बिल्कुल करे के चाहिए, तो चलल जा भैया।
1: तो सब पंचन के
0: राम राम।
2: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: खेती पाती जो है ना वो बहुत मेहनत मांगत है, और हम 5 दिन रात अपने खेत में मेहनत भी करत हन। और यही समय देख लो अपने खेत में धान के फसल लगी है और अपन फसल जो है पूरी देख रेख मांगत है ताकि अपने कोनो तरह के खर पतवार उसमें ना पन पाए।
1: बिल्कुल सरला बहनी, और देखो बारिश का मौसम है और अपने खेतन में पानी जो है बहुत भर जात है, और इस समय ज्यादातर खर पतवार है या कीट पतंगा है इनका आवे की संभावना बहुत जो है अधिक रहते है, तो जरूरी है कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन का प्रयोग किया जाए।
0: बिल्कुल सौरभ भैया, और देखो हम सब अपने खेती से संबंधित उपाय भी अपना लेते हैं, जैसे कि बुआई फसल चक्र अपनाओ चाहिए, स्वस्थ और रोग मुक्त बीज के चुनाव करे चाहिए, और खेत के साफ सफाई करके नाशी जीव के प्रकोप कम कर सकत हैं हम।
1: बिल्कुल, और प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनका चयन करे चाहिए है ना, और जो उर्वरक है उनका संतुलित प्रयोग करे चाहिए, और विशेषकर नाइट्रोजन का जो अनियंत्रित उपयोग है वो करवाके चाहिए, और साथ में जो है सहली खेती है ट्रैप क्रॉप है तो इस सब चीजन का प्रयोग करे चाहिए।
0: और सौरभ भैया देखो खेती से संबंधित तमाम खबर अगर पहले से पता चल जाए तो कितनी नीक बात है, तो आओ जान लें जाए आज की खबरें।
2: आम के पुराने और घने बागों में कम पैदावार की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए विंडो ओपनिंग तकनीक फायदेमंद साबित हो सकती है। इस तकनीक में पेड़ की जरूरत से ज्यादा घनी और आपस में उलझी शाखाओं की वैज्ञानिक तरीके से छटाई कर पेड़ के बीच में विंडो यानी खुला स्थान बनाया जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी और हवा पेड़ के अंदर तक पहुंचती है, जिससे धूप से भोजन बनाने की प्रक्रिया बेहतर होती है और फलदार शाखाओं का विकास बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार विंडो ओपनिंग आम की तुड़ाई के बाद करना बेहतर रहता है। हालांकि एक बार में पेड़ की 15-20% से अधिक हरियाली नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक छटाई से पेड़ पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बड़ी शाखाओं की कटाई भी सावधानी से करनी चाहिए ताकि छाल न फटे। छटाई के बाद कटे हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाने और काटी गई शाखाओं को बाग से बाहर हटाने की सलाह दी जाती है। सही समय और वैज्ञानिक तरीके से की गई यह तकनीक पुराने आम के पेड़ों में नई शाखाओं के विकास, बेहतर फल फूल और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार में मदद कर सकती है।
0: सौरभ भैया देखो ये जो बरसात के मौसम है ना, ये मौसम में हम सब कई तरह की फसल लगाए हैं, और वही देखो अपनी गन्ना की फसल भी बढ़वार हो रही है, और जरूरी है क्योंकि देख रेख भी करी, और देख रेख के भाई बात आओ थे तो हम सब पूरी मेहनत और लगन के साथ ही लग जाते हैं। और यही क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह भैया, बता रहे हैं गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में, तो आओ हम सब जाना जाए।
1: बिल्कुल जाना जाए और ध्यान से सुना जाए, और कोनो जरूरत की बात हो तो लिख लीजिए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां मिठास की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां गन्ने की फसल इस समय खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
4: नमस्कार किसान पंचों, गन्ना इस समय अपने बढ़वार की स्थिति में चल रहा है और ये एक दो महीने और इसका बढ़वार होना है। इस अवस्था में अगर गन्ने में कीट या बीमारी लगती है जिससे किसान का भारी भरकम नुकसान होता है, और चीनी मिल की पेराई सत्र में भी जो है वो काफी गिरावट हो जाती है। जहां तक बीमारियों की बात करें तो लाल सड़न रोग गन्ने की महामारी के नाम से, कैंसर के नाम से जाने जाने वाली बीमारी है, और आप लोग खुद भी ये अनुभव कर रहे हैं कि 0238 एक प्रजाति थी जो से ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती थी, 7-8 साल से उसकी रोग रोधक क्षमता घटने की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है लाल सड़न से। तो उस प्रजाति के लिए मेरा एक निवेदन यह है कि किसान भाइयों उसका बावक फसल ही लें, और बावक फसल का जो बीज लें उस बीज को देख लें, उस गन्ने में किसी भी तरह का लाल काटने पे नजर आ रहा हो तो निकाल दें। 0.1% के घोल बना के बेवेस्टिन नामक एक फफूंद आती है कार्बनडाइजिन, 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें डुबो दें। डुबोने के बाद कम से कम उसमें 20 मिनट आधा घंटा अगर उसमें रहने देंगे तो उत्तम होगा। और मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें, ट्राइकोडर्मा बीमारी तो कम करता ही है और उसके साथ साथ वो एक तरीके का टॉनिक भी है, और जैसे हमें आपको वैक्सीन लगती उसी तरीके से बीज शोधन आवश्यक है।
3: इसके अलावा पक्का बोइंग की भी समस्या आ रही है डॉक्टर साहब?
4: जो प्रजातियां प्रचलन में है जिसकी खेती हो रही है उसमें उकठा रोग एक आ रहा है, पक्का बोइंग आ रहा है, और और कंडुआ रोग आ रहा है। ये चार बीमारियां गन्ने में ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदेह हैं।
3: इनकी पहचान क्या है?
4: देखिए, लाल सड़न गन्ने में ऊपर से तीसरी पत्ती पीली पड़ती है और करीब 10 से 15 दिन में पूरा अगोला सूख जाता है और पत्तियां वैसे खड़ी रहती है जैसे नीचे से काट के चपका दिया गया हो। लेकिन जब पक्का बोयंग आता है तो ऊपर से नई पत्तियों निकलने वाली जगह में हरियाली की कमी हो जाती है, उसको हरिमाहीनता कहते हैं, और वो पत्तियां मुड़ जाती हैं, मरोड़ उठती हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं बना पाता। तीसरी बीमारी जो बिल्ट है, बिल्ट में गन्ना लगभग 2 महीने में सूखता है, इसलिए पत्तियां वत्तियां धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती हैं और हल्की भूरी हो जाती हैं। और कंडुआ बीमारी में गन्ने के जो अगोला है वहां से नई पत्तियों के बनने के बजाय एक काला रंग का चाबुक नुमा एक फफूद निकलता है जो रोग को फैलाने में काम करते हैं। वो फफूद जो है हवा से टहलता है और कई किलोमीटर तक वो जाके गन्ने को प्रभावित कर देता है और जिस गन्ने पे गिरता है उसमें उस सीजन में वो बीमारी का लक्षण नहीं आता, वो अगले साल का बैना दे जाता है। तो ये जानकारी नहीं होती कि गन्ना स्वस्थ है जिसका बीज उपयोग कर रहे हैं। अब जो मैंने बताया कार्बेंडाजिम से बीज शोधन जब करेंगे तो लगभग सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी।
3: सब इस समय जब खेत में फसल है तो कुछ उपाय कर सकते हैं प्रबंधन में किसान भाई बहन?
4: निश्चित रूप से इस समय थायोफिनेट मिथाइल एक फफूंद नाशक है, उसका 0.01% का घोल बनाना है,
3: 1 ml प्रति लीटर पानी,
4: जी जी 1 ml प्रति लीटर पानी में, और उसका छिड़काव कर दे। उसके छिड़काव से आपका पक्का बोयंग पे भी नियंत्रण होता है और बाकी की बीमारियां भी उससे नियंत्रित होती हैं।
3: कुछ जैविक उपाय भी है डॉक्टर साहब?
4: जैविक उपाय में देखिए, हम किसान को सलाह देते हैं कि बीज को ठोक बजा के ले और स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग अवश्य करे,
3: बीज शोधन और भूमि शोधन
4: दोनों में करे।
3: डॉक्टर साहब, कुछ हानिकारक कीट भी इस समय लग रहे हैं बेधक की?
4: जी हाँ, कीट एक बहुत बड़ी समस्या है और गन्ने में बेधक कीट और गन्ने का रस चूसने वाले कीट, ये दो तरीके के कीट ऐसे हैं जो गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेधक कीटों में आप जानिए कि चोटी बेधक सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद तना बेधक आता है और फिर जड़ बेधक आता है।
3: डॉक्टर साहब, इनका प्रबंधन हो कैसे?
4: एक कीटनाशक आता है जो क्लोरेंट्रानिलीपोर, वो 150 ml की एक शीशी आती है, उसको एक एकड़ के गन्ने में उसको जमीन के पास छिड़काव कर दे, ट्रेंचिंग करना है और वो गर्मी के महीने में करना है, मई जून में करना है, तो वो अपने आप फसल को 3 महीने तक के लिए किसी भी बेधक कीटों से वो मुक्ति दिलाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा गन्ने में समस्या है इस समय जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसपे मिली बग नाम का एक कीट आता है,
3: गन्ने को भी नुकसान पहुंचा रहा है,
4: बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। किसान को जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि ये नई पत्तियां जो निकलती हैं वहां नहीं होता, पुरानी पत्तियों में सबसे पहले घुसता है, गन्ने से चिपक के अंदर चला जाता है और वो दिखाई नहीं देता है, तो वहां से वो रस चूसता है और ऊपर की सारी गोला पीला हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए एक तो पत्ती निकालना पड़ेगा, उसको छील के बाहर फेंकना पड़ेगा, और उस पर जो है एक कीटनाशक आता है इमिडाक्लोरपिड, उसका 3 ml 5 लीटर पानी के अनुपात में उसको मिला के उस पर छिड़काव करना है। और इसके लिए एक और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ये छिड़काव कम से कम 45 दिन बाद दोबारा अवश्य करें, क्योंकि उसके अंडे जमीन में होते हैं, मेड़ पे होते हैं, एक बार मरने के बाद वो दोबारा फिर से आके गन्ने को प्रभावित करता है।
3: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं पायरिला की भी, रस चूसक कीटों की भी समस्या है?
4: पायरिला की समस्या तब आती है जब गन्ने में चीनी बनने लगता है और गर्मी की अवस्था में भी कभी कभी आती है, लेकिन पायरिला के लिए एक अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार एक कीट है जो उसको खाता है,
3: यानी पीछे पीछे आता है मित्र कीट,
4: पीछे पीछे मित्र कीट आता है, और जहां बहुत ज्यादा पायरिला हो जाता है वहां हम उस मित्र कीट के अंडे को रिलीज भी करते हैं।
3: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
4: 94-52-65-53-52 9452654 5352-9452-5553-5552-5552-5553-5552.
3: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
4: जितना बच सके 238 प्रजाति का खाली आप बावक फसल लें और बीज शोधित करके बोएं। बाकी अभी और जो प्रजातियां हैं उनमें 14201, 15201, सीओ 15023 ये कुछ प्रजातियां हैं, और इनके चयन में आप कोई भी प्रजाति को अगर बढ़ाते हैं तो 30% 40% के क्षेत्रफल में ही ले जाएं।
3: डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सौरभ भैया देखो, सावन का महीना चल रहा है और भाई देखो, बाजा पे तो हम आपका झूला नहीं झुला सकते, मुला की देखो कजरी के माध्यम से हम आपका झुमा जरूर सकत हैं। तो आवाज सुना जाए यू कजरी पूजा तोमर बहनी के स्वर माँ, तो हम सब झुमा जाए और पंच भैया भी झूमे।

0: देखो सलाह बहनी, किसान वाड़ी प्रोग्राम में अपने साथ जोन है कोई ना कोई पंच भाई जुड़त हैं, जो अपनी फसल का लगा रहे हैं उसके बारे में बतावत हैं। तो वह क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिलजिंदर सिंह भैया, जो जानकारी दे रहे हैं वर्टिकल सिंगल वर्ड से गन्ना के उत्पादन कैसे की जाए, तो इसका सुना जाए और भैया के अनुभव जाने जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के नकहा ब्लॉक के शीतलापुर गांव के गन्ना उत्पादन से जुड़े दिलजिंदर सिंह भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
2: डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार और हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को भी नमस्कार। मैं करीब 20 एकड़ जमीन के ऊपर खेती करता हूँ।
1: पूरे परिवार की सम्मिलित जमीन?
2: परिवार की 20 एकड़ जमीन पर हम खेती करते हैं।
1: तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
2: प्रमुखता से हम गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने के बीज का उत्पादन करते हैं। तो 75% खेत यानी कि करीब 15 एकड़ के करीब हमारे पास गन्ने के बीज लगे हुए हैं।
1: कुछ खास तरीका अपनाते हैं गन्ने के बीज उत्पादन में?
2: गन्ने के बीज, क्योंकि कुछ वैरायटियों के जाने के बाद गन्ने के बीज में बहुत भारी कमी आई, तो हमने वर्टिकल सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई करनी शुरू की। इसमें हम कम बीज में और कम लागत में अधिक गन्ने की पैदावार कर पा रहे हैं।
1: तो जो सिंगल बड है और ये वर्टिकल सिंगल बड, इसमें क्या फर्क है?
2: जो सिंगल बड विधि है वो बहुत समय से कई सारे किसान भाई करते आ रहे हैं। सिंगल बड को वर्टिकल बोने का अर्थ यह है कि पारंपरिक तरीके में गन्ने की जो बड होती है उसको जमीन पे लटाया जाता है, और जो सिंगल बड वर्टिकल विधि है, वर्टिकल अंग्रेजी में कहा जाता है कि जब हम गुल्ली या गन्ने की बड को खड़ी करके बुआई करते हैं,
1: यानी ऊपर की तरफ,
2: उसको हम ऊपर की तरफ खड़ी करके मेड़ के किनारे उसकी बुआई की जाती है।
1: तो क्या पहले आप किसी पॉलिथीन में इसको जमाते हैं?
2: इसकी बुआई डायरेक्ट होती है खेत में।
1: अच्छा,
2: इसकी नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नर्सरी तैयार करने में भी अतिरिक्त खर्चा लगता है, लेबर लगती है। हम इसकी बुआई सही समय पे डायरेक्टली खेत में ही करते हैं।
1: यानी सिंगल बड गन्ने के जो बीज है उससे निकाल लेते हैं और उसकी सीधी बुआई करते हैं?
2: जी, इसकी कटाई भी एक विशेष रूप से की जाती है। ये गन्ने की कटाई जड़ की तरफ से शुरू करते हैं काटना, और ऊपर जो उसके पलई की तरफ हम गन्ने की कटाई करते हुए चलते हैं,
1: ऊपरी हिस्से
2: की तरफ चलते हैं, तो जो गांठ के नीचे का हिस्सा होता है उसको थोड़ा कम काटा जाता है, और गांठ के ऊपर, आंख के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। ग्रेविटी की वजह से जब हम बड को लगाते हैं जमीन पे
1: जी,
2: तो उसका जो भोजन होता है उसकी ऊपर वाली इंटरनोड में होता है, और वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जब तक बड अपनी जड़ें नहीं बना लेती है तब तक उसको भोजन उसी बड की इंटरनोड से मिलता रहता है। उसके बाद जब बड चल जाती है, उसकी अपनी जड़ें होती हैं, तो वो अपना पोषण जो है वो जमीन से लेना शुरू करती है।
1: तो इस साल आपका कितना रकबा है बीज उत्पादन का?
2: हमने करीब इस समय 12 एकड़ जमीन पे बीज उत्पादन वाला गन्ना बोया हुआ है, और बाकी जो है वो फैक्ट्री में सप्लाई के लिए चला जाता है।
1: तो इसमें कुछ शरदकालीन होगा, कुछ बसंतकालीन होगा?
2: जो वर्टिकल सिंगल बड विधि से हम गन्ना बोते हैं, ये वो वाले गन्ने बोए जाते हैं जो नए बीज इस समय रिलीज होके आते हैं।
1: अच्छा।
2: और जिनकी मात्रा बहुत कम गिनती है,
1: उसको बढ़ाते हैं।
2: उसको बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम तरीका जो है वो वर्टिकल सिंगल बड विधि से है। अगर हम इसको 4.5x2 फुट पे 1 एकड़ खेत में लगाते हैं तो हमारे सिर्फ 4750 बड 1 एकड़ खेत में लगते हैं, जो करीब करीब हमें 4 क्विंटल गन्ने से मिल जाते हैं।
1: और जबकि पूरा गन्ना का टुकड़ा बोने पर उसके बीज की मात्रा काफी,
2: उस समय जब हम पूरे गन्ने से बीज बना के बोते हैं तो हमारे पारंपरिक तरीके में करीब 25 से 35 क्विंटल तक का बीज लग जाता है
1: प्रति एकड़। तो कौन कौन सी वैरायटी का गन्ना बीज आपके पास है?
2: हमारे पास वो बीज हैं जो रिलीज हो चुकी वैरायटीज हैं,
1: जैसे
2: IISR लखनऊ से 16202, हमारे शाहजहानपुर इंस्टीट्यूट से जो हमें बीज मिलते हैं 17231 है, 18231 है। इन वैरायटियों का हमने इनको मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं।
1: तो इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ या उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की जो नई वैरायटी है, उनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं अपने खेत?
2: इस समय ये वैरायटियां बिल्कुल नई निकली हैं और इनका उत्पादन तो समय के साथ धीरे धीरे, जब ये हमारी जमीनों में अडाप्ट करेंगी 2-3 साल बाद ये अपने चरम पे पहुंचेंगी जिसमें ये अपना पूरा उत्पादन देंगी। अभी इस समय ये रिकवरी के पक्ष से बहुत बढ़िया वैरायटियां हैं और ये अभी रोग से लड़ने की जो शक्तियां हैं वो अच्छी हैं,
1: यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी है और चीनी मिल के लिए रिकवरी भी अच्छी है।
2: चीनी मिल
1: तो
2: के लिए,
1: चीनी मिल के डिमांड भी होगी
2: जी, उनकी डिमांड की वैरायटी है। उत्पादन के लिए अभी किसान भाइयों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लेती है, हर वैरायटी जलवायु के हिसाब से जब अडाप्ट करती है तो 1 से 2 साल के बाद ये अपना पूरा उत्पादन देने लग जाती है।
1: तो इस साल शरदकालीन गन्ने की बुआई का रकबा कितना होगा?
2: इस समय हम शरदकालीन गन्ने की बुआई की हमने शुरुआत कर दी है।
1: अच्छा, अभी से?
2: वर्टिकल सिंगल बड का सबसे उत्तम समय जो है वो ये समय है,
1: अगस्त
2: के महीने से इसकी बुआई शुरू हो जाती है और आप सितंबर के आखिर तक इसकी बुआई अच्छे तरीके से कर सकते हैं कम बीज में। उससे बाद जब हम और आगे लेट करते हैं तो हमें बीज की जो दर है वो बढ़ानी पड़ती है।
1: तो कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखते हैं बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के बुआई और खड़ी फसल की देखभाल?
2: तो वर्टिकल सिंगल बड विधि जो है, जैसे हमने पहले चर्चा की कि सिंगल बड तो काफी सालों से किसान भाई करते आ रहे हैं, वर्टिकल सिंगल बड में हम लोगों ने जो गन्ने का उत्तम समय है बुआई का कुदरत की तरफ से जो निर्धारित है वो अगस्त के महीने से शुरू हो जाता है और आप सितंबर के महीने तक बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें आप कुदरत के अटल नियमों के हिसाब से गन्ने की बुआई करते हैं, जिसमें जो दिशा है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
1: जैसे
2: आप पूर्व पश्चिम की कूड़ बनाए जाते हैं या बेड बनाए जाते हैं और जो दक्षिण की तरफ बेड की ढलान होती है उसके ऊपर गन्ने का बीज लगाया जाता है, जिसका एक विशेष कारण है कि आगे आने वाले समय में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दी में धूप, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो धूप बहुत पसंद करती है, उसको बहुत लंबे समय के लिए धूप चाहिए होती है और क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सर्दियों का समय जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उस समय के लिए हम जब दक्षिण वाली बाही पे जब इस पे लगाते हैं गन्ना तो इसको सर्दियों में सबसे ज्यादा धूप मिलती है, तो इससे गन्ने की जो बढ़वार है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हमको इसको जमीन के अंदर नाली के अंदर लटा के नहीं लगाना, हम इसको थोड़ा सा गन्ने की मेड़ के बेड के किनारे उठा के गन्ने को लगाते हैं ऊंची जगह पे, जिसमें कि कुदरती तौर पे पानी जो है वो गन्ने की फसल के नीचे रहता है और गन्ना अपनी जरूरत के अनुसार पानी या नमी को लेता रहता है,
1: यानी अपनी प्यास बुझा लेता है,
2: बुझाता है और वो कभी भी पानी की वजह से स्ट्रेस में नहीं आता।
1: और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
2: जब हम उसको कम पानी देते हैं या पानी की जो स्ट्रेस से उसको बचा लेते हैं गन्ने को, तो उसकी जो भूख है वो अपने आप मिट्टी से पूरी करता है।
1: आप प्रति एकड़ कितनी कार्बनिक खादें देते हैं, कितनी रासायनिक और जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन में?
2: हम इसको सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खेत में कोई भी फसल अवशेष जो है वो खेत से बाहर नहीं जाता, ना ही जलाया जाता है, हर फसल अवशेष को हम खेत में ही जोत के उसकी मिट्टी में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम हरी खाद की बिजाई हर साल करते हैं, जिससे कि हमारे कार्बनिक जीवांश जो है वो खेत में भरपूर रहे, जिसकी वजह से हमें रासायनिक खादों पे हमारी निर्भरता जो है वो कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जो मिट्टी की सेहत है वो तंदुरुस्त रहती है, रोग कम लगते हैं और आपका जो खादों पे हमारा निर्भरता है वो कम हो जाती है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन का या गन्ना उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो मिठास की फसल की खेती करना चाहते हैं?
2: देखिए, आज तक के जितने भी मेथड हैं गन्ने की बुआई के सभी कामयाब हैं, हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। सिंगल बर्ड वर्टिकल मेथड जो है वो किसान भाइयों को अभी उनके लिए नया है, तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पहले इस विधि को समझें, कम रकबे में अपने खेत में इसकी शुरुआत करें और इसके बाद जब एक बार उसको समझ लेंगे तो उसके बाद इसको वो बढ़ा सकें।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58 88 40 30 32 58।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
2: चलते चलते सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक नई विधि है, इसको अपनाइए, कम रकबे पे इसको करिए, इसको समझिए और इससे लाभ उठाने की कोशिश करिए, जैसे कि हम अपने खेतों में कर रहे हैं।
1: दिलजिंदर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और मिठास की फसल उगा रहे हैं जिसमें ज्यादातर रकबे में वर्टिकल सिंगल बड से गन्ना बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें आपकी लागत भी कम हो रही है, आपका उत्पादन अधिक मिल रहा है और आपको मुनाफा भी अधिक मिल रहा है। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
4: परम तो सभी डाले
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: सरला बहनी।
6: हाँ जोर भैया।
0: देखो अपन पंच भाई जौन है, मौसम की जानकारी के बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, कहे कि समय मौसम ऐसा चल रहा है, पता नहीं कब पानी बरसा लगे, पता नहीं कब धूप निकल आवे, तो इसलिए जरूरी है कि अपने पंच भाई के यहाँ मौसम की जानकारी आप उपलब्ध करा दो।
6: बिल्कुल भैया, भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 7 दिनों के बरसात के पूर्वानुमान यह प्रकार से है। आज यानी 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। यू भैया रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़े की संभावना है, और कुछ स्थानों पर तेज बौछार पड़े की संभावना है।
0: सरला बहनी, देखो हम उनके यू प्रोग्राम तो अपन पंच भाई सुनत हैं, लेकिन साथ में अगर कोई सुझाव देवैया हैं, कोई विशेष विषय पर जानकारी लेवैया हैं, तो ये अपना पत्र हम लोगों के यहाँ लिख सकते हैं, ताकि उनकी पार्टी के माध्यम से जो बात है वह हम लोगों तक पहुंच जाए।
6: और भैया चिट्ठी पाती लिखे खातिर हमारा पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 226001, और यह पता पे चिट्ठी पाती जरूर लिखा।
0: और अगर ईमेल करिया हो तो हमारी ईमेल आईडी का है, वह अपने पंच भाई के बता दो।
6: और भैया मेल करा चाहत है तो हमारा पता है farmandhomeairlko@gmail.com, यह पता पर मेल जरूर करें। और सौरभ भैया अब बैठके के समय हो रहा है समाप्त, तो पंच से लीन जाए आज्ञा।
7: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा
5: का। एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। 600 रुपए प्रतिदिन किया ड्यूटी भत्ता। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन आज से हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वाराणसी के छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल श्योराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पीआरडी जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया। श्री योगी ने प्रांतीय रक्षक दल के सम्मेलन में जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 600 रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विपरीत परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों का सेवा भाव और अनुशासन प्रदेश की प्रगति तथा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी के स्वयंसेवकों के लिए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है।
9: अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में सम्पन्न हुआ है।
8: पीआरडी जवानों के सम्मेलन में राज्य मंत्री, राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पीआरडी जवान के सैनिक शांति, सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद 2017 से पहले पीआरडी का बजट मात्र 2300 रुपए था, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूपी जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। 5 दिवसीय इस निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और जापान प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल विकास, एआई, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में नए आयाम तलाशने के लिए एकजुट हो रहे हैं। गृह विभाग ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पहली गठित विशेष जांच दल एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। एसआईटी ने यह रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। श्रीराम जन्मभूमि

0: तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर पहली एसआईटी का गठन गत 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित दूसरी जांच टीम की जांच अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। श्री तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि उनकी शैली सबको साथ लेकर चलने की है और वे संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह देश का 109वां पीएम दिव्याशा वयोश्री केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव, एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चहवाड़ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। वह पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। उधर महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत के निशानेबाज अखिल चौराण और मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाह अरु मैनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टेली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में यह बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कल देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 22 मजदूर घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 719 पर गोहद क्षेत्र के छीमका गांव के पास हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश के मृतक मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमरोहा में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एसीपी अतुल अंजान ने बताया कि गंगा में नावों का संचालन फिलहाल अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सचेत कर रही है।
1: गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज 66.90 मीटर लेवल है और अभी भी 4 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। श्रावण मास भी चल रहा है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है कि गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। नाविकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ साथ में पूरे घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मॉनसून वेडिंग के इस गीत को। आकाशवाणी उपरस इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, सुनते रहिए आकाशवाणी ओपरा का प्रसारण।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आनंद बख्शीकिल के इस गीत को अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत वीजू शाह का था और फिल्म का नाम था मोहरा। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

0: दिल तो पागल है। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को। संगीत उत्तम सिंह का था।
1: अरे अरे अरे ना ना, ना।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल के इस गीत को। गीतकार थे आनंद बख्शी। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शीगल के इस गीत को आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था जैसे को तैसा। इसी गीत के साथ

कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए शुभा मुद्गल की आवाज में इस गीत को। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: Thank you.

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

कॉलोनियन कजिन्स की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। इसी के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहित चौहान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस गीत को, और फिल्म का नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

गुलजार के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे कीर्ति सगाठिया और चिन्मय की आवाज में। संगीत A.R. रहमान का था और फिल्म का नाम था गुरु। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

सोनू निगम, आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाज में ये था फिल्म मैं हूं ना का गाना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खान और श्रेया घोषाल के आवाज़ में इस गीत को। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गज़ल को। आकाशवाणी ओपरा से समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में इस गीत को।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में इस गीत को। इसी के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
4: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जांच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
6: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वार्सेन अगा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़े विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal test against Sri Lanka on day 4. Host reel at 84 for 4 at stumps, chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said that BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges, while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Earlier, speaking at the meeting, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, emphasized that environmental action must remain people-centric, sustainable and responsive to the realities of developing countries.
9: We draw inspiration from the vision articulated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I quote, "Our goal will be to redefine BRICS as a building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Just as we brought inclusivity to our G20 presidency and placed the concern of the global south at the forefront of the agenda. Similarly, during our presidency of BRICS, we will advance in this forum with a people-centric approach and the spirit of humanity first."
8: India today said that the credibility and robustness of the country's election machinery are well established globally. Spokesperson of Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal stated this while briefing media in New Delhi this evening. Mr. Jaiswal was responding to US President Donald Trump's praise for India's election system and his reference to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's remarks on the lack of voter identification in US elections. On the massive earthquake in Indonesia, Mr. Jaiswal said, India is deeply saddened by this tragedy.
10: In Indonesia, it was rocked by a major earthquake in which a large number of people have been killed. We are deeply saddened by this tragedy and we convey our condolences on the precious lives lost. We also pray for the early recovery, the speedy recovery of those who are injured and for the safety of people who are involved in rescue and relief efforts. In this difficult hour, India stands in solidarity with Indonesia.
8: On Pakistan's reaction to India's claims over Shehzad Bhatti terror network, The spokesperson said that India takes issue of terrorism very seriously.
10: Terrorism matters. These are very serious things. We take it very seriously. We want the global community to understand the gravity of such actions. India has been hit hard by terrorism. We have, over the last several years, taken a lot of effort to galvanize global action, strengthen global action to fight terrorism, including cross-border terrorism. And whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we'll continue to take.
8: On protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the MEA spokesperson said that many lives have been lost there and the situation is such that the local population needs and deserves sympathy and solidarity from the international community. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced that public sector banks will launch a month-long campaign called Banking for Youth from the 2nd of October this year. The minister was delivering her concluding address at the Public Sector Bank Conference in New Delhi this evening. She said the campaign will work as a platform for a sustained engagement with young customers, facilitating their future entrepreneurial journey.
11: Banks could also complement their banking proposition with lifestyle-linked benefits. We saw in the data that you presented that 66% of all the UPI transactions is being undertaken by those who are in the age group of 18 to 29. That's a world there waiting for you to access them. They're tech-savvy. The presenter did mention they are very tech-savvy youth.
8: Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today.
12: We have everything, fruits, flowers, vegetables and grains. Our aim is to ensure that these products reach the country and the world in a better way, increase farmers' income and build a global brand for our agricultural products. With this objective, we organized the Sankalp Sammelan today. We prepared a roadmap to achieve these goals and presented it before everyone. Agriculture and rural development sectors have collectively taken a pledge today to implement this roadmap and achieve its objectives.
8: Earlier, Mr. Chauhan inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth over 1,258 crore rupees at Baran in Rajasthan. Railways Minister Ashwini Vaishnav today inaugurated the gauge-converted Kailara-Sabalgarh-Birpur rail section in Madhya Pradesh through video conferencing. The minister also flagged off the extension of the Gwalior-Gailaras train up to Birpur virtually. The extension will offer more affordable and convenient travel options for passengers from rural and tribal areas. The government has proposed a 5-year extension in the permissible age of battery-operated, hydrogen-fuel-based and natural gas-driven commercial vehicles covered under the National Permit System. The proposal is part of draft amendments to the Central Motor Vehicles Rules 1989 issued by the Ministry of Road Transport and Highways to simplify national permit procedures and promote greater use of digital processes. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The Supreme Court today said it would constitute a high-powered committee comprising retired Apex Court and High Court judges, a former DGP, and an ex-CBI director to examine allegations of police excesses against students during the recent protests in Delhi and violence against police personnel. A 3-judge bench headed by Chief Justice Surya Kant said an order for constituting the committee would be released tomorrow after it received suggestions from different parties on other members to be included in the panel. The top court further said that it will direct the handing over of video footage and CCTV recordings of the violence during the 20th of July Parliament March in Delhi to the high-powered committee for examination. The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has achieved a major milestone in its nationwide mission mode drive for mandatory biometric updates, completing more than 2 crore biometric updates for school children across the country. The special drive initiated in September last year has now covered over 1,56,000 schools, enabling school children to complete their Aadhaar biometric. In Himachal Pradesh, heavy monsoon rains continue to disrupt normal life. The heavy downpour has affected several areas, prompting people to remain indoors. More from our correspondent.
13: Three labourers were killed in a landslide in a mining area near Kafota in Shilai Tehsil of Sirmaur district this evening. Sirmaur Deputy Commissioner Priyanka Verma said that two of the deceased were of Nepali origin, while one was a local resident. Relief and rescue operations are underway at the site. Also in Sirmaur district, government school Mathur in the Nahan Assembly constituency turned into an island after the water level of the river flowing alongside the school rose due to heavy rainfall. All 52 students and 12 staff members were stranded there were safely evacuated by late evening. In Solan district, landslides near Koti, close to Jabli, have disrupted train movement on the Shimla-Kalka railway line. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
8: Meanwhile, the IMD has forecast very heavy rainfall conditions tomorrow in places over east and west Uttar Pradesh, east Madhya Pradesh and Uttarakhand. Parts of northeast India, Delhi, Haryana, Chandigarh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala and Mahe, some Himalayan West Bengal and Sikkim are also likely to receive moderate to heavy rainfall tomorrow. Pakistan's Supreme Court today ordered authorities to transfer jailed former Prime Minister Imran Khan to Islamabad's Shifa International Hospital for a comprehensive medical examination within the next few days. The court said the order was being issued in view of PTI's founder Imran Khan's health and the constitutional guarantee of the right to life and access to medical facilities. It also directed authorities to ensure weekly meetings between Imran Khan and his family members and ordered the establishment of a medical board with his personal physician and his sister to be associated with it. Former Pakistan Prime Minister has been imprisoned at Adiyala Jail in Rawalpindi since August 2023 and is facing multiple corruption cases. Iran today said that the Strait of Hormuz will remain closed to maritime traffic until all Iranian conditions under the 14-point Memorandum of Understanding, or MOU, signed with the US, are fully met. Tehran has tied the reopening of the strategic waterway directly to the complete removal of foreign sanctions and the cessation of military operations. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakhar Khalibaf asserted that the Islamic Republic is ready to impose a heavier defeat on the enemy in proportion to its actions and aggressions. On the other hand, US President Donald Trump in a social media post today said that the US has no planned talks with Iran, but insisted the Strait of Hormuz remains open and operating. His remarks come amid the expiry of the 60-day window provided by the MOU to halt military hostilities for peace talks between the two sides. The anti-corruption branch ACB of Delhi government has arrested former minister and AAP leader Satendra Kumar Jain, IAS officer and former CEO of Delhi Jal Board Udit Prakash Rai, and four others accused persons in connection with irregularities and criminal conspiracy in the tendering process relating to augmentation and upgradation of sewage treatment plants of the Delhi Jal Board. The case was registered against them on the complaint of Directorate of Vigilance. On to sports now. In men's cricket, India have tightened their grip on the first test against host Sri Lanka on day 4 in Galle. Chasing a target of 372 runs, Sri Lanka was struggling at 84 for 4 in the second innings at stumps. India now needs 6 more wickets to secure victory in the test. India were bowled out for 193 in the second innings, setting the visitors a target of 372 runs. Rishabh Pant top scored with 66 runs off 69 deliveries. In the BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have advanced to the pre-quarterfinals in New Delhi. The Indian duo outshined United States' Lauren Lam and Allison Lee in straight games. Ace shutters Lakshya Sen and Unnati Hooda have sailed into the second round of respective singles events. The government has announced the National Sports Awards 2025. India's premier women's badminton doubles pair of Teresa Jolly and Pulela Gopichand, along with 15 other sports persons from various disciplines, will be presented the Arjun Award for their outstanding performances. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi student protest. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with the US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal Test against Sri Lanka on day 4. And Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals in Badminton World Championships. That's all in the news at 9. Good night.

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के लिखे इस गीत को, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था मेरा साया। आकाशवाणी उभरा से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। सोनभद्र में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना, जिला प्रशासन ने आम जन तक सतर्क रहने की अपील की। 18, 19 और 20 अगस्त को मौसम को लेकर चेतावनी, निचले इलाकों, नदी नालों एवं जल प्रपातों से दूर रहने की सलाह। कार्यालय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोनभद्र के अनुसार भारी वर्षा के कारण जनपद के निचले एवं जल भराव वाले क्षेत्रों, नदी नालों, मौसमी जलधाराओं, जल प्रपातों, बांधों एवं जलाशयों के आसपास जल स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही निचले पुलों एवं सड़कों पर जल भराव से आवागमन बाधित होने, कच्चे एवं असुरक्षित भवनों, संरचनाओं को क्षति पहुंचने, पेड़ों के गिरने तथा विद्युत एवं अन्य सामुदायिक सेवाओं में व्यवधान की संभावना बनी रह सकती है। जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें तथा प्रशासन एवं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों एवं दिशा निर्देशों का पालन करें। सूचना समाप्त हुई।

निदा फाजली की लिखी इस रचना को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत आरडी बर्मन का था और फिल्म का नाम था हर जाई। आकाशवाणी उबरस इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

गीता दत्त की आवाज़ में ये था गुलजार का लिखा गाना फिल्म अनुभव से। इसी के साथ पुरानी फिल्में गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा का प्रसारण। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आरडी वर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए फिल्म अजनबी के इस गीत को। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मंजिल के इस गीत को। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम है नमक हराम।

0: आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना की आवाज में फिल्म कुदरत के इस गीत को। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी कल के इस गीत को। संगीत आर डी बर्मन का था और फिल्म का नाम था घर। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

अब लीजिए सुनिए गुलजार के लिखे इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत आर डी बर्मन का है और फिल्म का नाम है मासूम।

0: अभी आप सुन रहे थे गुलजार के लिखे इस गीत को आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था मासूम।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए अब यही समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से।
4: खेल दर्पण।
5: खेल दर्पण। खेल दर्पण। खेल दर्पण।
4: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। इस बार मैं सुंदरम तिवारी। आज के अंक में आप सुनेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश की खेल नीति से बदलता खेल परिदृश्य विषय पर उप क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद से की गई बातचीत, और प्रयागराज के उभरते प्रतिभावान पोलवार्ड खिलाड़ी आर्य देव तथा शॉर्टपुट खिलाड़ी नवीन यादव से भेंटवार्ता। एक बड़ी आम चर्चित या यूं कहे कि लोग कोकती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज के दौर में ये कहावत उतनी समीचीन नहीं बैठती क्योंकि खेल की दुनिया में आजकल सफलता के मायने अलग ही हो गए हैं। भारत में क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेल जो हैं उनकी क्षेत्र में खिलाड़ियों की और उन तमाम निवेशकों की सफलताओं के मायने बदले हैं, और भारत के साथ साथ पूरा विश्व इस समय खेल के प्रति जागरूक हुआ है और न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ाव हुआ है। भारत सरकार ने भारत में खेल की स्थिति सुधारने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम का निर्माण किया। 2017-18 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसका उद्देश्य ये रहा कि ग्रामीण स्तर पर और जो निचले तबके के लोगों को खेल से जोड़ना और उसके प्रति जागरूक करना। भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी हाल ही में 2023-24 या यूं कहें कि 2022-23 में अपनी एक खेल नीति जारी की और खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन खेलों का निचले स्तर पे या यूं कहें कि ग्रास रूट लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है या इससे कितना प्रभाव बढ़ा है, खेलों की दशा कैसी हुई है या उनमें किन चीजों की किन सुधारों की आवश्यकता है या उनको किस तरह के दिशा निर्देश की आवश्यकता है, इन तमाम विषयों पर इन तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इलाहाबाद के उप क्रीड़ाधिकारी श्री देवी

0: प्रसाद जी हैं। देवी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: तो देवी प्रसाद जी, आप उप क्रीड़ा अधिकारी हैं और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पोस्टेड हैं। किस तरह देखते हैं आप खेलो इंडिया कार्यक्रम को, किस तरह से इसने खेल की दशा ग्राउंड लेवल पे बदली है?
1: जब से खेलो इंडिया कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया 2017 और 18 से,
0: जी
1: तब से फर्स्ट टाइम था, उतना जागरूकता नहीं था खिलाड़ियों को, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है उस कार्यक्रम के बाद फर्स्ट टाइम 14 गेमों को स्टार्ट किया था। उस समय स्कूल गेम्स के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था।
0: अच्छा।
1: उसके बाद जब कार्यक्रम स्टार्ट किया गया तो उसके बाद ग्रामीण अंचलों से लड़कों ने उस कार्यक्रम में जो जो लड़कों ने मेडल किया उसको 1,000 पूरे देश से लड़कों को चयन किया गया
0: अच्छा।
1: और 10,000 पर मंथ स्टार्ट किया गया था कि लड़के आगे चल के अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करें और देश के लिए मेडल दें।
0: 10,000 रुपए
1: पर
0: मंथ
1: मंथ
0: की स्कॉलरशिप दी गई।
1: स्कॉलरशिप
0: अच्छा।
1: उसमें हमारे प्रयागराज से कई लड़कों, विपिन कुमार सिंह थे और थे, दो तीन लड़के थे जो उनको स्टार्ट हुआ था,
0: स्टार्ट हुआ जी।
1: आज प्रेजेंट टाइम में सब नौकरी में है।
0: अच्छा।
1: खेलो इंडिया की देन है। और उसी से फिर बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में दिव्यांग
0: अच्छा।
1: पैरालंपिक भी खेलो इंडिया में शामिल हो गया, जिसका इस समय 20 मार्च से 27 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है।
0: जी
1: उसमें हमारे प्रदेश से भी लड़के प्रतिभाग किए हैं। और खेलो इंडिया स्कीम को देश के प्रत्येक जनपद में,
0: जी
1: हमारे यहाँ भी उसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में खेलो इंडिया के तहत एक एक खेल को विकसित करने के लिए भारत सरकार के जो खेलो इंडिया स्कीम के तहत से उत्तर प्रदेश सरकार उस पर काम कर रही है। इसे
0: अच्छा।
1: हमारे प्रयागराज में खेलो इंडिया के तहत लॉन टेनिस का कैंप चल रहा है, जिसमें
0: अच्छा।
1: हम लोग 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसमें हम लोग चयन करते हैं, जिससे कि हम उन बच्चों का चयन करके स्पोर्ट्स कॉलेज, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो नियम है, जो खिला स्थापनाएं हैं, जिसे स्पोर्ट्स कॉलेज एक स्पोर्ट्स छात्रावास जिसमें हम लोग चयन कर सके,
0: चयन कर सकते हैं। देवी प्रसाद जी, ये बताइए कि आपके मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में जो छात्र आते हैं, है ना, तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले कोई छात्र अगर, या कोई सामान्य लड़का इच्छुक है किसी खेल में जाने के लिए, तो कैसे वो एडमिशन पा सकता है आपके कॉलेज में?
1: हम लोग का नया सत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है।
0: अच्छा।
1: और एक साल के लिए उसका चलता है
0: जी।
1: फिर नेक्स्ट ईयर फिर वही प्रक्रिया होती है।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग कम एज के बच्चे, जिसे जिम्नास्टिक है 7-8 वर्ष के बच्चे
0: जी,
1: ताइक्वांडो है, या इस तरह के जो छोटे बच्चों के गेम है जिसमें 6-7 वर्ष, ताइक्वांडो हो गया, जूडो हो गया, जिसमें वो सब बच्चे को हम लोग एडमिशन लेते हैं। और इससे एथलेटिक्स हो गया, कुश्ती हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें 9-10 साल के बच्चे, उन नए बच्चों का हम लोग चयन करते हैं। हमारा काम है कि एक तो आवासीय छात्रावास के लिए, एक स्पोर्ट्स कॉलेज जो हमारा मेन है।
0: अच्छा।
1: स्पोर्ट्स जो यूपी का अपना जो मेन है, स्पोर्ट्स कॉलेज में हम लोग कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं।
0: अच्छा।
1: जिसमें खिलाड़ियों की आयु 9 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वो कक्षा 6 के लिए होता है। तो उसमें जो हमारी सुविधाएं हैं, बच्चे का एडमिशन होने के बाद फीस, पूरा उनका ड्रेस, स्पोर्ट्स किट, पढ़ाई लिखाई सब आवासीय एक कैंपस के अंदर होता है,
0: ठीक है,
1: उनको कहीं बाहर जाना नहीं है। और एक हमारा आवासीय छात्रावास व्यवस्था है जो 12 वर्ष के ऊपर, मतलब अंडर 15, 15 वर्ष से कम आयु की, जो कक्षा 9 में एडमिशन होता है, तो उसका चयन प्रणाली में यह है सिस्टम कि बच्चा अभी, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब खेल साथी पोर्टल पर बच्चा फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है,
0: ऑनलाइन अप्लाई करें और फिर चयन किया। तो जब किसी बच्चे को आप चयन करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कि क्या कोई लिखित परीक्षा होती है या सिर्फ आप ग्राउंड पे उसका टेस्ट लेते हैं?
1: नहीं, हम लोग फील्ड के लिए सर ग्राउंड पर ही लेते हैं। ओवरऑल कुछ उनका देखते हैं कि IQ क्या है, किसी चीज को अगर टेक्निक को पकड़े तो कितना जल्दी पकड़ सकता है, IQ उसकी जैसे है तो उसको उस गेम के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग उनका बैटरी टेस्ट रखते हैं।
0: अच्छा। बैटरी टेस्ट क्या होता है?
1: बैटरी टेस्ट में उसमें हम लोगों ने 100 मीटर है, शटल रन है, मेडिसिन बॉल थ्रो है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, और 800 मीटर है।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग इसलिए टेस्ट लेते हैं कि जिसे उसका 100 मीटर स्पीड चेक करते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि स्प्रिंटर बाई बर्न होता है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी अच्छा भाग रहा था, इसका मतलब उसको लोग स्प्रिंट इवेंट में ला लेते हैं।
0: अच्छा।
1: एक एजिलिटी टेस्ट है जिसको शटर रन करते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है लेग स्ट्रेंथ के लिए, मेडिसिन बॉल थ्रो है आर्म स्ट्रेंथ के लिए, 800 मीटर उसके इंड्योरेंस और ऑक्सीजन कैपेसिटी चेक करने के लिए करते हैं। तो इससे हम लोग को लगता है कि बच्चा किस इवेंट में कर सकता है। अगर देखते हैं कि नहीं, ये बच्चा नहीं अच्छा कर पाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा पढ़ाई में ठीक हो तो पढ़ाई की तरफ जाओ।
0: अच्छा।
1: अगर फिजिकल के लिए करना है तो आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए आप इतना नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि आप स्पोर्ट्स न करो, लेकिन शारीरिक मानसिक और स्वास्थ्य रूप के लिए आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स से जुड़ना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी
1: आज के परिवेश में।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर इतना दबाव है मानसिक रूप से, कर जो भी, या पेरेंट्स का या जो भी है, सभी का है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई, और फिजिकल और इनका जो शारीरिक विकास रुक रहा है, जिससे उनको आज के परिवेश को सहन

0: कर पा रहे हैं। देखिए आए दिन
1: हाँ,
0: बच्चे
1: बदलते परिवेश
0: जी
1: में बिल्कुल। खेलो इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है ना। अच्छा, खेलो इंडिया कार्यक्रम 3 स्तर या 4 स्तर पे मैं समझता हूँ हो रहा है, एक
0: जी जी
1: विश्वविद्यालय स्तर पे, स्कूल स्तर पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं।
0: हमारा दो है सर। अब इसका जो पहला हमारा आ गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया,
1: अच्छा
0: जिसमें 21 वर्ष से कम, और एक है अंडर 17, जिसके स्कूल से ही बच्चे, और हमारा यूथ जिसे नेशनल गेम्स होता है अंडर 18, उससे बच्चों का चयन करते हैं। तो इसमें स्कूल से और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी एसोसिएशन है उससे
1: हाँ
0: बच्चों का चयन करते हैं, उसका नेशनल पर होता है। उसमें नेशनल से चयन करके उस बच्चों को, अब एक स्कीम है, अब तो टेस्ट कर करके उन्होंने अपना खेलो इंडिया का एक स्कीम करके बच्चों को वो एडाप्ट कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग लगा रहे हैं,
1: अच्छा
0: उसमें भी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण करके वो अपने आवासीय जो एसटीसी का सेंटर है उसमें भी वो ले रहे हैं।
1: देवी जी, जैसे मैं थोड़ा सा पिछले प्रश्न पर ले जाऊंगा
0: जी
1: कि आपने जब बच्चे का चयन कर लिया, अपने स्पोर्ट्स
0: जी
1: कैंपस है उसके लिए, फिर क्या उसकी दिनचर्या होती है? आप कैसे उस शुरुआत से लेके, आपका कई स्तर होता होगा
0: जी जी
1: ट्रेनिंग का, है ना, तो कैसे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं?
0: हम लोग हर बच्चे की एज के हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल डिवाइड करते हैं।
1: अच्छा
0: जैसे अंडर बच्चा, आप अंडर 14 है तो उसका अलग होगा, अंडर 16 है तो अलग है, अंडर 19 अलग है, 20 अलग है, मेंस अलग है।
1: अच्छा
0: कुछ एज के लेवल के कंपटीशन में उसको जाना है, उस
1: अच्छा
0: हिसाब से उसका ट्रेनिंग है। और डिपेंड करता हमारा कंपटीशन डेट कि नेशनल
1: अच्छा
0: कंपटीशन कब या इंटरनेशनल का कंपटीशन मेरा कब है,
1: कब?
0: तो उस हिसाब से हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब ईयरली, मंथली और वीकली प्लान, उसको हम लोग माइक्रो और बोलते हैं मीजो।
1: अच्छा
0: ये प्लान है, अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन इसलिए लेके चलते हैं, अगर नहीं लड़के को जाना है कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में, तो उसका टारगेट हम लोग अभी विजन बना के चलते हैं कि इसको हमको धीरे धीरे हर साल कितना इम्प्रूव करना है उसको।
1: अच्छा
0: बीच में अगर कोई टूर्नामेंट जिससे आ गया हमारा नेशनल का इस तरह का, तो हम उसका ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारा जो ईयरली प्लान लेके चल रहे हैं वही रहेगा, लेकिन
1: हाँ,
0: कंपटीशन सेशन आने के बाद थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ गया इस तरह लोड कम करके उसको चेंज करते
1: ये तो हो गया आपका अलग अलग शेड्यूल बच्चे को।
0: हैं।
1: पहली बात तो आप ये बताएं कि जो बीच में कंपटीशन होते हैं, एक तो अंतर जनपदीय होता है
0: जी
1: और एक मंडलीय अंतरराज्यीय, है
0: हाँ,
1: ना,
0: अंतर्राज्य
1: तो इन कंपटीशनों के लिए क्या कोई अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, या आपकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है उसी में आप इम्प्रूवमेंट करते चलते हैं?
0: ट्रेनिंग जो शुरू रहता है उसी को इम्प्रूवमेंट करता है। बीच में अगर कोई स्टेट टूर्नामेंट आ गया
1: हाँ
0: तो हम लोग को जिसे 10 दिन 15 दिन पहले पता चला, तो वही जो वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल है उनको चेंज करके स्पीड वर्क कराया जाता है। और बाकी मेन फोकस यही रहता है कि हमारा खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी में न जाए, जो कंपटीशन का टारगेट है वो मेन चीज है।
1: हाँ
0: और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो हम लोग का प्रातः और सायं दो चलता है सेशन,
1: अच्छा तकरीबन कितने घंटे का सेशन होता है, सुबह और शाम का?
0: 3 घंटे का सुबह और 3 घंटे का शाम का सेशन
1: शाम का
0: होता है।
1: सर?
0: लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो
1: हाँ
0: उनका 1-1.5 घंटे का जो एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो 7 साल से 8 साल है, उनको कम 3 से 3.5 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है।
1: आपके जो आवासीय बच्चे हैं, लोकल होते होंगे बच्चे, वो
0: जी
1: ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर जाते होंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी उनकी खत्म हो जाती होगी, जो आपके परिसर में जो बच्चे रहते हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था कैसे की जाती है?
0: उनकी पढ़ने की व्यवस्था पूरी सरकार के द्वारा है। ये
1: अच्छा
0: बच्चे यहाँ आते हैं, उनका जो हमारे सरकारी कॉलेज होते
1: हाँ
0: हैं जो कैंपस से हमारे नज़दीक हो, उस विद्यालय में उनका एडमिशन कराया जाता है।
1: जी
0: बच्चे उसमें आफ्टर ट्रेनिंग पढ़ने जाते हैं, और उसके बाद पूरी फीस जो होती है सरकार का है, मतलब
1: हाँ
0: 3,000 रुपया पर ईयर,
1: पर ईयर के हिसाब से?
0: ये है सुविधा फीस की, और 2,000 मेडिकल की। और
1: अच्छा
0: बच्चे अगर कहीं खेलने जाते हैं तो उनकी जो अपना सरकारी फेयर है वो उनको मिलता है छात्रावास में।
1: देवी प्रसाद जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खेल नीति बनाई है, तो उस खेल नीति से कितना फर्क पड़ा है, आपके जो खेल प्रोग्राम है या जो प्रदेश का जो स्तर है वो किस हिसाब से बदला है?
0: हमारा 2023 में खेल नीति लागू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने,
1: जी
0: तब से हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तो अपना काम कर रहा था, जो हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है
1: जी
0: वो भी और एक्टिव है। अब स्पोर्ट्स खेल नीति आने से जो हमारे खेल विभाग है, क्योंकि सारे जो फाइनेंशियल खर्च है
1: जी
0: हमारा खेल विभाग करता है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट
1: अच्छा
0: सरकार हमारी करती है, और कोचेज भी कोचिंग देने काम हमारा स्पोर्ट डायरेक्टरेट करता है। एसोसिएशन का काम है कि टूर्नामेंट का डेटा आयोजित करना
1: हाँ
0: अपना, उनको ऑफिशियल देना, और टीम ले जाने के लिए अपना टीम मैनेजर और करते
1: टूर्नामेंट
0: हैं,
1: का टोटल आयोजन जो होता है वो उसको मैनेज करते हैं,
0: मैनेज
1: समायोजित करते
0: करते
1: हैं?
0: हैं, और जिसे जो स्टेट के हमारे जो एसोसिएशन है, जो भारत सरकार के फेडरेशन है, तो वो डेट के अनुसार वो समय से आयोजन कराना। और ये भी हुआ कि जब से खेल नीति आने के बाद समय से हमारे आयोजन भी हो रहा है, समय से टीम भी जा रही है।

0: है, हर चीज है, तो चीजें शेड्यूल्ड हो गई हैं, है ना।
1: शेड्यूल्ड हो गई है, और उसमें हम लोगों ने शिक्षा विभाग में इन्वॉल्व कर दिया है,
0: अच्छा
1: और जिसे हमारे कोचेज विद्यालयों में जाके ट्रेनिंग देते हैं कि जो
0: हाँ,
1: बच्चे
0: मैं अभी इस प्रश्न पर आऊंगा
1: जी
0: कि जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम में
1: जी
0: स्कूलों को शामिल किया गया कि स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया जाए,
1: जी जी
0: तो उसमें आपकी क्या भूमिका है, आप कैसे स्कूलों में खेल को बढ़ावा दे रहे हैं?
1: हमारे यहाँ जितने कोचेज हैं
0: हाँ
1: सभी गेम के अलग अलग कोच हैं, अलग
0: हाँ
1: अलग विद्यालयों में प्रत्येक मंथ कम से कम 2 दिन कम से कम किसी न किसी विद्यालय में जाएं, वहां जाके ट्रेनिंग प्रेनिंग बेसिक
0: हाँ
1: चीज बताएं, और खेल के बारे में कैसे कैसे आए, किससे आपका इससे भविष्य बन सकता है, वहां से आए, वहां अगर संसाधन है तो ठीक, नहीं तो
0: ठीक
1: बच्चा स्टेडियम में आके भी प्रैक्टिस कर सकता है।
0: है, अच्छा
1: ये हम लोग पूरा जानकारी, और खेलो इंडिया की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं, और जो खेल विभाग की जानकारी उनको उसको बताते हैं।
0: खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आपके यहाँ जो अभी पिछले साल की जो अचीवमेंट्स हुई हैं उसके बारे में कुछ बताइए। इस कार्यक्रम के तहत आपने जो
1: जी
0: तैयारियां करवाई, तो हाल ही में जो बच्चे सफलता प्राप्त किए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम या अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स अकेडमी या
1: जी
0: प्रयागराज की
1: जी
0: जो उपलब्धि रही
1: जी जी
0: उसके विषय में थोड़ा सा बताएं।
1: खेलो इंडिया में हमारे यहाँ प्रयागराज की उपलब्धि अच्छी रही है,
0: अच्छा
1: एथलेटिक्स में भी, वॉलीबॉल में भी यूपी की टीम विनर रही,
0: अच्छा
1: अंडर 17 में, उसमें हमारे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स छात्रावास के कम से कम 5-6 बच्चे थे,
0: अच्छा
1: और हमारे एथलेटिक्स छात्रावास के 3 बच्चों ने खेला, जिसमें 2 का मेडल था, एक पार्टिसिपेशन था, और हमारे स्थानीय बच्चे, ये नहीं कि केवल छात्रावास के,
0: जी
1: स्थानीय बच्चे भी हमारे गए, हम लोग टोटल एथलेटिक्स में 9 बच्चे गए थे यहाँ से प्रयागराज से, पिछले
0: अच्छा
1: वर्ष की जो हमारा खेलो इंडिया हुआ था चेन्नई में, उसमें काला कि सबका अच्छा अचीवमेंट रहा, पोल वॉल्ट में भी हमारा रिजल्ट रहा, और गेम में जिसे वेट लिफ्टिंग में भी एक बच्चा था।
0: देव प्रसाद जी, एक बड़ा आधारभूत प्रश्न है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग का खर्च वहन करने में उनको समस्या होती है, वित्तीय रूप से उतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है?
1: हमारे यहाँ इस समय एक एकलव्य क्रीड़ा कोष है, तो जो बच्चे स्टेट में मेडल दिए हैं या नेशनल खेले हैं, तो वो एक फार्म है, वो जनपद के प्रत्येक स्टेडियम में मिलता है, वो बच्चा लेकर भर के अपने सर्टिफिकेट जो उसकी अचीवमेंट है वो अपने संबंधित एसोसिएशन के प्रदेश सेक्रेटरी से उसको वेरीफाई करा के उसको अपने जो भी जनपद है वहां के क्रीड़ा अधिकारी या क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से वो खेल निदेशालय जाते हैं, तो उस बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में उनको पोषण सामग्री या इक्विपमेंट से संबंधित जो भी है सरकार उस लेवल के जिस लेवल का खिलाड़ी
0: आर्थिक
1: उसके हिसाब
0: सहायता।
1: से आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
0: अच्छा, कभी कभी ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो खेलने में बड़े अच्छे होते होंगे और पढ़ने में भी उनकी ठीक पकड़ होती होगी, ऐसे में माता पिता जो हैं उनके वो उतना सपोर्ट नहीं करते होंगे बच्चों को, और आप चाहते होंगे कि बच्चा खेले, तो ऐसे में कैसे आप उनके माता पिता को कन्विंस करते हैं या राजी करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े खेल के फील्ड में? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं
1: जी
0: वहां ये
1: जी
0: परंपरा है ना कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा IITian बने या बच्चा डॉक्टर बने या बच्चा IAS ऑफिसर प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन बहुत कम ही माता पिता होंगे जो बचपन से ही ये चाहते होंगे कि हमारा बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने।
1: जो गार्जियन है हम तो उनको कहते हैं, हम कहे आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा बच्चा का लायक न बने, लेकिन कम से
0: अच्छा
1: कम उसको एक स्वस्थ नागरिक तो बनने दीजिए जिससे समाज के लिए,
0: अच्छा
1: क्योंकि वो नहीं कि पढ़ने में ही ठीक है, उसको साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ठीक है, दोनों तरफ पहलू से वो विकास कर सकता है, तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं।
0: हाँ
1: अब गार्जियंस हम लोग का रोज आते हैं कि सर हमारा बच्चे को किसी तरह मोटिवेट करिए स्पोर्ट्स की तरफ, आज के युग में जब से ये हमारा कोरोना काल से सभी बच्चे मोबाइल की ओर डाइवर्ट हो गए
0: हाँ
1: हैं, ये
0: मोबाइल की
1: सबसे बड़ा गार्जियंस के ऊपर बहुत बड़ा है, सभी गार्जियंस इससे परेशान है कि बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाए,
0: अच्छा
1: स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग उनको अच्छी दिशा में ला सकते हैं।
0: ला सकते हैं। हमारे रेडियो के माध्यम से आप यूथ को अगर कोई संदेश देना चाहें?
1: हमारा आकाशवाणी के माध्यम से सभी गार्जियंस और खिलाड़ियों को, जो यूथ लेवल के बच्चे हैं वो किसी न किसी जो ग्रामीण लेवल पर हैं, युवा कल्याण विभाग के मिनी स्टेडियम वहां जुड़े, और जो शहरी क्षेत्र में है या जो आ सकते हैं स्टेडियम में उनसे आप जुड़े, दोनों टाइम न तो कम से कम एक टाइम स्पोर्ट्स के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों को समय दें, और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वहीं अच्छा विकास करेगा देश के लिए भविष्य के लिए।
0: जी देवीलाल जी, आपने हमसे बात की और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी लाभकारी जानकारियां दी। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और न सही एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में बल्कि अपने जीवन शैली में खेल को शामिल करके एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में जीवन यापन जरूर करेंगे। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत और फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई खेल नीति जारी होने के बाद हमारे आसपास प्रदेश और देश में खेल का परिदृश्य बदला है और नए उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो खेल से जुड़ रहे हैं, न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए, मेडल लाने के लिए, और एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा के साथ नए उम्र के बच्चे नए नए खेल को स्वीकार कर रहे हैं और सरकारी तौर पर उनको जो इन खेलों की आधारभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बच्चे हैं, एक आर्यदेव हैं जो पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं और नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, दूसरे हैं नवीन यादव जो शॉट पुट यानी कि गोला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले मैं आर्यदेव आपसे जानना चाहूंगा कि
2: जी
0: आप
2: सर,
0: थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत की आपने खेल की, वो समय कौन सा था जब आपको लगा कि आपको पोल वॉल्ट खेलना चाहिए, कहाँ से शुरुआत की?
2: मेरा नाम आर्यदेव, मेरे पापा किसान हैं तो मैं गांव में रहता था। तो गांव में एक विद्यालय था सर जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, तो मेरे गांव के कुछ लड़के जाते थे तो मैं उनके साथ देखने गया था कि क्या
0: अच्छा।
2: होता है, स्पोर्ट्स कैसे होता है। तो वहाँ सर पोल वॉल्ट सिखाते थे तो मैं देखा, वो काफ़ी हाइट से जंप कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं सीखूंगा इसको, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सर कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से, तो लॉकडाउन लगने के बाद मैं यहाँ चला आया रूम लेके प्रैक्टिस करने, तो कुछ दिन तक यहाँ रूम लेके प्रैक्टिस किया, उसके बाद हॉस्टल का ट्रायल आया सर।
0: जो आप मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में
2: जी
0: प्रैक्टिस करते
2: जी
0: हैं
2: जी
0: ना?
2: सर,
0: अच्छा
2: तो मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया तो
0: अच्छा
2: जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: अच्छा
2: तो सिलेक्शन होने के बाद हमको अच्छे कोच मिले हैं और हमारे सरकारी व्यवस्था अच्छी मिली है सारी चीज़ें, तो जिसमें रह के हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं सर।
0: हाँ,
2: हम नेशनल खेल चुके हैं, 4 नेशनल मेडल रह चुका है मेरा सर।
0: 2019 से आपने शुरुआत की और
2: जी
0: 6 वर्षों में आपके पास 4 नेशनल मेडल हैं।
2: जिसमें 2 साल रेस्ट हो गया था कोविड की वजह से, लॉकडाउन
0: अच्छा
2: था तो
0: अच्छा
2: उसमें कुछ नहीं किया, घर ही था सर।
0: अच्छा कुल
2: जी
0: मिला के 4 साल में 4 नेशनल मेडल है, बहुत
2: जी सर
0: अच्छी सफलता है, या यूं कहें कि आप प्रतिभाशाली हैं। आरदेव जरा ये बताइए कि जिस हॉस्टल में आप रहते हैं, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम के हॉस्टल में आप रहते हैं,
2: जी
0: तो आपका जो खर्च है एक रोजमर्रा आप एक के जीवन के लिए, जो हॉस्टल है
2: जी
0: वहां रहने का खर्च, खाने का और एजुकेशन का, ये सब खर्चे कैसे मैनेज होते हैं आपके?
2: जी मेरे सारे खर्चे गवर्नमेंट देती है,
0: अच्छा
2: वो चाहे स्कूल फीस हो या मेडिकल का हो
0: अच्छा
2: या स्पोर्ट्स डाइट का हो या रूम किराए, सब मेरे सरकारी व्यवस्था है सर।
0: सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती
2: जी
0: है।
2: सर
0: क्या रूटीन होता है आपका जब आप सुबह सो के उठते हैं, उसके बाद से दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है आपकी?
2: सुबह उठ के सर वही सारी जरूरी प्रक्रिया करते हैं,
0: अच्छा
2: उसके बाद हमारा असेंबली होता है 6 बजे,
0: हाँ
2: फिर वहाँ से हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा 3 घंटे तक वर्कआउट चलता है सर।
0: अच्छा
2: फिर वहाँ से आते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें स्कूल जाना रहता है सर, वहाँ हम 3 घंटे क्लास करके आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं सर, फिर शाम को प्रैक्टिस करने जाते हैं सर, फिर वहाँ से आते हैं, जो हमारी डाइट प्रोटीन रहती है हम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करते हैं सर, फिर डिनर होता है, उसके बाद फिर सोते हैं, रेस्ट करते हैं,
0: अच्छा।
2: डेली का ही रूटीन है सर।
0: कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मन नहीं लगता होगा कि मूवी देख लेते हैं या खेलने का मन ना हो, तो उस दिन क्या कुछ गैप करते हैं या फिर आप मन को मार लेते हैं?
2: नहीं सर, ऐसा ख्याल तो आता है परंतु जब कंपटीशन पास में होते हैं तो ख्याल कंपटीशन के भी आ जाता है, जैसे मूवी का आया ख्याल फिर जस्ट
0: हाँ
2: उसका कंपटीशन के भी, अगर मैं मूवी देखने गया प्रैक्टिस नहीं किया तो कंपटीशन में मेरे कंपटीटर जो आएंगे बाहर से
0: हाँ
2: वो हमसे बेहतर कर जाएंगे, तो ये सब सोच के दूसरा मन दबा के रख लेते हैं सर और प्रैक्टिस पे चले जाते हैं।
0: शरीर को फिट रखने के लिए जैसा कि आपने बताया कि आप सुबह वर्कआउट करते ही हैं, खाने पर कितना ध्यान रहता है आपका, क्या क्या चीज़ें आप खाते हैं या क्या चीज़ें खाने से अवॉइड करते हैं कि इन चीज़ों को खाने से नुकसान होता है तो ये चीज़ें नहीं खानी है?
2: खाने में सर बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाए, ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए
0: अच्छा
2: जी, ये मार्केट वाली चीज़ कुछ नहीं लेनी चाहिए हमें, जितना हरी सब्जियां, फल
0: हाँ
2: या प्रोटीन कुछ होते हैं सर, ऐसे
0: अच्छा,
2: अंडे केले ये सब डेली का,
0: प्रॉपर डाइट आप फॉलो करते हैं खुद को
2: जी
0: फिट रखने
2: प्रॉपर
0: के
2: डाइट
0: लिए?
2: हमें डेली का रूटीन है ना सर, वो
0: अच्छा
2: गवर्नमेंट देती है
0: अच्छा
2: जी सर
0: तो उसका एक डाइटिशियन होता होगा जो आपकी डाइट डिसाइड
2: जी,
0: करता
2: पूरा
0: होगा,
2: मेन्यू होता है
0: पूरा
2: हमारा
0: मेन्यू होता है आपका,
2: उसी के हिसाब से चलता है डेली
0: उसके
2: सर।
0: हिसाब से। अब जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हारने का डर लगता है?
2: हारने का डर सर बना रहता है, जैसे कंपटीशन पहले बना रहता है, पर जब कंपटीटर सामने होते हैं तो ये होता है सर, अगर डरेंगे तो हार जाएंगे, तो
0: हाँ
2: डरना नहीं है, डर हटा के सर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं सर।
0: बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बाकी
2: जी
0: रिजल्ट
2: सर
0: जो होगा वो देखा
2: जी
0: जाएगा।
2: सर, डरेंगे तो फिर अगला वाला हम पे भावी रहेगा सर।
0: हमारे साथ बैठे हुए हैं नवीन यादव जो शॉट पुट के प्लेयर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। नवीन जी, कैसे आपने डिसाइड किया या पहली बार आपने कब गोला फेंक की प्रैक्टिस की, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा।
3: मैं पहले पढ़ाई करता था अपने पापा के पास, मेरे पापा फौज में सर,
0: जी
3: जलंधर में पोस्टिंग है पंजाब, तो सर वहाँ पे स्कूल जब ओवर होता था सर,
0: हाँ
3: ग्राउंड की तरफ जाते थे तो वहाँ पे देखते थे काफ़ी जो फौज के जो रहते थे सर, वो प्रैक्टिस करते रहते थे वहाँ, तो देखता रहता था मैं, तो देखते थे, मैं भी सोचा यार मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं गया, भैया सर क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आओ देखो फेंको, फिर फेंके तो काफ़ी थोड़ा अच्छा गया, तो कहें कि हाँ तुम कर सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करवाया। फिर स्कूलों में स्कूल गेम होते हैं, तो वहाँ से मैं पार्टिसिपेट किया स्कूल गेम में उसी इवेंट से।
0: अच्छा
3: तो सर वहाँ पे मेरा मेडल लग गया, मैं SGFI तक गया। तो सर वहाँ से फिर एक मन बन गया कि हाँ यही गेम खेलना है।
0: तो इलाहाबाद फिर कैसे आना हुआ?
3: उसके बाद लॉकडाउन लगा 2 साल का, तो फिर सर पढ़ाई तो वहीं स्टॉप हो गई, अपने घर आ गए। फिर अब गांव में रहने लगे, फिर वहाँ कोई ऐसा कोच नहीं था कोचिंग देने वाला,
0: अच्छा, कोई
3: तो
0: प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं,
3: गाइड
0: कोई
3: करने
0: ऐसे
3: वाला नहीं था।
0: गाइड करने वाला नहीं था।
3: पूछा कई लोगों से क्या कहीं मतलब कि हमारे यहाँ स्टेट में यूपी में कहीं प्रैक्टिस करने के लिए है, तो उन्होंने बताया कि जाओ यहाँ हॉस्टल है अपना इलाहाबाद में प्रयागराज में,
0: अच्छा
3: इन सर के पास जाओ, देवी सर के पास, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आया पूछा, फिर बताया गया कि हॉस्टल वगैरह जैसे कैंप वगैरह मिलता है हम लोग को
0: अच्छा
3: ट्रायल देने पे, तो सर वहीं ट्रायल दिए, हुआ सिलेक्शन, सर के पास आए।
0: आपका क्या रूटीन होता है? क्या शॉटपुट का अलग कुछ टेक्निक होती
3: हाँ
0: है?
3: सर, उसके लिए सर बॉडी वेट का जरूरी है,
0: अच्छा, आपका बॉडी वेट क्या कम होना चाहिए, ज्यादा
3: नहीं
0: होना?
3: ज्यादा, जितना बॉडी वेट हो उतना कम है।
0: अच्छा, मतलब उतना जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा।
3: जी सर।
0: अच्छा
3: सर इसमें वेट ट्रेनिंग चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह चाहिए सर, इसके
0: अच्छा
3: वजह से ज्यादा से ज्यादा डाइट भी चाहिए इसके लिए। जो सर शॉट पुट रहता है 7.26 kg का होता है, जी सर, उसको फेंका जाता है जितना हो सके।
0: कोई स्पेशल टेक्निक होती है उसको
3: हाँ
0: फेंकने
3: सर,
0: की,
3: इसके
0: कैसे
3: लिए
0: फेंकते
3: एक
0: हैं?
3: सर्कल होता है सर,
0: हाँ
3: उसमें सर उस डिस्को पट होता है सर्किल,
0: हाँ
3: वही सर गोल घूम के फेंकना पड़ता है, उसमें
0: कंधे के ऊपर
3: कंधे
0: रखकर।
3: पे रख
0: अच्छा,
3: के और सर्किल पे घूमना पड़ता है सर, उसके लिए टेक्निक होती है।
0: क्या रूटीन होता है? सुबह कितने बजे सो के उठते हैं और फिर दिन भर कैसे बीतता है आपका?
3: सुबह सर वही 5:30 बजे लगभग उठ जाते हैं, उसके बाद अपना सब कुछ करके नीचे उतरते हैं, 6 बजे असेंबली होती है अपनी। असेंबली करने के बाद वार्म अप वगैरह करके फिर कोच को रिपोर्ट करके
0: अच्छा
3: अपना ट्रेनिंग जो सर बताते हैं हमारे ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जब खत्म हो जाती है फिर रिपोर्ट लगाते हैं सर को, ऊपर जाते हैं अपना डाइट लेते हैं सर, डाइट लेकर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर स्कूल जाया जाता है। हाँ सर, फिर स्कूल आने के बाद खाना वगैरह खा के फिर रेस्ट करके फिर शाम की ट्रेनिंग।
0: नवीन, डेली रूटीन से अलग क्या हफ्ते में कोई रेस्ट डे भी होता है आपका?
3: रेस्ट डे तो नहीं होता सर, जैसे वैसे काफ़ी जब फ्राइडे सैटरडे आता है सर, उस दिन बॉडी एकदम थक जाती है शुरू
0: अच्छा
3: का वर्कआउट करते करते
0: हाँ
3: सर, उस दिन एकदम बॉडी चलती ही नहीं है,
0: अच्छा,
3: फिर भी सर उसमें थोड़ा बहुत गैप कर लेते हैं वर्कआउट में।
0: कैसे मैनेज करते हैं आप पढ़ाई अपनी?
3: प्रैक्टिस के बाद जाते हैं जो 2-3 घंटे इस क्लास करते हैं।
0: अरदेव, जरा आप बताएं क्या है पोल वॉल्ट?
2: पोल वॉल्ट जो है सर, एथलेटिक में सबसे टेक्निकल गेम है सर। जब हम रनवे पे खड़े होते हैं पोल लेकर सर, तो जब पोल को ऊपर टांगते हैं हवा में, तो जो हमारा पहला स्टेप निकालते हैं वहां से सर, तो वहीं से हमें टेक्निक यूज करनी पड़ती है। 16 स्ट्राइड होता है हमारा रनवे पे रनिंग का, तो हर एक स्टेप पे हमको टेक्निक सर देखना, कितने पे पोल डाउन करना है, किस लेवल पे हमको प्लांट करना है सर। तो जैसे सर और गेम होते हैं तो ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो पोल वॉल्ट है सर, ये हमें हवा में काम करना रहता है टेक्निक से। सब में तो आपको सर पता है कि हम जमीन पे कर लेंगे, पर पोल वॉल्ट डेंजरस है सर, हवा में सब कुछ करना रहता है, टेक्निकल गेम है सर। तो बहुत सारा टाइम से टेक्निक होता है सर।
0: आप भी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं अपना?
2: सुबह प्रैक्टिस के बाद आते हैं, ब्रेकफास्ट स्कूल गए सर, फिर रेस्ट किए, फिर प्रैक्टिस किए, फिर शाम को आके डाइट लिए थोड़ा बहुत सर, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई कर लिए शाम को सर, फिर डिनर करके सो जाते हैं।
0: अरदेव, नवीन आपने अच्छी जानकारी दी, आपके अनुभवों से हमारे युवा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अब मुझे यानी सुंदरम तिवारी को आज्ञा दीजिए, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, वाचन संपादन एवं प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र पर तैयार किया गया।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:26 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात।

इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत निर्देशन में, उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में। फिल्म का नाम था जब वी मेट। आकाशवाणी उबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। अब लीजिए सुनिए शफकत अमानत अली की आवाज़ में फिल्म रावण के इस गीत को। संगीत विशाल शेखर का।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अब लीजिए सुनिए फिल्म कलयुग के इस गीत को। आवाज राहत फतेह अली खान की है और गीतकार है सईद कादरी।

सईद कादरी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। आवाज़ राहत फ़तेह अली ख़ान की थी और फिल्म का नाम था कलयुग। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात।

0: ए हरिहरन और साधना सरगम की आवाज में ये था फिल्म दहक का गीत।
1: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में ये था फिल्म उड़ता पंजाब का गीत, संगीत अमित त्रिवेदी का था। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीना का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रिमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रिमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एक 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के